0: Pakistan, Toronto, Alaska, Safar, Dil Se Dilta.
1: Barbecue Tonight की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज, जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 9052829866। कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से रब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपने सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।
2: विशाल त्रिवेदी, वही जाना पहचाना नाम, लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट। अब विशाल से ही लीजिए गारंटीड कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, विजिटर्स टू कनाडा इंश्योरेंस। कंपेयर विद विशाल and get the best possible discounts on visitors and super visa insurance. Call Vishal Trivedi at 647-767-9852. That's 647-767-9852. Vishal Trivedi.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेज पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन, ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। फॉर बुकिंग इन्फॉर्मेशन कॉल 9055147877। वही जायका, वही लजत और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
5: जी हाँ, पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है रिजवे प्लाजा में और यूनिट 30 है इसका, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू। जरूर आप तशरीफ ले जाइए। अच्छा ना, पेट की चर्बी कम करने के लिए सुबह निहार मुंह, जीरा और मेथी दाने का पानी पीने का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। माहिरीन कहते हैं ये मशरूबात बराह रास्त चर्बी नहीं पिघलाते, बल्कि जिस्म के कुदरती निज़ाम को बेहतर बनाकर वजन कम करने में मदद करते हैं। माहिरीन इमराज मेदा के मुताबिक जीरे का पानी हाजमा बेहतर बनाने, अफारा कम करने और जिस्मानी मेटाबोलिज्म को सहारा देने में मददगार साबित होता है, जिसके नतीजे में पेट के फूलने का एहसास कम होता है और चर्बी के इस्तेमाल का अमल जो है वो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा मेथी दाना जो है वो भूख पर काबू पाने, खून में शक्कर की सतह मतवाजन रखने, डायबिटीज़ वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इसको इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा भी यकीन होता होगा, चर्बी के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने और आंतों की सेहत में मुआवन समेत जो है वो समझा जाता है। मरीन के मुताबिक मेथी दाने की ये खसूसियत वजन में कमी और पेट की चर्बी कम करने में बिलवास्ता मदद दे सकती है। गिजाई माहरीन कहते हैं अगर मकसद भूख कम करना और खून में शक्कर को मतवाजन रखना तो मेथी दाने का पानी निस्बतन ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, जबकि जीरे का पानी हाजमे के मसाइल में बेहतर नतीजे देता है। सेहत के माहरीन ने लेकिन यह भी खबरदार किया है कि जो हमला खवातीन हैं, मैदे की हसासियत रखने वाले अफराद हैं और ज्याबेटिस के मरीज, इन मशरूबात के इस्तेमाल से पहले तिबी मशवरा ज़रूर कर लें। माहरीन कहते हैं कि जीरा और मेथी दाना दोनों के फ़ायदे तभी मौसर हो सकते हैं जब इन्हें मुतवाजन ग़िज़ा और बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी के साथ इस्तेमाल किया जाए। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: Welcome. You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेज। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002 बटकड़ाही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता।
2: Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities, charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.

0: राजधानी राजधानी राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: सिर्फ मॉर्गेजेस। दस राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 License number 12374
3: SSR Auto Service 921 Pape Avenue Southeast Corner of Pape and Martimore Har kisim ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain Drive-through maintenance aur namaz ki sahulat bhi Mia Ashraf sahab ya Nabeel Ashraf sahab se raabta kijiye 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे
4: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
3: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant 35 Dundas Street West Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर चरगा लाहौरी fish चपली कबाब कढ़ाई गोश्त चिकन टिक्का मसाला चिकन बिरयानी सीख कबाब रेशमी कबाब चिकन बोटी चिकन टिक्का बिहारी कबाब लैम चॉप्स अफगानी टिक्का निहारी और बहुत कुछ खूबसूरत कुशादा पैटियो Barbecue Tonight Restaurant 905-268-0088 It's 905-268-0088 or Dundas intersection, Mississauga.
5: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
6: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
7: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Students mein aap take number 416-593-0003 इस वक्त पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल जमान साहब हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं कुछ क्वेश्चंस उनसे करते हैं और फिर लेते हैं आपकी लाइव कॉल्स खुश आमदीद कहेंगे बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब बूंद बूंद को तरसते कराची के अवाम के लिए अब इंतजार शायद और लंबा हो गया है कि फोर मनसूबा मजीद ताखिर का शिकार होने के बाद कहते हैं 2029 में मुकम्मल होने का इम्कान है 12 साल पहले यह मनसूबा 25 अरब रुपए में मुकम्मल हो जाता अब कहते हैं इसकी लागत 200 अरब रुपए के करीब है शायद उससे भी ज्यादा हो चुकी है कई डेडलाइन गुजरने के बावजूद ये मनसूबा जूं का तूं क्यों है क्या मीडिया में ला के मतलब सिंध को मतलब उस पर तनकीद इसका मामला है या ओरिजिनली इसके ऊपर काम के लिए उस तरह से नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था
8: जी देखिए ये एक खाली यही प्रोजेक्ट नहीं है आप क्या देख लें कि हमने क्या डैम बना लिए क्या हमने जो इम्पोर्टेंट सड़कें थी वो बना ली क्या हमने इम्पोर्टेंट अंडर पासिस क्या हमने जो हमारी क्या थी वो जो
7: यूनिवर्सिटी
8: नाम दिया हुआ था एक रेलवे लाइन को वो बदल दिए वो पता नहीं क्या उसका नाम रखा हुआ था जो कराची से ادھر جنا گلگت تک بننی تھی.
7: اوکے,
8: یہ مطلب یہ کہ ہم نے تو ہر امپورٹنٹ کیا سی پیک جو ہے نا وہ بن گیا. 2025 کا منصوبہ تھا, 2013 کے اندر شروع ہوا, یعنی 2025 کے اندر جو ہے نا اس کے سمراٹ

0: मेगावाट बिजली लगाने का उन्होंने मतलब कहा कि हमने लोड शेडिंग, उन्होंने कहा ये मिस्टेक, ये गलती, लोग कहते हैं कि जी तब 20-20 घंटे की रहना, वो मतलब एक 16-16 घंटे की लोड शेडिंग थी, तो उसको खत्म भी किया और उसके अलावा जो है ना कैपेसिटी बढ़ाई भी कि इंडस्ट्री लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन ना वो इंडस्ट्री लगी, ना वो इन्वेस्टमेंट आई, ना हालात जो है वो उस तरीके से बने। तो हमने तो मतलब ये कि हर मंसूबे के साथ, खाली एक K4 की कहानी है, बात थोड़ी लंबी होगी, असल तो मैं K4 के ऊपर ही थोड़ा फोकस करना चाहिए था, क्योंकि देखें कराची जो है ये K4 मेरे ख्याल से मतलब वो उसका नाम रखा हुआ है केंजर झील की वजह से, इस वजह से इसको K4 मंसूबा जो है ना वो कहा जाता है। बुनियादी तौर से केंजर झील का पानी जो है वो कराची वालों तक पहुंचाना है, और यानी कि आप वही देखने के समुद्र का पानी कराची वालों तक पहुंचाना या केंजर झील का पानी कराची वालों तक पहुंचाना। वो कहते हैं कि कराची वाले उनका मतलब कि हाल ये है कि खिड़की खोले तो समुद्र नजर आ रहा होता है, नलका खोले तो पानी नजर नहीं आ रहा होता। तो ये जो है ना वो बेचारे कराची वालों का हाल है कि वो पानी के सर पे बैठ के, पानी के बिल्कुल साहिल पे होते हुए, साहिल समुद्र पर होते हुए भी जो है ना वो बेचारे पानी जो है वो तरस रहे। तो केंजर झील को छोड़े, 200 अरब रुपए को छोड़े, अभी भी वाटर सैनिटाइजेशन को प्लांट जो है ना अगर लग सकता है, मेरे ख्याल से इससे कम लागत के अंदर कराची से बिल्कुल जो है ना मतलब ये कि वो उसको कनेक्ट करना, उसको वहां तक जो है ना, तो अल्टरनेट कोई जो है ना वो ढूंढ के वो कर लें। जरूरी नहीं है कि एक चीज आपसे नहीं बन रही और उसकी लागत भी इतनी ज्यादा हो चुकी है तो आपने उसी के पीछे जो है ना वो पड़े रहना है, उसको बात के लिए जो है ना वो छोड़ दें या देख लें। फिलहाल जो है ना जो कराची वालों की जरूरत है उसको पूरा करें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर कम से कम जो एक और मंसूबा था कि नया शहर जो है ना वो आबाद करने का, कि क्वेटा और कराची और हैदराबाद इनके दरमियान में जो है ना वो एक बड़ा शहर जो है ना वो आबाद किया जाए, जहाँ से कराची की आबादी जो है उसको मुंतकिल किया जाए और कराची के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले कराची की जो आबादी है उसको थोड़ा कम किया जाए।
1: वेरी राइट। अच्छा, मंशियात के केस में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस हाशिम काकड़, ANF के अहलकार से पूछा क्या आपने कभी चर्स पिए, उसने जवाब दिया नहीं जनाब मैंने तो कभी चर्स नहीं पी, तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि चर्स नहीं पी इसलिए आप में एहसास भी नहीं है। एक इंतहाई संजीदा केस में इस तरह के गैर संजीदा रिमार्क्स क्या जजेस को पास करने चाहिए, क्या बैकग्राउंड क्यों किया उन्होंने ये पास?
0: जी देखिए वो मंशियात का केस और चर्स जो है ना उसके बारे में ज्यादा यही मतलब बात, खाली चर्स के बारे में तो नहीं लेकिन जितने भी नशे हैं उनके बारे में यही कि वो करने के बाद जो है ना जरा इंसान थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और जो है चीजें ज्यादा महसूस करने लग जाता है और जो अंदर का सच है वो निकलने लग जाता है। इस तरह की बातें जो है ना वो ड्रग्स के बारे में और इन चीजों के बारे में मशहूर है, तो उस हवाले से जो है ना मतलब वो केस का थोड़ा बैकग्राउंड तो ये था कि थोड़ी वो सर्जनिश कर रहे थे ANF को काम की, क्योंकि इस केस के अंदर उनका जो जो ANF के जो वकील थे उनका केस बड़ा जो है ना वो वीक था। जिस तरीके से वो घर के अंदर गए और वहां पे जाके उन्होंने मंशियात खुद रखी, उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो जो दूसरे तरफ के वकील थे जिनके ऊपर इल्जाम था, मुलजिमा जो थी उन्होंने घर की फुटेज भी जो है ना वो पेश कर दी, तो उसको उन्होंने खड़े को मौके के ऊपर जो है ना ANF एहलकार ने जो है ना उसको डिनाई कर दिया। तो कुछ लिंक भी था कि उस जारी बात है हम ये तो नहीं जानते कोर्ट के अंदर उस वक्त जो है ना मतलब सारी प्रोसीडिंग, तो एक जुमला खाली निकाल के हम समझेंगे जी बहुत कुछ गैर संजीदा। बाहर जो जजेस हैं वो भी इंसान होते हैं, बाजू का टेंस माहौल
1: मजाक आप कह रहे हैं कि बस अच्छा ठीक
0: है, मतलब जो उस सिचुएशन के अंदर जो है ना वो रहते हुए थोड़ा मूड को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, उसका कम से कम उनकी उनकी केस की जजमेंट के ऊपर या उसके ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बाकी जो है ना वो ठीक है कि बाज़ औक़ात मिजाज आपका ऐसा होता है, तबीयत आपकी ऐसी होती है, हर एक के मुख्तलिफ मिजाज हैं, कुछ जो है वो बड़ी संजीदा चीज के अंदर से भी जो है ना कोई मजाक का पहलू निकाल लेते हैं और कुछ जो है वो बड़ी मजाया सिचुएशन हो उसको भी जो है ना बड़ा सीरियसली जो है ना वो गुजार देते हैं अपने मिजाज और तबीयत भी होती है।
1: अच्छा, मंगल के दिन इमरान खान से मुलाकात का दिन होता है, वज़ीर-ए-आला KP सोहेल अफरीदी साहब और अलीमा खान साहब आज फिर जला जेल के बाहर थी और मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर बानी से मुलाकात तक खैबर पख्तूनख्वा बजट पास ना करना, ये अलीमा खान ने सोहेल अफरीदी को तंबीह की है, तो बानी के नए पैगाम तक मैं ही वज़ीर-ए-आला रहूँगा, सोहेल अफरीदी की गुफ्तगू। इमरान खान तकरीबन मेरे ख्याल 2 साल से ज़्यादा ही हो गया, 3 साल से जेल में है, हर साल बजा रहता है, पास भी हो जाता है, तो फिर ऐसा जिद ही क्यों करनी जिसे आप पूरा ना कर सकेंगे, तो मुमकिन नहीं है, बजट तो आवाम के लिए जरूरी है, पास तो उसको होना ही होगा, अदरवाइज तो मामला रुक जाएंगे।
0: جی بالکل آپ نے درست کہا، یہ جو ہے نا وہ صرف پانی کا معاملہ نہیں ہے، جیل کا معاملہ نہیں ہے، ملاقات کا معاملہ نہیں ہے، جو بجٹ

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
2: Kaheen mat jaiye.
0: Don't touch that dial.
2: Hum bas yo dale hain.
0: After a short break and a few messages from our sponsors. Stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
3: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि एह सफर होण वाला है तूफानी.

0: राइट ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है,
0: बड़ा
1: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टर्न।
0: कम ऑन रिया,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम।
0: मेरी भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ,
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए। नॉट लिसनिंग टू यू,
1: दिन में नजरे इनकी इधर उधर।
0: आई एम नॉट लिसनिंग टू यू।
1: प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: ओके, आई एम नॉट विद हर।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस, साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
3: आप सुन रहे CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
2: Kaheen mat jaiye.
0: Don't touch that dial.
2: Hum bas yo chale hain.
0: After a short break and a few messages from our sponsors. Stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
3: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स

0: एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
4: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: आप सुन रहे CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील. कॉल 9046-1000 for Midland and Sioux and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स द It deserves.
5: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers. Reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000. Aap sun rahe CMR at 9. Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Another Don clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देन के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।
5: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
0: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.

0: गुलाबी ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाए अपने सीजनल टायर्स और करवाए सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री, मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: कैशपॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000, 416-284-7000.
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी अनयूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिकोक नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
6: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000 416-284-7000।
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
1: गोल्ड खरीदना है तो यह है परफेक्ट टाइम क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम. जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं. सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी.

0: Visit Asia Gold at 5010 Steels Avenue West, Etobicoke, near Kipling and Steels, or call 416-746-3795. 416-746-3795. Asia Gold. Har chamak mein bharosa, har khareed mein bachat. Visit AsiaGolding.com.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Steels and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, जहां news, views, sports, entertainment की खबरें होंगी बिल्कुल unlimited. Entertainment तो बहुत है, लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल unlimited. News और views तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल unlimited.
1: यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? मेरा ही जलवा.
0: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
2: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
0: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
3: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके
0: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो जहां न्यूज व्यूज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की खबरें होती है एब्सोल्युटली अनलिमिटेड स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 बाहर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट 29 टुडे 30 टुमारो एंड अगेन 29 डिग्रीज ऑन फ्राइडे एंड वीकेंड सैटरडे देयर विल बी रेन And 23 degrees. So minimum temperatures are about 14, 15 degrees. But this is what we're going to get for the next 3 days. Enjoy kare. Beautiful sunny weather. And sunset hoga 8:54 p.m. And uske upar se bhai gas prices ne jo jump karna tha 8 cents per liter. Wo humne aaj dekh liya hai pumps pe. So people are obviously not happy. What's there to be happy about? Gas prices, inflation, grocery prices. Har cheez jo hai upar ja rahi hai. It is absolutely just crazy, crazy, crazy. But hum sirf yahi keh sakte hain jo Udit Narayan keh rahe hain. Jo Shah Rukh Khan ke par filmaya geet keh raha hai. Yuhi chala chal rahi, yuhi chala chal. जीवन गाड़ी है पहिया यही कर सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते वी कैन जस्ट मूव ऑन एंड थिंक कि टुमारो विल बी अ बेटर डे और इस बेटर डे के चक्कर में जो है देखते देखते जून 3rd हो गया है 2026 जिस तरह से शुरुआत हुई है और जिस तरह से विद ऑल लास्ट ईयर से सम पॉलिटिकल जो अनाउंसमेंट्स ट्रंप साहब करते रहते हैं टैरिफ्स उसके बाद वॉर और उसके बाद ये उसके बाद वो सो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ को देखते हुए समझते हुए या ना समझते हुए वी आर ऑल मूविंग फॉरवर्ड एंड जस्ट प्रेइंग कि थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल एंड गैस प्राइसेस आर लुकिंग टू बी ऑन द राइज सो क्या राइज होगा वो हम आने वाले दिनों में आपको बताते रहेंगे फीफा की ऑब्वियसली एक प्रेपरेशन जो है बड़ी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है दर इज लॉट ऑफ एंटिसिपेशन हैपनिंग टोरंटो लुक्स टू अवॉइड फोर्थ स्ट्रेट लॉस टुनाइट इन सेकेंड गेम अगेंस्ट द ब्रेव्स ब्लू जेज एंड टीटीसी बोर्ड डिस्कसिंग सेफ्टी प्लान इसको लेकर भी चर्चा जो है बिल्कुल जारी है एंड किस तरह से और उसे सेफ बनाया जाए एंड ऑब्वियसली गो ट्रेन्स हो या सबवेज हो उसको लेकर जो पैसेंजर्स हैं उनकी कंप्लेंट्स लगातार चलती ही रहती हैं विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ दैट हैपन्स एंड पीपल दैट ट्रैवल दे नो as much as we don't probably. Union serve Ford government with notice to bargain, setting stage for possible job action. Ye khabar bhi saamne aayi hai. Canada US Trade Minister Lee Blank reports a positive meeting with US counterpart in DC. Ye trade war hai. Kusma ko lekar kuch decisions liye ja rahe hain. So let's see what ends up happening. Plus that brand new bridge jo pehle kaha tha ki fall mein khulega last year, phir kaha spring mein. Just to let everyone know, June 21st is the first day of summer, so spring is almost getting there. So summer aa jayegi, pata nahi wo bridge kab khulega, but it has a lot to do with Trump's decisions and tariffs and Kusma and all that kind of stuff. Lekin the Maroons family, jinhone wo build kiya hai bridge aur Ambassador Bridge bhi, they are very tight with President Donald Trump. Ye khabre bhi aati rahi hain. So maybe there might be some positive outcome on that end. Ek caller hai, unhe lete hain, phir aage badhte hain. Aap on air hain, please go ahead. Hello? Hello?
1: No.
0: Okay. You don't want to say anything, that's quite all right. 416-593-0055 studio ka number hai. The segment is brought to you by Brampton TV and Appliance. Sultan ji ne badi amazing deals lagayi hui hain. And aap jo hain, Sultan ji se sampark karein. Sampark ka matlab ye hai ki pahunch jaiye 801 Bouvet Drive West at the corner of Bouvet and Chinkusi in Brampton. TV Appliance Laundry ke Sultan, 11 a.m. to 7 p.m. They're open 7 days a week. Brampton TV and Appliances. And amazing deals ke liye aage chalkar Sultan ji humare saath honge. लगे. राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट 30 प्लस लोकेशन से सर्व करते हैं 100% प्योर वेजिटेरियन फूड. ज़बरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट. एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग 905-206-1008 हर सैटरडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30 के बीच में होता है इनका फ्री सेमिनार, जिसके लिए प्लीज़ वॉक इन, डोंट वॉक इन, अपनी अपॉइंटमेंट बना लें. पहले अपॉइंटमेंट बना के सीट रिजर्व करवा लें, क्योंकि कई बार जो हमारे लिसनर्स कई बार वॉक इन करते हैं, आपको शायद हो सकता है पूरे का पूरा हॉल पैक्ड मिले एंड यू एंड अप यू नो कमिंग बैक. सो बेटर टू जस्ट कॉल, रिजर्व योर सीट 905-206-1008. छोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, 12:15 की हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
4: Yeah.

गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस। Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Brampton TV and Appliances, Clear Optical by Varun Khanda, Rajdhani Sweets and Restaurant, McVean Dental Care, Kavya Homeo Care, Brampton TV and Appliances, Win Lifetime Trading. शुरू करते हैं ताज़ा तरीन हेडलाइंस। ईरान ने कहा अगर यूएस ने स्ट्राइक्स की तो हम कुवैत और बहरीन पर जोरदार हमला करेंगे। IMF के अनुसार चाइना का टोटल नॉन फाइनेंशियल सेक्टर डेट इज 313% ऑफ GDP एंड इज प्रोजेक्टेड टू रीच 323% बाई 2026। अप्रैल में हुई शूटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस प्रेस गैला को अटेंड करने का फैसला कर लिया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने रशियन ऑयल सैंक्शन वेवर्स को खत्म करने पर कहा, एज सून एज वी कैन पॉसिबली कैन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी इस पर लेगा फैसला। ट्रंप ने ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए गिविंग गवर्नमेंट एक्सेस टू AI मॉडल्स बिफोर द रिलीज। प्लान रिलीज से 30 दिन पहले गवर्नमेंट को पावरफुल मॉडल्स पर एक्सेस होगा। एक सिख व्यक्ति को जेल हुई फॉर स्टैबिंग UK टीनेजर ओवर रेसिज्म एंड रिपोर्ट के अनुसार UK अब इलॉन मस्क के मिलिटराइज्ड सैटेलाइट नेटवर्क स्टार शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। हैकर्स ने इंस्टाग्राम अकाउंट्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए मेटा के AI को ट्रिक किया, इंक्लूडिंग ओबामा एरा व्हाइट हाउस आर्काइव। क्रेमलिन ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया ऑफ कमिटिंग एक्ट्स ऑफ टेरर अगेंस्ट सिविलियंस। दूसरे और लोकल समाचारों में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान टोरंटो कंजेशन रिमेन्स अ बिग कंसर्न फॉर ऑल। प्रीमियर डग फोर्ड ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फायर बैक करते हुए कहा, कैनेडा इज नॉट फॉर सेल, हम US की 51st स्टेट कभी नहीं बनेंगे। प्राइस ऑफ गैस गोज अप टुडे एंड डाउनटाउन टोरंटो में हुए आर्मर्ड कार हाइस्ट में गन सीज की गई, एम्प्लॉई हैज बीन चार्ज। GTA होम सेल्स अप 6% इन मे एज प्राइसेस फॉल एंड टोरंटो टू सी पिक्चर परफेक्ट समर डे टुडे। भारतीय समाचारों में दिल्ली होटल फायर में मारे गए फॉरनर्स वर स्टेइंग फॉर सम मेडिकल ट्रीटमेंट। राइजिंग जेट फ्यूल प्राइसेस के बीच कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपया फंड को अप्रूव कर दिया है। एंड सूरत में 2 बसेस के कलाइड होने से 7 लोग मारे गए, 40 हुए जख्मी, एक बस को लगी आग। नेपाल के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया ने थर्ड पार्टी रोल्स को किया रिजेक्ट। इस लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना और UK की मदद मांगी थी। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से इंडिगो ने मैनचेस्टर के लिए फ्लाइट्स को 31 अगस्त तक बंद करने का ऐलान किया। एंड 2027 पंजाब पोल से पहले अकाली दल में हुई स्प्लिट बनी मेजर चैलेंज। 23 सालों से पंजाब में अकाली BJP अलायंस रहा था, मगर 2020 के ब्रेकअप के बाद मामला गंभीर हुआ फॉर अकालीस। केरला के एक व्यक्ति को एग्जाम के 21 साल बाद गवर्नमेंट जॉब लेटर मिला, मिसेज चांस ड्यू टू रिटायरमेंट एज। जम्मू कश्मीर में हुए 3 क्लाउड बर्स के बाद हुए फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। और पंजाब के किसान की बेटी ने एयरफोर्स अकेडमी मेरिट लिस्ट को टॉप किया। मैसी इवेंट मेस को लेकर पुलिस ने एक्स बंगाल स्पोर्ट्स मिनिस्टर को समन्स भेजे, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर DK शिवा कुमार ने ली शपथ। और दिल्ली होटल फायर किल्ड 21, हैड परमिशन फॉर ओनली 6 रूम्स। पाकिस्तान की खबरों से 2020 मोटरवे गैंग रेप केस में लाहौर हाईकोर्ट ने सेंटेंसेस के खिलाफ कॉन्विक्ट्स की अपील को डिसमिस किया। एंटी टेररिज्म अदालत ने डेथ सेंटेंसेस का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने जापान में एक मस्जिद को इनॉग्रेट किया, टोक्यो सेज इट्स इलीगल। पाकिस्तान की एम्बेसी ने इस मॉस्क प्रोजेक्ट से खुद को डिस्टेंस कर लिया है। जापानीज अथॉरिटीज ने कहा बिल्डिंग को अप्रूवल्स के बिना कंस्ट्रक्ट किया गया था। एक्सटेंडेड डेलाइट को देखते हुए गवर्नमेंट ने बिजनेस क्लोजिंग आवर्स को एक्सटेंड किया। Shops, markets and mall outlets to close by 9 PM. Restaurants allowed to operate until 11 PM. Essential services पूरे मुल्क में exempt की जाएंगी। दूसरी ओर ISPR के अनुसार security forces ने बलूचिस्तान में 17 terrorists को मार गिराया। सारे मारे गए आतंकी terror activities में शामिल रहे थे। Forces ने terrorist networks को भारी नुकसान पहुंचाया है। हथियार ID recover किए गए। सोहेल अफरीदी ने कहा कि वो KP चीफ मिनिस्टर तब तक बने रहेंगे अंटिल जेल्ड इमरान खान इश्यूज न्यू डायरेक्टिव्स। KP चीफ मिनिस्टर ने प्रोविंशियल सेटअप में किसी बदलाव को रिजेक्ट किया है। और सेंटर ने बिजनेसेस के लिए नए ऑस्टेरिटी टाइमिंग्स नोटिफाई किए, सीक्स प्रोविंशियल कंप्लायंस। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कैंपेन पर रिस्ट्रिक्शंस को लेकर गवर्नमेंट और PTI है आमने सामने। गवर्नमेंट ने वादा किया ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे।
स्पोर्ट्स जगत से सुनील गवास्कर ने रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे एयरपोर्ट को ज्वाइन किया टू सेलिब्रेट 850 लाइफ सेविंग हार्ट सर्जरीज फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. सेकेंड ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से हराया. सीरीज एट 1-1 नाउ. सूर्यकिरण कुमार यादव की बैट के साथ स्ट्रगल जारी है. गेट्स आउट चीपली इन T20 मुंबई लीग. सौरव गांगुली की सिक्योरिटी कवर को बंगाल की गवर्नमेंट ने डाउनग्रेड किया फ्रॉम जेड सिक्योरिटी टू वाई. बॉलीवुड खबरों से सूत्रों के अनुसार सुपरस्टार आमिर खान टू मैरी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॉट इन अ प्राइवेट सेरेमनी ऑन जुलाई 5th. डॉन 3 कंट्रोवर्सी के बीच रणवीर सिंह ने फिल्म वर्कर्स बॉडी को सू किया ओवर नॉन कोऑपरेशन एक्शन. कंगना रनौत ने रिकॉल किया हाउ जॉन अब्राहम गेव अवे भारत भाग्य विधाता फिल्म टाइटल फॉर फ्री. कंगना ने रणवीर सिंह के खिलाफ डॉन 3 मामले में फिल्म बॉडी के एक्शन को लेकर कहा आई हैव बीन बैंड बाय एवरीबॉडी. सोनाक्षी सिन्हा कहती हैं कि मैं पीआर गेम्स नहीं खेलती, मुझे उससे कोई काम थोड़ी ना मिलता है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. आमिर खान की लगान अपनी 25th एनिवर्सरी पर थिएटर्स में करेगी वापसी. एंड जेडब्ल्यू मैरियट अपॉइंट्स ऐश्वर्या राय बच्चन एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर. ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल. आपकी रिक्वेस्ट आ रही हैं, वो हम एक एक करके जरूर प्ले करेंगे. द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय छोले भटूरे .ca जो कि 4 लोकेशन से आपको दिल्ली वाले वर्ल्ड फेमस छोले भटूरे सर्व करते हैं. 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन वॉन, 1 इन मिसागा हार्टलैंड वाली लोकेशन, और टेक आउट एंड डाइन इन ऑप्शन अवेलेबल है सारी की सारी लोकेशन पर. चलिए पहला गीत जो है हमने आपके लिए लाइन अप कर दिया है और आप ही की ब्यूटीफुल रिक्वेस्ट है. बाहर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस फील्स लाइक 26. वास्तव फिल्म थी सोनू निगम कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में. फिल्म आया ऑन संजय दत्त एंड नम्रता शिरोदकर. वास्तव द रियलिटी 1999 में रिलीज हुई थी एंड दिस वाज द फर्स्ट फिल्म आफ्टर 20 इयर्स फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला संजय दत्त को फॉर वास्तव. एंजॉय द सॉन्ग.

0: संजू कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
1: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
0: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
2: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव Brampton 905-457-3232 Clear Optical by Varun Kanda.
3: कैंपिंग का प्लान था मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दी बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे। जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आई फोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ, लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% ते $4900 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
4: क्रेडिट कार्ड GST या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद, सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस GTA। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577 416-671-0577 alldebtsolutions.ca।
5: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। ऑल डेट सॉल्यूशन से मोहम्मद सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं। कर्जों से पाएं छुटकारा, 5 लोकेशन से आपको GTA में सर्व करते हैं। एंड द टोल फ्री नंबर इज 1855-671-0577 या फिर 416-671-0577 416-671-0577। सिद्दीक भाई आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर।
6: भाई, कैसे हैं आप?
5: जी फर्स्ट क्लास सिद्दीक भाई। एक तो मैं चाहूंगा कि आप ओवरऑल जो है अपनी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं उस पर रोशनी डालें। उसके अलावा सवाल आज आपके लिए ये है कि अक्सर जब हम बात करते हैं बैंक्रप्सी की, कंज्यूमर प्रपोजल की, या फिर नॉट इवन कंज्यूमर प्रपोजल और बैंक्रप्सी, देयर कुड बी अ थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन जो आप प्रोवाइड करते हैं। सवाल इसमें आता है कि क्लियरेंस एक जो होता है ना, बंदा कहता है कि अब मुझे वो क्लियरेंस मिल गया, नाउ माय क्रेडिट इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, उसको कितना वक्त लगता है ईच एंड एवरी सिनारियो में? कितना टाइम हमें लगेगा अगर आज हम आपसे मिलते हैं फॉर थिंग्स टू स्टार्ट गेटिंग बैक ऑन ट्रैक?
6: जी सनी भाई, बिल्कुल, हम पिछले 25-26 सालों से हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों को। अगर किसी वजह से वो कर्जे में आ जाते हैं, चाहे वो कर्जा छोटा हो या कर्जा बड़ा हो, कर्जे पर्सनल हों या बिजनेस के कर्जे हों, तो उनको हम सेटल करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम रिलीफ मिल सकता है वो क्लाइंट को दिलवाएं और बाकी छोटी छोटी किस्तों में वो पे करें जो वो इजीली अफोर्ड कर सकते हों। इसमें चाहे उन पे क्रेडिट कार्ड के कर्जे हों, लाइन ऑफ क्रेडिट हों, पर्सनल लोन्स हों, पेडे लोन्स हों, या बिजनेस के कोई लोन हों, या इनकम टैक्स का मामला है, CRA के साथ पर्सनल इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग हो, या फिर बिजनेस का GST पे रोल वे सब्सिडी आउटस्टैंडिंग हो, या सीबा लोन हैस्केप लोन लिया था और पे नहीं कर सके, या कोई कार ट्रक या ट्रेवल फाइनेंस किया था पेमेंट नहीं कर सके उठा के ले गए, या कोई प्री कंस्ट्रक्शन कंडो या घर बुक किए थे जिनकी क्लोजिंग नहीं कर सके, बिल्डर उनके पीछे आ रहा है, तो ये सारे कर्जे सेटल हो सकते हैं। उसके लिए कई ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम अपने क्लाइंट को गाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम रिलीफ मिल सकता है वो दिलवाएं और बाकी वो इजीली किस्तों में पे करें। और जहां तक क्रेडिट का तल्लक है, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें क्रेडिट खराब नहीं होता, कुछ ऑप्शन हैं जिसमें क्रेडिट खराब होता है। अगर खराब होता है, अगर आप बैंक्रप्सी करते हैं तो फर्स्ट टाइम बैंक्रप्सी आपका डिस्चार्ज, अगर सरप्लस इनकम नहीं है 9 मंथ में डिस्चार्ज मिलता है आपको, उसके बाद हम क्लाइंट को एनरोल करते हैं क्रेडिट रिबिल्ड प्रोग्राम में और विद इन 2 ईयर उनका क्रेडिट हम बिल्ड वापस बैक टू ट्रैक पे लेके आ जाते हैं उनको। और प्रपोजल की सूरत में जब एक दफा डेट सेटल हो जाता है, पेमेंट शुरू हो जाती है, तो उनका हम क्रेडिट बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। अब जब पे ऑफ हो जाती है प्रपोजल, तो उसके बाद विद इन 1 ईयर 1 to 2 ईयर उनका क्रेडिट भी हम वापस बैक टू ट्रैक पे लेके आ जाते हैं। और जो डेट सेटल में है वो डिपेंड करता है, कुछ ऑप्शन में 2 महीने के बाद हम शुरू करते हैं क्रेडिट बिल्ड करना, कुछ ऑप्शन में 6 महीने के बाद बिल्ड करना शुरू करते हैं, तो विद इन 1 to 2 ईयर क्रेडिट वापस उनको मिल जाता है अगर वो मेरी एडवाइस पे अमल करते हैं, वो स्टेप्स लेते हैं जो मैं उनको बताता हूँ। तो मेरा मैसेज तो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो घर बैठे डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने पूरा कर्जा विद इंटरेस्ट पे करना है। और वो क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि वो किसी फैमिली फ्रेंड से या किसी ऐसे बंदे से मशवरा करते हैं जिसको कुछ पता नहीं होता इस सिस्टम का, और वो उनको इतना डरा देते हैं कि वो घर बैठे मिनिमम पेमेंट्स करते रहते हैं और मेरे पास उस वक्त आते हैं जब वो काफी सारा पैसा इंटरेस्ट में जाया कर चुके होते हैं और डीप डेट में होते हैं, फिर ऑप्शन भी उनके लिए लिमिटेड ही हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ऑन टाइम पेमेंट करते ही मेरे पास आए, इनिशियल स्टेज में इसको सीरियस लें, डेट न बढ़ने दें अपने पे ज्यादा, क्योंकि डेट कम होगा तो हो सकता है आपका क्रेडिट भी खराब ना होता भी है खराब तो बहुत जल्द आपका वापस क्रेडिट बिल्ड हो जाएगा, आप डेट फ्री हो जाएंगे। अगर कर्जा ज्यादा होगा तो डेट फ्री होने में टाइम ज्यादा लगेगा, फिर क्रेडिट बिल्ड करने में टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखें, और एक चीज ध्यान में रखें कि क्रेडिट का खराब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको दोबारा रीबिल्ड किया जा सकता है। हम अपने क्लाइंट को एनरोल करते हैं क्रेडिट रीबिल्ड प्रोग्राम में, उसमें आपका क्रेडिट बिल्ड करने में आपकी पूरी पूरी हेल्प करते हैं। और जो एसेट हैं, चाहे घर हैं, गाड़ियां हैं, RRSP, RESP, बिजनेसेस, ये तमाम चीजें एज इट इज आपके पास रहती हैं, कुछ आप लूज नहीं करते और डेट फ्री हो जाते हैं। इसलिए अगर आप एक कर्जा है तो नंबर है 416-671-0577 पे कॉल करके, चाहे आप फोन पे इन्फॉर्मेशन ले लें या मेरी किसी भी लोकेशन पे आके मुझसे मिल सकते हैं, जो स्कार्बरो में है मार्कम एनालिसमर के पास, इटोबिको में हमारा हेड ऑफिस है किपलिंग रेक्सल के पास, ब्रैम्पटन में है ब्रैमली बुवेड के पास, नंबर 416-671-0577। और एक चीज की मैं गारंटी करता हूँ कि अगर मैं आपका केस रिव्यू करने के बाद लूंगा तो मेरे ऑफिस से आपको कभी भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। जो आपसे वादा करूंगा पहली मीटिंग में उसके मुताबिक आपका केस अप्रूव होगा, और जैसे मैंने बताया क्रेडिट बिल्ड करने में आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। इसलिए अगर आपके कर्जा है चाहे वो छोटा या बड़ा, कॉल कर सकते हैं 416-671-0577, टोल फ्री नंबर है 1-855-671-0577 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
5: बिल्कुल जी, ऑल दैट सॉल्यूशंस। मोहम्मद सिद्दीक, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, 26-27 साल का एक्सपीरियंस है, तो इतने सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड सिद्दीक भाई कर सकते हैं, जो कि आप घर बैठे सिर्फ सोचें या इधर उधर बात करें और ये समझ लें कि भाई आपको सब पता चल गया है तो ये गलत होगा। कर्जा है आपके ऊपर, उसको गेट रिड करना आपका काम है और करना भी चाहिए, नहीं तो फिर अगला स्टेप आप कैसे लेंगे, किस तरह से अपने क्रेडिट को बैक ऑन ट्रैक करेंगे, उसमें भी सिद्दीक भाई आपकी मदद करते हैं। एंड द नंबर टू कॉल 416-671-0577। 5 लोकेशंस है GTA में, कोई ना कोई एक लोकेशन आपके घर के करीब होगी, सो गेट एन अपॉइंटमेंट, सिद्दीक भाई से मिलें। 416-671-0577 and just say goodbye to all your debt problems, all debt solutions. Sidiq bhai, bahut bahut shukriya.
6: Thank you, Sunny bhai.
5: Thank you, sir. 416-671-0577 is the number. And okay, Mohammad Rafi sahab ki request aayi hai geet ki, kaun hai jo sapno mein aaya. And ब्यूटिफुल सॉन्ग है। बाहर का तापमान हो चुका है 27 डिग्री सेल्सियस। ट्रेड वॉर को लेकर कैनेडा US आमने सामने हैं, वॉशिंगटन में मीटिंग्स हो रही हैं, एंड वी जस्ट होप एंड प्रे कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, थिंग्स सेटल डाउन हो जाए, बिकॉज दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ग्रीफ टू एवरीवन। क्योंकि जहाँ पर अच्छे भले रिलेशन थे US कैनेडा के, ये पिछले जो 1.5 साल से हम चीज़ों को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है काफ़ी सावर हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो ब्रांड न्यू ब्रिज है उसका खुलना भी कहीं ना कहीं दिक्कत में आ चुका है, खटाई में जा रही है पूरी बात। सो लेट्स सी व्हाट रियली एंड्स अप हैपनिंग। एंड आई थिंक ट्रंप को भी जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया भर में एक इकोनॉमिक जंग छेड़ी हुई है, उसके अलावा जो ईरान में चल रहा है एंड ऑल द वेनेजुएला में जो चल रहा है, ऑल द सिचुएशन दैट ही हिमसेल्फ हैज क्रिएटेड, आई थिंक द लास्ट थिंग ही वॉन्ट्स इज कि उनके जो एलाइज हैं, द बेस्ट नेबर्स हैं आज तक ओवर 100 ईयर्स नाउ, US कैनेडा के साथ बेहतर रिश्ते हों और थिंग्स स्टार्ट मूविंग इन अ बेटर वे फॉर द बेटर फ्यूचर फॉर बोथ द नेशंस। चलिए, कल प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने एक और चीज़ भी मेंशन की है, जहां पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो बैक होम वाली पॉलिटिक्स है, जो बैक होम वाली ग्रजेस हैं, जो एनिमोसिटीज हैं, वो हमें लेकर इस देश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम यहां पर आते हैं ताकि हम असिमिलेट हों, हम यहाँ के कल्चर को समझें, सीखें, अपनी अच्छाई यहाँ पर लेके आएं, उस चीज़ उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं इस देश में। जब हम बैक होम वाली पॉलिटिक्स को, बैक होम वाली चीज़ों को यहाँ पर लेके आते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही फैलती है और वो होती है नेगेटिविटी। एंड हु एक्चुअली वॉन्ट्स टू लिव इन कैनेडा एंड देन कंप्लेन अबाउट ऑल दैट स्टफ दैट इज़ गोइंग बैक देयर एंड पीपल डोंट वॉन्ट टू सी व्हाट्स गोइंग बैक होम, क्योंकि अगर वही वो चीज़ आपको इन रियलिटी बॉदर करती है तो जहां जहां से जो जो लोग आए हैं और जो जो इश्यूज वो यहां पर उठाकर जो भी चीजें करते हैं, देन दे प्रॉब्ली नीड टू गो बैक एंड यू नो टू देयर होमलैंड एंड प्रॉब्ली डू द सेम थिंग देयर रादर देन यहां का एटमोस्फियर जो है उसे खराब करें। एंजॉय द सॉन्ग, आते हैं बहुत ही जल्द वापस।

0: 3 मीटर बस इन्ना को याद रखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਛੂਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ। esasafe.com/stoplooklive ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
1: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cotral Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
2: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर्स अते ओनादी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।
3: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
4: अच्छी, याद है, याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
3: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
5: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। choleBhature.ca, कॉल 9054582448.
6: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills. This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें। 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters, 289-748-4040 289-748-4040.
7: Another Don Clean with the Don Ducks.
8: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
9: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
8: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
9: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
8: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
9: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
8: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
7: Dawn Platinum, the better grease getter.
10: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
11: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें। 647-628-0040, दैट इज 647-628-0040।
10: यहाँ कल

0: स्टेशन।
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
0: Skylake Immigration।
2: South Asian Unlimited Radio presents Immigration Unlimited by Manan Gupta, powered by Skylake Immigration.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस इमिग्रेशन अनलिमिटेड वाले सेगमेंट में स्काईलेक इमिग्रेशन से मनन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। नंबर इनका प्लीज नोट कर लीजिए, बिकॉज दिस इज द नंबर यू विल नीड राइट आफ्टर द सेगमेंट। कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर है 416-451-0040। आपके सवाल, मनन जी के जवाब। मनन जी, आपका स्वागत है।
4: थैंक यू सो मच सनी जी फॉर हैविंग मी। प्रोग्राम को सुन रहे और प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए सभी लिस्टर्स और परिवारों को बहुत प्यार भरी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू
3: जी। आपको भी गुड आफ्टरनून। तैयार हैं आप सवालों के बौछाड़ के लिए?
4: जी आप बौछाड़ नहीं, आप तो प्यार वाली बात करते हैं। आपकी आपकी जो सी बातें और आपका जो अंदाज है वो इट्स ऑलवेज वेलकमिंग जी।
3: बट लिसनर्स का पता नहीं होता ना, अब उनका अंदाज क्या है क्वेश्चन पूछते वक्त और क्या क्या दिक्कतें उनको इमिग्रेशन में आ रही है, ये मैं गारंटी नहीं कर सकता
4: जी। That's true.
3: तो चलिए मनन जी, ऑन द हॉट सीट एज ऑलवेज वेंसडे के दिन, और सुभाष आहूजा जी हमारे पहले लिसनर है जो पूछ रहे हैं मनन जी से कि मनन जी प्लीज प्रोवाइड सम अपडेट ऑन द प्रपोज्ड चेंजेस टू द ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम।
4: ओके, सो बेसिकली सनी जी, ये जो OINP प्रोग्राम है, ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, क्योंकि अलग अलग प्रोविंसेस में डिफरेंट इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम चलते हैं। सो ओंटारियो का प्रोग्राम OINP के नाम से जाना जाता है, और इनफैक्ट इसमें मेजर चेंजेस ओंटारियो गवर्नमेंट ने पिछले साल के अंत में दिसंबर में अनाउंस की थी, और उसके बाद मार्च में नोटिफिकेशन भी जारी की थी कि May 30th, जो अभी 3 दिन पहले निकल कर गई है, May 30th से जो स्ट्रीम्स एग्जिस्टिंग स्ट्रीम्स थी OINP की, वो सारी की सारी जॉन्सी हैं, दे हैव बीन रिवोक्ड। सो बेसिकली OINP को रीवैम्प किया जा रहा है। किस तरह से रीवैम्प करना है ये अभी सरकार ने डिटेल्स नहीं दिए, लेकिन इशारा उन्होंने ये जरूर किया था कि इम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम जारी की जाएगी, जिसमें हायर स्किल्ड वर्कर, जिसमें Tier 0 से लेकर 3 कैटेगरी के, और जॉनसे फ्रंट लाइन वर्कर्स जॉनसे हैं Tier 4 and 5, उनको भी शामिल करेंगे। सो उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक कुछ ना कुछ फॉर्मली अपडेट्स OINP पोर्टल पर आ जाएंगी। दिस इज ऑल ड्यू टू गवर्नमेंट्स डिजायर टू अलाइन विद द लेबर मार्केट नीड्स, और खास करके इम्प्लॉयर वेरिफिकेशन प्रोसेस को वो और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं जी। सो स्टे ट्यून्ड विद ऑल द OINP अपडेट्स, जैसे ही आएंगी वी विल बी द फर्स्ट टू शेयर इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म
3: जी। बिल्कुल, और मनन गुप्ता जी से आप संपर्क ऑफ एयर कर सकते हैं सेगमेंट के बाद फॉर ऑल योर इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर्स। Skylake Immigration, द नंबर वन कंपनी in GTA in Ontario in Canada, 416-451-0040. Manan ji, ye Pramod Jain ji ka sawal hai agla wala aapke liye, and it's a bit he sounds worried because wo kehte hai ki my dad missed his citizenship oath ceremony due to a medical emergency. He will be hospitalized for the next few weeks. What can I do to reschedule and complete the process for my father?
4: Oh, that's very unfortunate, Pramodji, to hear. And first of all, our good wishes for your dad's full and speedy recovery. Definitely, this is a very important step in the citizenship overall process mein ki aapko oath leni hoti hai. I'm not very sure ki unki jo oath thi, wo in-person thi ya virtual thi. Aapke question mein shayad clarify nahi hai. But jo bhi process tha, agar wo unki miss ho gayi hai, so the best recourse would be ki aap ek web form ke zariye ya jo aapko oath ceremony की लेटर आई थी उसमें एक ईमेल दिया होगा, उस ईमेल के ऊपर आप राइट अवे जितनी जल्दी हो सके, कन्वीनियंटली पॉसिबल, आप उनको ईमेल कर दें। वैसे तो अगर कोई इस तरह का नो शो होता है तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रीस्केड्यूल कर दिया जाता है, लेकिन सिंस आपके सिचुएशन ऐसी है कि आपके डैड अभी कुछ हफ्ते शायद हॉस्पिटलाइज रहेंगे, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी एक दो महीने का गैप लेकर रिक्वेस्ट करें. और ये जरूर इस चीज का ख्याल रखें कि जो भी रीस्केड्यूलिंग होगी वो डिपेंडिंग अपॉन अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज होगी. कई बार राइट अवे सेरेमनीज नहीं स्केड्यूल की जाती डिपेंडिंग अपॉन किस शहर में आप रहते हैं, ऑनलाइन है या इन पर्सन है. बट डेफिनेटली सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो अभी आपके डैड की अच्छी सेहत है, उसके लिए हम यू नो वी प्रे टू द ऑलमाइटी. जी
3: जी. इमिग्रेशन के सवाल आते आते एक और सवाल ऑफ मुझे किसी का आ गया है कि मनन जी कैन यू से समथिंग अबाउट दीपिका डमरला कैरोलाइन पैरिश को चैलेंज कर रही हैं मिसागा मेयरल रेस में. एनीवेज वी कैन डिस्कस दैट लेटर, बट इफ मनन जी हैज टाइम ही कैन आंसर दैट. बट उससे पहले मैं इमिग्रेशन सेगमेंट को ख़त्म करना चाहता हूँ. संदीप नेगी जी का आखिरी सवाल है कि मनन, माई ब्रदर्स विजिटर वीज़ा वॉज रिफ्यूज एंड ही रिसीव्ड ऑफिसर डिसीजन नोट्स डिटेलिंग सम ऑफ द रीजन्स फॉर दैट. इज इट स्टिल एडवाइजेबल टू ऑर्डर GCMS नोट्स?
4: देखिए ये डेफिनेटली GCMS नोट्स जो उनसे होते हैं जिसे कहते हैं ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो नोट्स ऑफिसर डिटेल्ड अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करता है, दे आर ऑलवेज बेनिफिशियल डिपेंडिंग अपॉन कि आपके जो ब्रदर के रिफ्यूजल में जो ऑफिसर डिसीजन नोट्स आए हैं उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है. कई बार तो जिसे ODN कहा जाता है, ऑफिसर डिसीजन नोट्स, ये प्रोसेस अभी रिसेंटली पिछले साल ही गवर्नमेंट ने शुरू किया है. एक पेज की चिट्ठी आ जाती है आपके रिफ्यूजल के साथ कि क्या क्या कारण थे, लेकिन कई बार वो कारण डिटेल्ड नहीं होते, कई बार वो जस्ट एक सुपरव्यू यू नो सुपरफ्लूअस रीजंस होते हैं. सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप GCMS नोट्स को जरूर ऑर्डर करें, क्योंकि उसमें क्रेडिबिलिटी कंसर्न, उसमें कोई सिक्योरिटी चेक्स या किसी भी इस तरह की जानकारी है वो आपको GCMS नोट्स में मिलेगी. लेकिन इस चीज का अवश्य याद रखें कि ये GCMS नोट्स कम से कम 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं और कई बार तो महीनों भी लग जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज बेस्ड अपॉन आवर प्रैक्टिस वी हैव सीन कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 4 से 6 हफ्ते में महीने डेढ़ महीने में डिटेल्ड 10-12 पेज के जो GCMS नोट्स होते हैं वो आपको रिलीज कर दिए जाते हैं. जी
3: जी. एंड मनन जी का नंबर 416-451-0040, 416-451-0040. मनन जी, अगर आधा मिनट है आप कुछ वो हमारे लिसनर के क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं कि दीपिका डमरला जी ने आज अपनी नॉमिनेशन जो है वो मेयरल रेस में दाखिल कर दी है, इफ यू वांट टू क्विकली कमेंट ऑन दैट.
4: टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस न्यूज हैज कॉट मी बाय सरप्राइज. आई वाज नॉट फॉलोइंग दिस न्यूज.
3: जस्ट हैपेंड
4: बट दैट्स वेरी एक्साइटिंग न्यूज एक्चुअली. देखिए ये एक बड़ी एक जिसे कहते हैं एक करेजिंग और इनकरेजिंग स्टेप होता है जब कोई एग्जिस्टिंग काउंसलर अपनी सेफ सीट को साइडलाइन करके एक हायर पोजीशन के लिए नॉमिनेशन भरता है. सो अगर दीपिका डमरला जी जो वार्ड 7 से पिछले लंबे समय से मिसिसागा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पिछली बार भी जब कैरोलिन पैरिश बाय इलेक्शन में मेयर के चुनाव के लिए खड़े हुए थे शी ऑल्सो रैन एट दैट टाइम, लेकिन अब अगर इन्होंने वार्ड 7 के काउंसलर की जगह मेयर के लिए चुनाव लड़ना है तो शी इज एक्चुअली स्टेपिंग अवे फ्रॉम हर सेफ सीट, राइट, जो कि एक ट्रेडिशनली सेफ सीट मानी जा रही है उनके लिए क्योंकि बड़े लंबे समय से जीते हैं. सो लेट्स सी कि मिसिसागा की जॉनसी मेयरल रेस में किस तरह के दृष्टिकोण आगे आते हैं, किस तरह से चैनलाइज वोटर्स को किया जाता है. एक और इनके कोलीग हैं वो भी मेयर के लिए लड़ रहे हैं और कैरोलिन पैरिश भी यू नो डेफिनेटली शी वॉन्ट्स टू सर्व अगेन. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वोटर्स को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज के साथ, आपको किस तरह की सपोर्ट नॉन ट्रेडिशनल यू नो पॉलिटिकल फोर्सेस से मिलती है, क्योंकि सनी जी आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने ये जरूर बयान दिया था कि अगर बॉनी क्रॉम्बी द्वारा मेयर के चुनाव के लिए आते हैं तो ही विल मेक श्योर कि शी डजंट विन, यू नो. सो इस तरह की जब आप यू नो पॉलिटिक्स के साथ खेलते हैं तो यू रियली नीड टू हैव अ गुड ग्राउंड लेवल सपोर्ट बेस जो रियल सेंस में वोटिंग वाले दिन आपके हक में वोट डालकर आपको जिताए. जी
3: जी बिल्कुल. और दोस्तों कोई भी इमिग्रेशन मैटर है ऑलवेज याद रखें स्काईलेक इमिग्रेशन. मनन गुप्ता जी एंड हिज टीम 416-451-0040 416-451-0040. और कई बार जो चीज़ इमिग्रेशन की फाइल में बड़ी सिंपल सी लगती है वही सबसे खतरनाक साबित हो जाती है, बिकॉज छोटी सी मिस्टेक, टाइम भी बर्बाद, पैसे की बर्बादी एंड ऑल द हार्ट एक हेड एक दैट यू हैव टू गो थ्रू यू नो आपके लव्ड वंस को लेकर ये फाइल्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं सो गो विद द प्रोफेशनल्स हु नो व्हाट दे आर डूइंग स्काईलेक इमिग्रेशन मनन गुप्ता जी एंड द टीम मनन जी बहुत बहुत शुक्रिया
4: थैंक यू वेरी मच जी सी यू नेक्स्ट वीक
3: थैंक यू जी 416-451-0040 एंड गुरु रंधावा अर्जुन की आवाज में हिंदी मीडियम का गीत मेरे मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर्स रहे हैं और रहेंगे इरफान खान व्हाट अ अमेजिंग एक्टर सूट

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और हम पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा पिनाक ओझा जी, 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं. मेजर इंटरसेक्शन है नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड, एंड द क्लिनिक इज ओपन 6 डेज अ वीक, मंडे टू सैटरडे, 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग. एंड फॉर द मसाज सर्विसेज ऑल्सो आप अपनी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं. प्लीज डोंट वॉक इन. एंड द नंबर टू कॉल इज 647-760-2779. ऑल अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका दवाई शिप की जाती है. फोन पर कंसल्टेशन करें, द मेडिसिन विल रीच योर होम. एंड अगेन नंबर 647-760-2779. मीता जी आपका स्वागत है.
5: थैंक यू सनी जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन. सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैमचो
4: जी, मजा मा, गुड आफ्टरनून मीता जी. एंड मीता जी, आज स्पेशल हेल्थ सेगमेंट में किस बीमारी को लेकर आज हम करेंगे बातचीत?
5: लेरिंजाइटिस, जिसको आमतौर पे हम आवाज बैठ जाना कहते हैं, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस,
4: बिल्कुल
5: इसी के बारे में आज देखेंगे. मीन्स एबनॉर्मल चेंज इन वॉइस, जिसको हम कहते हैं ना कि वॉइस की पिच चेंज हो जाना, वॉल्यूम में बदलाव दिखता है या टूटी सी आवाज निकल रही है, वीक वॉइस हो जाना. सो लेरिंग्स, जिसको हम स्वर पेटी कहते हैं, हमारे रेस्पायरेटरी ट्रैक का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं. अब ये वोकल कॉर्ड्स जो है वो वी शेप के मसल के दो बैंड्स होते हैं जो कि वॉइस बॉक्स के अंदर ये होते हैं. जब आप बोलते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, जिससे फिर साउंड प्रोड्यूस होता है और हमारी आवाज निकलती है. सो हॉर्सनेस डेवलप होने का मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट लेरिंजाइटिस, मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स. और ये होता है आजकल जो फ्लू एंड कोल्ड का वायरस चल रहा है, कफ एंड कोल्ड, खांसी जुकाम हुआ, उस करके कई बार आपकी आवाज जो है ये बैठ जाती है. एक्यूट कंडीशन है वो, कुछ दिनों में आप देखोगे कि जैसे ही स्वेलिंग कम होती है हमारे वोकल कॉर्ड से, तो उसके साथ आवाज नॉर्मल भी हो जाती है. लेकिन जब ये लगातार सही नहीं हो रहा है, फिर ये कंसर्न की बात बन जाती है. अब समटाइम्स हम सब में होता है कि छोटा बच्चा भी है, जोर से चिल्ला या चीखना, तो उसके साथ एक दो तीन दिन के लिए वहां पे सडनली ही स्वेलिंग आके फिर उसकी आवाज जो है वो बैठ जाती है, टूटी सी आती है, एंड फिर आप आवाज फट जाना जिसको कहते हैं, या रुक जाना, निकल ही नहीं पाती है, वो बोल ही नहीं पाता है दो तीन चार दिन के लिए. लेकिन थोड़े दिन बाद ये वापस आ जाती है. लगातार 4-6 महीने से 8 महीने से जब आपकी आवाज सही नहीं निकल रही है, फिर आपके स्पेशलिस्ट कहते हैं कि आपको अंदर कैमरा डाल के चेक करना पड़ेगा, लेरिंगोस्कोपी करनी पड़ेगी. तो उसके साथ पता चलता है कि वोकल कॉर्ड के ऊपर नोड्यूल्स बन जाते हैं, जैसे ओवर यूज है, सिंगर्स वगैरह हैं, पब्लिक स्पीकर्स वगैरह हैं, तो उनको अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि वोकल कॉर्ड के ऊपर छोटे से पॉलिप बन गए हैं, सिस्ट से बन गए हैं, या जिसको हम नोड्यूल्स कहते हैं. ये आमतौर पे बिनाइन होते हैं. अब ये करके आपको लगातार आपकी आवाज फटी सी रहती है, भारी हो जाना, प्रॉपर निकल नहीं पाना, और ये भी जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, शाम की ओर आप देखेंगे कि पूरा दिन, सुबह तो आप बोल लेते हो लेकिन शाम की ओर फिर आपकी आवाज थकी थकी थकी सी होती है या फिर निकल नहीं पाती है प्रॉपर, और ऐसे में ज्यादा सिंकिंग हुई, ज्यादा बोलना हुआ, तो उसके बाद भी ये ट्रबल आपको आ जाएगी। और जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको जुकाम हुआ या एक्यूट लेरिंजाइटिस हुआ, तो फिर उनकी कंडीशन कंप्लीटली, जैसे आवाज कुछ टाइम के लिए नहीं निकल पाती है। जिनको आप कह लो कि वोकल कोर्ड पैरालिसिस हुआ है, कि कोई इंजरी हुई है, स्ट्रोक वगैरह हुआ है, तो ऐसे में वोकल कोर्ड का पैरालिसिस हो जाता है
4: जी।
5: तो उससे फिर ये लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन बन जाती है कि उनको ये लेरिंजाइटिस की ट्रबल रहती है। अब एक्यूट लेरिंजाइटिस यूजुअली कुछ दिनों में सही हो जाता है, लेकिन जब 2-3-4 हफ्तों से ज्यादा टाइम से आपकी आवाज सही नहीं निकल रही है, तो फिर इसको क्रोनिक लेरिंजाइटिस कहते हैं। और जब पता चला है कि क्रोनिक है, तो ऐसे में कुछ ग्रोथ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नाउ इन होम्योपैथी वी डू हैव वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट एज वेल एज क्रोनिक लेरिंजाइटिस। तो जैसे 2-3-4 दिन आवाज रुक के फिर सही हो रही है, तो ऐसे बार बार हो रहा है, रिकरिंग ये प्रॉब्लम आ रही है, उनको मैं ये हाईली सजेस्ट करूंगी। और जितने भी पेशेंट जिनको ग्रोथ हुआ है, नोड्यूल्स डेवलप हुए हैं, उनको सर्जरी करने की जरूरत नहीं रही है। सो सर्जरी कराने से पहले ये ऑप्शन आप जरूर एक्सप्लोर करें, जिस करके मेडिसिन के साथ ही ये पॉलिप्स हैं या नोड्यूल्स बने हुए हैं, उसके ग्रोथ को सही किया जा सकता है। और जिन लोगों को एलर्जीज की प्रॉब्लम है, या जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम लो है, बार बार देख लें कि जुकाम, खांसी, कोल्ड फ्लू है, तो ऐसे में ये ट्रीटमेंट आप दोगे, बेसिकली उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, तो साथ में ये जो बार बार रिकरिंग कंडीशन है उसमें भी आराम मिलेगा। कोई भी एक्यूट क्रोनिक डिजीज के लिए या फिर मसाज थेरेपी के लिए आप काव्या होम्योकेयर से मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं।
4: जी बिल्कुल दोस्तों, काव्या होम्यो केयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा, पिनाक ओझा जी, 10 कॉट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से सर्व करते हैं। नॉर्थ पार्क एयरपोर्ट रोड का इंटरसेक्शन है, एंड आप वॉक इन भी कर सकते हैं। अगर पूरा परिवार जा रहा है तो आप अपॉइंटमेंट बना लें, दैट्स ऑल्सो गुड आइडिया। बट देर ओपन 6 डेज अ वीक फॉर योर कन्वीनियंस, मंडे टू सैटरडे 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग, 10 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक। नंबर है 6477609 6477602779, and काव्या होम्यो केयर, दिस इज द ओनली नंबर, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं। मीता जी बहुत बहुत शुक्रिया,
5: थैंक यू सो मच सनी,
4: थैंक यू जी। 6477602779। 1:08 बाहर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। नेहा कक्कड़ की आवाज में मोरनी बन के गुरु रंधावा दे रहे हैं साथ। एंजॉय द सॉन्ग, आई विल बी बैक।

0: लेक डेदा प्लान सी पर टोयोटा टंडरा दे बिना सकून नहीं शोर मिलिया। जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंडरा ले आओ ता एस दी 11,000 पाउंड तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है। रेड टेक डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टंडरा 4x4 क्रू मैक्स DRD ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
1: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है। बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे वन से। कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ 416-666-2745।
2: Another Don Clean with the Don Dux.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
6: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
5: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
7: She is right, चाहे बच्चे हो या बड़े, wear smart glasses every day। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
8: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcbc.info और 384 Finley Ave इन Ajax 289-372-3330 और acvc.info।
9: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।
10: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
11: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
10: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
11: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ।
10: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ।
11: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਨੂੰ
10: 647-739-8710, license number M200-34504.
12: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek suneya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
13: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। होम लाइफ सिग्नेचर रियल्टी की रियल्टर सुखी कौर जी हमारे साथ हैं और बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट की दुनिया में। और आज जो हमने रिपोर्ट भी शेयर की थी, मैंने हेडलाइंस के दौरान भी शेयर की थी, उसको लेकर भी सुखी जी से मैं कुछ इनपुट लेना चाहूँगा, उनका फीडबैक लेना चाहूँगा। एंड देन द अमेजिंग लिस्टिंग्स दैट शी ब्रिंग्स फोर्थ एवरी वीक 647-408-7066। सो टेक्निकली द रिपोर्ट सेड दैट मेक इन numbers pichle saal se behtar hain. Numbers have gone up for the GTA home sales, obviously, because the prices have gone down. And how does Sukhi ji look at this entire picture? And June, July, August se kya umeed rakhti hain for the summer? Let's know from the expert herself. Sukhi ji, aapka swagat hai.
14: Thank you so much, Sunny ji. सबसे पहले तो आपको and सभी listeners को मेरे तरफ से very very happy Wednesday. Amazing weather out there. After you know, I know we had some rainy weekends and whatnot, but बहुत ही अच्छा weather है. I hope everybody's enjoying and doing what needs to be done.
13: Yeah, it seems like ऐसा weather है after ages. Like we've not seen this kind of weather.
14: Exactly.
13: So has the real estate market also not seen the kind of weather that real estate market saw in May, because the numbers went up, the sales went up? I'm seeing a lot of aap pichle hafte bhi mention kar rahi thi, lots and lots of open houses happening. Kis tarah se aap is puri picture ko dekh rahi hain for the June, July, August?
14: जी ऑफ कोर्स अनी जी, जैसे कि हमने पहले भी आई बिन सेइंग कि जैसे जैसे समर आती है जो घर होते हैं मार्केट में वो मोर सेल होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ वेदर व्हेन पीपल गो आउट टू यू नो सी एंड लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज. आई नो विंटर वाज नॉट वेरी, you know, it was very heavy winter that we had this year. So market was slow, properties were sitting for so long, but it has been, ab bikni shuru ho gayi hai. Ye zarur hai ki jo prices hain us par zyada ye nahi hua ki high rocket ja rahi hain, but fir bhi it is moving. And abhi jo new news vagera aayi hai in regards to recession and whatnot, that is 100% making big impact on you know each and everything in the market.
13: जी पर्सनल लेवल पे सुखी जी, एज अ रियल्टर, एक पर्सनल लेवल पे अगर मैं आपको पूछता हूं, आर यू हैप्पी विद द वे द मार्केट इज राइट नाउ एंड द वे द मार्केट इज पोजिशनड फॉर दिस समर? बिकॉज हम सबको पता है कि इस देश में, नॉर्थ अमेरिका में, जून जुलाई अगस्त बहुत बड़े महीने होते हैं फॉर होम सेल्स.
14: जी you know what the thing is, Sunny ji, if we think of in terms of agar hum buyers ke prospect se dekhe, so it is of course good for them, because you know bahut recently jobs per impact par hai, jo hamari groceries, everything, this price has gone up, and jobs ke jo income hai aapki waise ki waisi hai, and jo prices the because of you know after COVID and whatnot, it was very very tough for first time buyers to step into the market. So if you think that way, so it is, yes, it is good for people, so that at least you know instead of paying rent, now today's market they can afford jitna wo rent pay kar rahe hain usse maan lijiye $200-$400 upar ki aapki mortgage payment ho jati hai, at least wo aapka apna ghar hai, you are paying your own mortgage, taki at the end of the day wo ghar aapka ho, rather than kisi investor ki ya kisi aur ki aap mortgage ki jo payments hain wo de rahe hain.
13: Bilkul.
14: But again, if you think about sellers' prospect, and especially jinhone high market mein ghar buy kiye the, unke liye of course it is not very good thing. You know, they're taking loss. But in general, in real estate, agar aap over the time dekhen, you always gain.
13: जी.
14: Understand कि कभी बहुत ज्यादा high drops, ups and downs आते हैं, but overall you never lose.
13: बिल्कुल. And Sukhi ji को call करने का मतलब ही ये है कि भाई thousands and thousands of dollars की negotiation table पर आपकी बचत पक्की है, क्योंकि Sukhi ji knows कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू एग्जैक्टली बायर के लिए, या इवन अगर सेलर की हम बात करते, क्या होनी चाहिए. दिस इज वेयर हर एक्सपीरियंस कम्स इन. 6474087066. सुखी जी, कुछ अमेजिंग लिस्टिंग्स हो जाएं इस अमेजिंग वेदर में?
14: जी ऑफ कोर्स. सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि हमारे पास ब्रैम्पटन में बहुत ही अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है हमारे फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, मेरे पास सेमी डिटैच घर आया है जो कि 3 बेडरूम का घर है. आपको एक बेडरूम की फिनिश्ड बेसमेंट मिलेगी क्रेडिट रिज एरिया में. अगर आप फेमिलियर हैं तो न्यूअर एरिया है, न्यूअर प्रॉपर्टीज है वहां पर, उस एरिया में आप घर लेना चाहते हैं. बहुत ही अच्छी लोकेशन है, हाईवे के करीब है, स्कूल इज राइट देयर. सेमी डिटैच घर 3 बेडरूम का, एक बेडरूम की फिनिश बेसमेंट के साथ लेना चाहते हैं इन ब्रैम्पटन, अफोर्डेबल प्राइस में लेना चाहते हैं, मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लीजिए 6474087066. 647-408-7066. अगर आप किचनर एरिया में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज राइट देयर, वॉरन यूनिवर्सिटीज राइट देयर, बहुत बहुत बहुत ही अच्छा डिटैच घर आपको मिल जाएगा, जो कि 3 bedroom का डिटैच घर है. उसकी 1 bedroom की फिनिश्ड बेसमेंट है. बट द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज कि इट इज ऑन अ रिवील लॉट पर ये घर है. आपको स्विमिंग पूल मिलेगा इन द बैकयार्ड, क्योंकि इट्स अ ह्यूज बैकयार्ड. देयर इज अ स्विमिंग पूल, देयर इज अ हॉट टब. Fully upgraded property hai. Nothing needs to be done. Very, very, very modern look of is ghar ka jo hai. And open concept ka ye ghar hai. In Kitchener, aap property buy karna chahte hain, detached kar lena chahte hain in mid-700s. Mid-700s per ravine lot per detached kar lena chahte hain. Again, without any delays, give me a call at 647-408-7066. Not just this, agar aap in Canada ke liye ghar lena chahte hain, kisi bhi tarah ki investment karna chahte hain, mere sath contact kijiye. Hamare paas bahut bahut sari opportunities hoti hain jo ki aapki need ke according I can guide you what's gonna suit you the best.
13: Ji bilkul.
14: Uske liye karna kya hai, pick up your phone, give me a call, 647-408-7066. सर ये बताना चाहूंगी, समटाइम्स क्या होता है कि वी आर अंडर सम काइंड ऑफ रॉन्ग इम्प्रेशन दैट यू नो व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग. मेरे रिलेटिव्स कह रहे हैं कि आप घर नहीं ले सकते, मे बी आपकी यू नो यू डोंट हैव एनफ डाउन पेमेंट, मे बी आपकी जॉब की वजह से आप क्वालिफाई नहीं हो सकते, और क्रेडिट फॉर एनीथिंग. वी अंटिल आप किसी प्रोफेशनल से बात नहीं करते, प्लीज अपने आप से अंदाजा मत लगाइए. Even 1%, you can't get it. Maan lijiye, it's, yeah, you're right. But there is no harm in discussing your situation when there's no consultation fee.
13: Exactly.
14: You're even thinking of, you know, owning the house. Agar aap ye bhi jana chahte hain, maybe aaj nahin, 6 mahine mein, ya saal mein, you are able to do it. Let's talk. Let's see what's the best we can do for you. As low as aapke paas 5% ke bhi down payment ho, to I could help you buying a house in Canada. Sukhi Kaur, 647-408-7066.
13: बिल्कुल जी. एंड दोस्तों, अच्छी बात यह है कि सुखी जी के पास एक इंटायर टीम है, बिना किसी ऑब्लिगेशन के. जब एज अ फैमिली आप जाकर सुखी जी से मिलते हैं, तो सुखी जी के ऑफिस में मॉर्गेज की बकायदा एक टीम है जो कि आपको प्री अप्रूवल का भी बता के देते हैं, बिना किसी ऑब्लिगेशन का, कि दिस इज़ वॉट यू क्वालिफाई फॉर एंड दिस इज़ वॉट यू शुड लुक फॉर. सो ये सारा काम आपके लिए कर दिया जाता है. सुखी जी की एक्सपर्टीज आपको मदद करती है टू अक्वायर दैट ड्रीम होम की चाबियाँ. कॉल करें 647-408-7066, 647-408-7066. Sukhi ji, have a wonderful day.
14: Thank you ji, have an amazing week ahead.
13: Thank you ji. 647-408-7066 is the number. And Meeka Singh ki awaaz mein Ba Mulaiza filmaya on Katrina Kaif and Akshay Kumar. Enjoy the song. Aate hain wapas. Bahar ka taapman ho chuka hai 28 degrees Celsius.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: कैंपिंग दा प्लान था मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उत्थे. जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आई फोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े. रेड टैग डेज दा लाभ लाओ. लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% $4900 डाउन दे नाल. विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ.
2: McQueen Dental Care, Dr. Rajgill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Seerat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883. This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें. Some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30+ locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Late day ka plan tha aur Toyota Tundra ke bina sukoon nahi, shor mila. But when you get a Tundra at your local Toyota dealer, to iski up to 11,000 pounds ki towing capacity se, aap decide karenge ki rukna kahan hai. Take advantage of red tag days. On now, lease a 2026 Tundra 4x4 Crew Max TRD off-road from $172 weekly for 36 months at 4.29% APR with $5,800 down. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: अब घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस हो गई बिल्कुल टेंशन फ्री. अप्लायंस टू फिक्स है आपका भरोसेमंद सर्विस पार्टनर. फ्रिज, ओवन, चूल्हा, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन या ड्रायर, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस एक ही जगह. तजुर्बेकार टेक्नीशियन, समय पर काम का वादा. अप्लायंस टू फिक्स अभी कॉल करें हरविंदर 6474071470 6474-407-1470. आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान अब रही हमेशा फिट.
6: Real estate is not easy business. Aur jo easy nahi, use easy banate hain Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. Ghar khareedna ya phir ghar bechna, first time home buyers ya phir investors, sabki pasand ka rakhte hain khayal. Ye hai Raj Joshi, Realtor bemisal. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086. 647-866-1086. Raj Joshi, sirf naam hi kaafi hai.
7: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बातचीत. और फिर जो है एक रिक्वेस्ट आई है, वो भी आपकी जरूर प्ले करेंगे. बाहर का तापमान हो चुका है 28 डिग्री सेल्सियस. राज जी आपका स्वागत है.
8: सनी जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको और प्यारे लिसनर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून
7: जी आपको भी.
8: मार्कम रोड और 9th एवेन्यू पर जबरदस्त 2 और 3 स्टोरी टाउन होम्स अप टू 4 बेडरूम के लेआउट हैं. सेम ऑन द HST लिमिटेड टाइम के लिए. अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एरिया में, काम, क्वाइट, कंफर्टेबल, नेस्टल्ड है इन अ कम्युनिटी इंस्पायर्ड बाय स्टोबल्स रिच रूरल हिस्ट्री. फार्म्स, फॉरेस्ट और रोलिंग हिल्स हैं स्प्रॉलिंग थ्रू द टाउनशिप. और इसे आप अपना होम बना सकते हैं सिर्फ 799 से. अगर मार्कम रोड 9th एवेन्यू का एरिया आपको सूट करता है तो हमें कॉन्टैक्ट कर ले डिटेल्स के लिए. ऑफकोर्स देर इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू इन दिस टोवल कम्युनिटी. साथ ही साथ 30 फुट के डिटैच टाउन्स फ्रॉम द हाई 700s एज वेल. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बता दूं ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है टॉन्टन रोड और रिटसन रोड नॉर्थ, जस्ट साउथ ऑफ हाईवे 407. पोशवा का एरिया है. डिटैच होम सिर्फ 700 से 30 फुट का डिटैच लॉट. मॉडर्न लिविंग, स्मार्ट वैल्यू कम्युनिटी जिसमें सब कुछ है. पार्क्स एंड वॉकिंग ट्रेल्स, नियर बाय स्कूल्स, क्लोज टू शॉपिंग एंड डाइनिंग, एंड ऑफ कोर्स मिनट्स टू हाईवे 407. न्यू रिलीज ऑफ टाउन्स भी है यहाँ पर और 30 फुट के डिटैच लॉट पर डिटैच होम्स. अमेजिंग बिल्डर है और फिनिशेस आप देखेंगे बहुत ही हाई एंड. हमें कॉन्टेक्ट कर ले बोथ प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वेदर ओशवा और स्टोविल. आपको सारी जानकारी दी जाएगी एंड वी आर योर गाइडिंग हैंड इन योर रियल एस्टेट जर्नी. आपको एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है. दैट द मोटो फॉर आवर टीम. सनी जी बहुत बहुत शुक्रिया. विशिंग एवरी वन अ वंडरफुल आफ्टरनून.
7: जी बहुत बहुत शुक्रिया राज जी. 6478661086 इज द नंबर. 6478661086 रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के बहुत ही नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी का नंबर है. करें संपर्क. और बहुत बहुत शुक्रिया राज जी.
8: थैंक यू सर जी.
7: थैंक यू जी. 6478661086 और ब्रह्मास्त्र का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्माया और रणबीर कपूर आलिया भट्ट के सरिया लाइनअप कर दिया है, आप ही की रिक्वेस्ट है, आते हैं बहुत ही जल्द वापस।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है. 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हैं. हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है. $30,000 का जनरेटर 14x14 फीट का पैड भी बनया है. 2 साल की नवी कॉटेज $100,000 की इनकम जनरेट करती है. 12x30 फुट का डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है. मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है. पिछे पानी है, खूबसूरत है. क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा. बीच भी नजदीक है. जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222.
0: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी. फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक. बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी. 6478631940 6478631940.
2: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर everything automotive. चाहे हो डेली commute या वीकेंड escape, हमारा promise will always remain the same. हर जर्नी

0: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों?
1: नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट पॉल सिक्योरिटी.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।

0: त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजाहट.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपको वर्ल्ड कप फीफा की थोड़ी सी अपडेट यहाँ पे दे देते हैं कि जून 11 से ग्रुप स्टेज ग्रुप ए का मैच होगा मेक्सिको साउथ अफ्रीका का, विच इज़ ऑन थर्सडे एट 3 PM ऑन जून 11th, एंड देन ग्रुप ए मैच ऑन थर्सडे इटसेल्फ, द सेकंड मैच विल बी एट 10 PM बिटवीन साउथ कोरिया एंड चेचनिया। और अगर हम कैनेडा की तरफ रुख करें, कैनेडा के मैच की बात करें, तो ग्रुप बी में कैनेडा एंड बॉस्निया का मैच फ्राइडे के दिन 3 PM होगा। सो दैट इज द मैच दैट वी ऑल कैनेडियंस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड ऑल रोड्स विल लीड टू वन प्लेस एंड दैट इज टुवर्ड्स दिस मैच। एंड ग्रुप डी का मैच उसी दिन 9 PM USA एंड पराग्वे का भी मैच होने वाला है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है देन, लेकिन अपनी तो सबकी नज़रें जो हैं कनेडियन मैचेस की तरफ ही होंगी। एंड देखना होगा कि भाई कनाडा किस तरह से बॉस्निया के साथ परफॉर्म करता है इन दैट वेरी फर्स्ट मैच, बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द मैचेस। बिकॉज फिर अगला मैच जो है 6 PM को जून 18 कनाडा वर्सेस कतर का मैच है, जहां पर उम्मीद है कि कनाडा विल डू सम कुछ चमत्कार जो है कनाडा की तरफ से ज़रूर होगा। सो वी विल कीप यू कीप अपडेटिंग यू इन रिगार्ड्स टू फीफा वर्ल्ड कप और किस तरह से ये मैचेस फॉल आउट होते हैं। एंड बस प्रे करते हैं कि कनाडा की टीम जो है अच्छा परफॉर्म करें, बिकॉज इट्स गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ सॉकर इन कनाडा। विशाल शेखर, श्रिया घोषाल की आवाज़ में भारत फिल्म थी, दिस वॉज फिल्माया ऑन नन अदर देन सलमान खान एंड कैटरीना कैफ। Film did not do well, but the song was really well received by the audiences. Slow motion, बहुत ही amazing सा गीत है, और इस amazing से गीत के लिए आप अपना जो speaker का volume है उसको ऊपर करना तो बिल्कुल बनता है। उसके बाद Brampton TV and Appliances, सुल्तान जी भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशिया अनलिमिटेड रेडियो पर. ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी हमारे साथ हैं. 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रैंटन. 905-450-2828 इज द नंबर. ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM टू 7 PM. BramptonAppliances.com पर जाकर आप अमेजिंग डील्स को चेकआउट कर सकते हैं. बाकी की सारी डील्स सुल्तान जी से लेते हैं. सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर करेंगे रुख. सुल्तान जी, आपका स्वागत है साउथ एशिया अनलिमिटेड रेडियो पर.
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
0: सुल्तान जी. सबसे पहले द अमेजिंग टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें.
1: डेफिनेटली जी, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके साथ साथ रैप्टर्स की गेम चल रही हैं, साथ में ब्लू जेस की गेम चल रही हैं, तो जो भी स्पोर्ट्स के शौकीन कस्टमर हैं वो तो डेफिनेटली बिग स्क्रीन पे फुली इंजॉय करते हैं. और अगर बिग स्क्रीन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है जी. तो ये जो भी कस्टमर इस वक्त 85 इंच QLED लेना चाहते हैं, क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ QLED सैमसंग का 85 इंच $2000 वाला सिर्फ $1299 में मिलेगा. $700 आप 85 इंच QLED पे सेव करेंगे. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे जी. इसी तरह 65 इंच सिर्फ $699 में मिल जाएगा और 55 इंच सिर्फ $399 में ले सकेंगे. पेमेंट आपने 6 महीने में करनी है जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है. फ्री होम डिलीवरी होगी. आपको आना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी. BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं. और जब बिग स्क्रीन की बात करें तो 98 इंच को मिस ना करें, क्योंकि 98 इंच सिर्फ 3 TV इन स्टॉक रह गए हैं. $3500 से सेल प्राइस $2799 का था, लेकिन $1999 में 3 lucky customer कैन गेट इट. 6 month नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान के साथ 98 इंच सैमसंग टीवी 1999 का. 905-450-2828, 905-450-2828 जी.
0: 905-450-2828 ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस. सुल्तान जी, अप्लायंस एंड लॉन्ड्री की सेक्शन पर भी क्या अमेजिंग डील्स चल रही है, उस पर भी प्लीज डाले रोशनी. कुछ बंडल पैकेजेस भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएं.
1: बिल्कुल जी, 40% का डिस्काउंट अप्लायंसेस इंडस्ट्री में नहीं मिलता. हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर होने की वजह से 40% का डिस्काउंट जो है हम अपने कस्टमर्स के लिए लेके आए हैं जी. अगर तो बिल्ट इन किचन लेना है तो ह्यूज सेविंग है, क्योंकि बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर डेप फ्रिज जो पूरे का पूरा बिल्ट हो जाएगा आपके किचन कैबिनेट्स में, और आइस एंड वाटर डिस्पेंसर के साथ होगा ये आपको $12,000 वाला बिल्ट इन किचन सिर्फ $6,900 में मिलेगा जी. ह्यूज सेविंग है, 40% की सेविंग करवा रहे हैं. फ्री होम डिलीवरी होगी. 6 month में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है. इंडिविजुअल भी अगर आप लेना चाहते हैं, सिंगल फ्रिज आपको $2500 वाला $1799 में मिलेगा, और इसमें भी आप $700 एक फ्रिज खरीदने पे सेव करेंगे. स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव $1300-1400 वाला $799 में मिलेगा सिर्फ, इसमें भी $500 की सेविंग है. टॉल टब की डिशवाशर जो है $1000 वाली, ये तो मोर देन 40% डिस्काउंट है, क्योंकि $1000 से सिर्फ $499 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे डिशवाशर ले सकेंगे. स्टेनलेस स्टील की $499 फ्री होम डिलीवरी के साथ. फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर की बात करें जी, तो $2200 वाला फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर $1499 में, और टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर की अगर बात करें तो $1700 वाला टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर सिर्फ $1099 का पेयर मिलेगा. वॉशर ड्रायर दोनों ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन पे आना है. हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को. ह्यूज सेविंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस एंड लॉन्ड्री सेक्शन में मिलेंगी. 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है जी. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828, 905-450-2828 जी.
0: जी, 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. ना पाने की खुशी है कुछ, ना खोने का ही कुछ गम है, ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है, ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कश्मकश है रोज जीने रोज मरने में, मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है, मगर पूरी से कुछ कम है।
2: सुन दे हो, मेरे प्रादी आज फ्लाइट है इंडिया तो।
3: ओ याद है पर उनु कहीं कि आंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फड़ लिया वे।
2: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खाल ले, इंडिया दे सपने ना देखो, choleBhature.ca ते चलो।
4: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो। choleBhature.ca कॉल 9054582448।
5: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga and 1 by Vaughan Mills.
6: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
7: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.
0: जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 647-863-1940। Till then, goodbye and God bless, ladies and gentlemen.

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं.
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए.
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए. रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए.
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा. कॉल 416-303-3639. इट्स 416-303-3639.
5: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद. मैं हूं शिवानी आपके साथ, और आमिर और शिवानी के साथ रेडियो टोरंटो कनाडा का ये शो शुरू हो चुका है, और 3 बजे तक हमारा आपका साथ बना रहेगा. खूबसूरत से गानों के साथ, बॉलीवुड की गपशप के साथ, शेर व शायरी के साथ, हेल्थ एंड ब्यूटी अपडेट के साथ, यानी कि गोल्डन 50s, मेमोरेबल 60s, सेंसेशनल 70s, रॉकिंग 80s, म्यूजिकल 90s एंड ट्रेंडिंग मेलोडीज बनी रहेंगी आपके और हमारे साथ साथ. 24 डिग्री सेल्सियस को लिए हुए तमाम खूबसूरत सी खुशियों को अपने में समेटे हुए ये धूप जो है आपसे कह रही है कि समर आ चुका है फाइनली, और आज शाम तक का मौसम 27 डिग्रीज के साथ ग्रीट करेगा. तो ये जो मौसम का जादू है, ये गाने के फॉर्म में भी आपको सुनाया जाएगा. और आप सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. अपने काम से फ्री होके या काम के साथ साथ हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच. आपके लिए एक शेर कि कभी कभी यूं ही चले आया करो दिल की दहलीज पर, अच्छा लगता है यूं तन्हाइयों में तुम्हारा दस्तक देना.
6: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा. हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तोफैल की है. कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा सलाम अलैकुम, स्वीकार कीजिए मेरी मोहब्बत भरी नमस्कार, और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल. मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूं. आपका खैर मकदम है. लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड डॉल्स, दिस इज लवी डवी शो, एंड टुगेदर वी विल किस द एयरवेव्स ऑफ टोरंटो दिस आफ्टरनून.
7: 2, 1, लेट्स स्टार्ट द फन.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 License number 12374।
4: रेडियो टोरंटो कनाडा, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ, और स्टूडियोज का नंबर है 416-593-0055 और शो के बाद हमसे रबते का नंबर भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल ये नंबर मैंने जो आमिर अभी बताया उसके पीछे का रीजन ये है कि हम अपने लिसनर से एक बात पूछना चाहते हैं।
5: अच्छा।
4: और हम सबको पता है आपको पिज्जा खाना बहुत पसंद है आपका एक ये फेवरेट फूड है, और भाई क्यों भी ना हो, क्योंकि जब कुछ नहीं समझ में आता तो क्या खाया जाए तो पिज्जा समझ में हमेशा आता है। पिज्जा नेवर डिसअपॉइंट्स।
5: आपने आधी बात बताई है।
4: अच्छा,
5: पिज्जा मुझे वो खाना पसंद है जो मुझे कोई खिलाए।
4: अच्छा, अपने आप को भी नहीं?
5: खुद से नहीं, सवाल अच्छा, ही पता नहीं।
4: तो आमिर ने कभी भी पिज्जा खरीद के नहीं खाया। ये मेरी और आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे बच्ची लाइफ में भी कभी खरीदे ना। इट इज वन ऑफ दो स्मॉल क्वेश्चंस दैट कम्स इनटू आवर माइंड कि हम पिज्जा खाते हैं, वैरायटी ऑफ पिज्जा ऑर्डर करते हैं, बड़ी आसानी से फोन उठाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन जो हीट में, गर्मी में पैशन के साथ इस खाने को बनाता है, पिज्जा को बनाता है, उसका रोल भी बड़ा जरूरी होता है।
5: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
4: उसके हाथ की सफाई ही पिज्जा की जो क्वालिटी है, पिज्जा का जो टेस्ट है, जायका है, उसको डिसाइड करती है। हालांकि हर एक पिज्जा कंपनी का एक अपना फॉर्मेट होता है, उस कितना चीज डालेंगे, उसमें कौन कौन सी वेजीज डालेंगी, वो किस तरीके का पिज्जा बनाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे बनाया तो उस इंसान के द्वारा ही जाता है जो रहता है।
5: सही।
4: और उसको अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं, और जो इटली से ये पिज्ज़ा बन के आया और पूरे दुनिया में जो फैला है, देखिए ये एक इमोशनल फूड भी है। हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो पिज्ज़ा मंगा लो, कुछ और समझ नहीं आ रहा तो पिज्ज़ा मंगा लो। एक और चीज़ भी है, हम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा टेस्ट अलग है, हमारे खाने अलग हैं, लेकिन पिज्ज़ा सब में चल जाता है। इसलिए जब जल्दी है तो बजाय ये सोचने के हम एकदम पिज्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं,
5: उसमें एक सहूलत का एलिमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि पिज्ज़ा जो ही उनके सामने आता है तो वो बहुत तवज्जो से उस पिज्जे के स्लाइस का मुशाहिदा करते हैं सबसे पहले, कि इसके ऊपर कौन कौन सी टॉपिंग है, कितनी मिकदार में चीज है, इसका क्रस्ट नीचे वाला मोटा है या बारीक है, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए फिर वो ये देखते हैं कि क्या उनको खाना है क्या नहीं खाना है। मान लीजिए आप ब्लैक ऑलिव नहीं खाना चाहते हैं तो आप सारे के सारे ब्लैक ऑलिव चुन के एक साइड पे मेरे लिए रख देते हैं कि ये तो आमिर ही खाएगा। तो ये बात मुझे बहुत पसंद है शिवानी। अच्छा। कि जब आप सारी की सारी टॉपिंग जो आपको पसंद नहीं है वो चुन के एक तरफ रख देती हैं तो पिज्जा बेचारा मुंह बसोर के रह जाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो अच्छा भला तैयार होके आया था, मेरी बिंदी टिक्की सारी उतार दी, ये क्या किया, यू नो। एक चीज तो यह है, दूसरा
4: डेकोरेशन बिगाड़ दिया।
5: कुछ लोग तो इससे भी थोड़ा आगे चले जाते हैं, वो चीज को भी आधे से ज्यादा खुरच देते हैं उस पिज्जे में से, पिज्जे के पल्ले कुछ नहीं रह जाता बेचारे के, वो बेचारा ऐसे ही छोटा सा क्रस्ट ही रह जाता है और उसी के साथ शौक पूरा कर लेते हैं।
4: उसमें भी मुस्कुराता रहता है बेचारा, है ना।
5: हाँ जी, तो पिज्जा आप जरूर खाएं, लेकिन पिज्जे के साथ इतना जुल्म ना करें कि उसकी सारी टॉपिंग वॉपिंग इधर उधर हिला के रख दे, बड़ी मेहनत से लोगों ने डाली होती है।
4: उसका अगले गाने पे जाने से पहले अब आप जरूर फोन करके बता सकते हैं कि आपको पिज्जा कैसा पसंद है, आमिर की तरह आप उसमें से निकाल निकाल के उनको देंगे, या फिर आप पूरा उसको डेकोरेशन मेंटेन रख के आपके मुंह में अंदर डेकोरेशन समेट जाएगा वो। 416-593-0055। एक बड़ा अच्छा एक सटायर टाइप का कोट है
5: जी,
4: कि पिज्जा जो है वो हमेशा हमें अम्यूज करता है, सरप्राइज करता है. इट कम्स इन द राउंड बॉक्स, है ना, हमेशा स्क्वायर बॉक्स में आता है. इट कम्स इन अ स्क्वायर बॉक्स, और जब हम बॉक्स को खोलते हैं तो पिज्जा हमें राउंड मिलता है.
5: बिल्कुल.
4: और जब हम स्लाइस निकालते हैं तो वो ट्रायंगुलर मिलती है.
5: ट्रायंगुलर मिलती है.
4: लोग भी ऐसे ही है कहते हैं दुनिया. जब पैक्ड रहते हैं तो कुछ और लगते हैं, उनको आप खोलते हैं परत पर तो आपको कुछ और निकलता
5: जी,
4: है.
5: बिल्कुल.
4: और जब उनके साथ वक्त बिताते हैं तो आपको अलग ही पता चलता है.
5: मुझे लगता है आपने बड़ा दिलचस्प उन्वान छेड़ दिया है कि कुछ लोग पिज्जे पर पड़ी हुई टॉपिंग की तरह होते हैं. जी करता है कि उतार के बस फेंक दे एक तरफ
4: और कहें कि तुम सबसे तो क्रस्टी बेहतर था.
5: क्रस्टी बेहतर था. और कुछ लोगों को खा जाने को दिल करता है, कुछ लोगों को वहीं पे छोड़ देने को दिल करता है कि आधा खा लिया आपने पिज्जे का वो स्लाइस, आधा छोड़ दिया. और कभी कभी मुझे कुछ लोग पिज्जे के ऊपर पड़ी हुई प्याज की टॉपिंग की तरह लगते हैं, जैसे प्याज की परतें जितने भी खोलते जाएंगे उसके नीचे और एक परत आती जाएगी, और खोलेंगे और परत होती जाएगी, तो वो खुल के आपके सामने आते ही नहीं. इतने सर्द, इतने कोल्ड लोग होते हैं. आप उनको लाख हंसाने की, बहलाने की, रौनक में लाने की कोशिश करें, वो अपनी दुनिया से निकलते ही नहीं है.
4: तो आप अपने फोन को अपनी दुनिया से, जो आपकी पैंट्स, आपकी शर्ट्स, आपकी ब्लेजर्स की पॉकेट्स में है, वहां से निकालिए और हमें कॉल कर सकते हैं 416-593-0055. ये वाला गाना आमिर के उस 90s के गानों की तरह है, जो जिनके बारे में बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है कि वो अच्छे ही लगेंगे.
5: अच्छे ही लगेंगे. क्या बात है, खूबसूरत. और ये गाना तमाम सुनने वालों के नाम. स्टे ट्यून्ड.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: Nikki Gandhi of Home Life Miracle Realty brings you brand new freehold townhomes in Brampton. Mavis Road and Ray Lawson Boulevard ke Asan se intersection par Rollingwood Towns launching June 1st. Starting price just from $600,000. 3 se 5 bedroom options available. Approximately 1300 se 1900 square feet ke layouts available. Extended deposit structure, extended closing available and great incentives for first time home buyers. Early launch pricing or limited release ke liye exclusively call Nikki Gandhi at 416-456-3815. That's 416-456-3815. Your trusted listing agent for Rollingwood Towns for VIP access, pricing and floor plans. Don't miss this opportunity.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
8: बच्चों का बढ़िया फ्यूचर चाहते हैं, रिटायरमेंट पर बेहतरीन और इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते हैं, बीमारी या डिसेबिलिटी की सूरत में फैमिली की प्रोटेक्शन चाहते हैं या फिर सुपर वीजा इंश्योरेंस चाहते हैं, सेविंग कैसे करनी है और पैसे से पैसा कैसे बनाना है, इन सब के लिए तो सिर्फ लवजोत कौर को ही फोन मिलाना है। RESP RRSP ट्रेवल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए कॉन्टेक्ट लवजोत कौर, जो मेजर कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करती हैं और आपको बेस्ट रेट्स दिलाती हैं। कॉल कीजिए लवजोत कौर 416-877-8134। इट्स 416-877-8134।

0: की राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: एक चेहरा जो मेरा ख्वाब सजा देता है, एक चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, मुझको मेरे ही ख्यालों में सदा देता है। एक चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, मुझको मेरे ही ख्यालों में सदा देता है। वो मेरा कौन है मालूम नहीं, लेकिन जब भी मिलता है तो पहलू में जगा देता है। मैं जो अंदर से कभी टूट के बिखरूं, वो मुझको थामने के लिए हाथ बढ़ा देता है। मैं जो लम्हा कभी चुपके से भी रोना चाहूं, मैं जो तन्हा कभी चुपके से भी रोना चाहूं, तो दिल के दरवाजे की जंजीर हिला देता है। उसकी कुर्बत में है क्या बात न जाने मोहसिन, एक लम्हे के लिए सदियों को भुला देता है।
3: ये जितने मंजर हम अपनी आंखों में एक बार फिर से ताजा कर पाते हैं, जितनी हसीन रुतों को, जितने खूबसूरत और दिलनशीन मौसमों को एक बार फिर से अपने जहनों में, अपने ख्यालों में, अपनी सोचों में ताज़ा कर सकते हैं, इन सब का जरिया, इन सब का माध्यम, इन सब का वसीला आपकी आंखें हैं। ये आंखें देखती हैं और इन मंजरों को आपकी याद, आपकी सोच का हिस्सा बना देती हैं। ये आंखें भी कितना खूबसूरत जरिया हैं, कितना प्यारा रास्ता है, कितनी दिल का शाहराह है, जिनके जरिए ये सारे मंजर सफर करके हमारी सोचों और हमारे ख्यालों का अटूट अंग बन जाते हैं, एक अहम जज्व, लाजमी हिस्सा बन जाते हैं। अपनी आंखों का ख्याल रखिए। ये खूबसूरत चेहरों को देख के हमेशा के लिए आपकी यादों में सब्त कर देती हैं। सुनते रहिए लवी डवी शो।

0: और सब एक राज हम भी आप पर आज खोलना चाहते हैं, और राज ये है कि आप पे तो एक ही पॉलिसी के लिए, एक ही काम के लिए कीजिए, लेकिन फायदे आपको तीन तीन हो जाएं, ये कैसे हो सकते हैं? इसी पर बात करने की कोशिश करेंगे आज हम बहुत सीनियर और बहुत ही तजुर्बाकार और आपके काम आने वाली, आपको बेहतरीन पॉलिसी दिलाने वाली एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, हरप्रीत कौर जी, वेलकम करते हैं आपको।
1: थैंक यू आमिर जी, एंड गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल माय लिसनर्स।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सवाल ये पूछना चाहते हैं कि 3-in-1 पॉलिसी क्या है और ये कैसे फायदा देती है हमें?
1: जी आमिर जी, बहुत अच्छा सवाल। 3-in-1 पॉलिसी मींस कि आप एक पंथ, वो कहते हैं ना कि वो जो स्लोगन बना हुआ है और लाभ इतने ज्यादा, कि 3-in-1 पॉलिसी में हम तीन चीजों जो है वो आपको कॉम्बो बना के देते हैं। उसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस, आपकी क्रिटिकल इंश्योरेंस और आपकी डिसेबिलिटी, ये तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। और अंडर $100 जो है ये आप ले सकते हैं। इसमें हमें अलग अलग पॉलिसीज जो है लेते हैं, कि डिसेबिलिटी एक लेते हैं, फिर हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं अलग से, फिर क्रिटिकल का याद आता है हमें लेटर ऑन कि हमें तो क्रिटिकल की भी जरूरत है, तो उसको फिर हम लेटर ऑन लेते हैं। तो बेटर है कि आप जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप इन तीनों का अगर कॉम्बो प्लान लेते हैं, तो आपका जो प्रीमियम है, जो मंथली आपके चार्जेस हैं, वो भी उतने ही आपको कम मिल देने पड़ेंगे। लाइफ इंश्योरेंस सबके पास है आमिर जी, तो लाइफ इंश्योरेंस में मैं जो बहुत अच्छी चीज, जो एक प्लस पॉइंट ऐड हुआ है, कि हर कोई कहता है कि मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस को कैसे यूज कर सकता हूँ। सबको यही है कि लाइफ इंश्योरेंस ये हमारे सारे डेब्ट क्लियर करती है, जितने भी हमारे लोन्स है सब क्लियर करती है, राइट? वो आपको अगर कुछ हो जाता है, आपकी लाइफ नहीं रहती है, तो वो फैमिली को सपोर्ट करती है
0: जी।
1: जो प्लस पॉइंट है आमिर जी, नया एक नया ऑप्शन जुड़ा है इसमें, आप अपनी लाइफ को जीते जी खुद भी यूज कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट जो हम नया दे रहे हैं उसमें उसकी कैश वैल्यू फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है, वो सबसे अच्छा पॉइंट है। और जैसे 20 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी एजुकेशन के लिए अगर आपने पैसा यूज करना है तो आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने नया घर लेना है तो आप वहां से विड्रॉ करके अपनी डाउन पेमेंट दे सकते हैं, जितनी भी कैश वैल्यू उस साल तक बनी है।
0: बिल्कुल सही। यहां नंबर मैं आपका दे दूं पहले, 3-in-1 पॉलिसी है, एक पॉलिसी लेंगे तीन पॉलिसीज का फायदा मिलेगा आपको। यहां है नंबर 6474-6611। जी हरप्रीत।
1: और इसके साथ साथ आमिर जी, आप टर्म को भी ऐड कर सकते हैं और अपना 30 इयर्स आगे जो है वो कवर कर सकते हैं। और इसके साथ 30 इयर्स के साथ साथ जो परमानेंट आपकी कैश वैल्यू, वो 100 साल तक आपको कवरेज देगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस को खुद यूज कर सकते हैं। आप बच्चों के लिए यूज करना चाहिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके घर के लिए, और अगर आप अपने घर के लिए या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है आने वाले सालों में, तो जितनी कैश वैल्यू आपकी बनती है आप उसको यूज कर सकते हैं विड्रॉ करके वहां से। और अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो उसका डेथ बेनिफिट है ना आमिर जी, वो भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपने 100,000 की 1,00,000 की पॉलिसी ली है और आज आपकी उम्र 30 साल है, तो आने वाले जब आप 80 साल के होंगे तो वो जो 1,00,000 है ना, वो कई मिलियन बन चुका होगा।
0: बहुत अच्छी बात।
1: अनदर प्लस पॉइंट ऑफ दिस, तो ये जो एक गोल्डन चीज आई है, इसके ये मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मेरा नंबर आपने बताया, मैं भी बताती हूँ, 6473-34-6611। और आमिर जी, क्रिटिकल इलनेस जो है उसमें 26 ऐसी बीमारियां हैं कि जो हमारा हेल्थ कार्ड भी कवर नहीं करता है, उनके लिए हमें पे करना पड़ता है। कुछ ऐसे टेस्ट हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज जो हैं, बीमारियां हैं, जैसे मेजर हार्ट सर्जरीज होगी, कैंसर हो गया, तो काफी चीजें हैं, उनके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो उनके लिए, सेफ साइड के लिए भी आप क्रिटिकल इलनेस ले सकते हैं। एक 25,000 के स्मॉल अमाउंट से ही आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। इसमें भी एक कहते हैं ना कि प्लस पॉइंट छिपा हुआ है आमिर जी। सबको होता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं तो भला चंगा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, तो पैसे जाया हो गए, पैसे वेस्ट हो गए हमारे। नहीं, आप अगर क्रिटिकल इलनेस अकेला भी लेना चाहते हैं, ओनली क्रिटिकल इलनेस या कॉम्बो प्लान के साथ भी, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि एज 80 तक 80 साल के जब आप होंगे तब तक आपको ये सारी कवरेज मिलेंगी. अगर इनमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम डायग्नोज होती है तो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा. अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं एट द एज ऑफ 80 तो आपको अपना जो प्रीमियम इतने सालों का दिया है वो सारा का सारा पैसा आप ले सकते हैं.
0: बिल्कुल सही. यहाँ नंबर है हरप्रीत कौर जी का, ये नंबर मिलाएंगे 6471 नंबर दोहरा रहे हैं 6471. हरप्रीत जी आपसे हफ्ते में अब दो बार बात हुआ करेगी. ट्यूसडे हम आपसे बात करेंगे थ्री इन वन पॉलिसी के बारे में, और भी बात करेंगे, और भी पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शमूलियत के लिए.
1: थैंक यू सो मच.
2: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
3: आमिर और शिवानी के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी दोपहर चाय के साथ, कॉफी के साथ या फिर लस्सी के साथ, मौसम को देखते हुए. 416-303-3639 ये रابطے का नंबर है. डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स के हवाले से बात करना चाहें, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर हमसे यूं ही बात करना चाहते हैं, गाने फरमाइश करना चाहते हैं, शो में आप क्या सुनना चाहते हैं वो आप बातचीत करना चाहते हैं. और जब आप कॉल करें हमारे स्टूडियो के नंबर पर तो ज़रूर ज़रूर हमसे बात करें, और हमसे बात करने के लिए ही कॉल करें. और हम भी थोड़ा बहुत अच्छा बोल लेते हैं तो हमारी बात भी सुन ले थोड़ी. ये थोड़ी रिक्वेस्ट है बस आपसे. 416-593-0055. देखिए इंसान की फितरत होती है आमिर के, हम हर एक सिचुएशन को में कंप्लेन करते हैं. जब ठंड का मौसम होता है तो हम कहते हैं इतनी ठंड है कैसे मैनेज करें. अभी गर्मी को आए चंद दिन नहीं हुए, कितनी मिन्नतों के बाद, लड्डू पेड़े की और प्रसाद चढ़ाने के बाद ये आए. अभी से लोग, कई लोग जो हैं वो कह रहे होंगे कि इतनी गर्मी कैसे जाएं, मतलब इससे स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, हम कैसे बाहर निकलें. तो जब आप गर्मी को के बारे में कनाडा में कंप्लेन करें, कनाडा में जहाँ गर्मी एक बहुत बड़ी लग्जरी है, तो उसमें याद रख लीजिए दो लाइन मुझे दिखी थी. वैसे इस वक्त विंटर्स इतना लंबा हो चुका है, विंटर्स की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये टेम्परेचर मैं जरूर बताऊंगी. द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन टोरंटो वाज -32.8 डिग्री सेल्सियस.
0: ये ज्यादा तो नहीं है
3: जी, ये विंडचिल के साथ नहीं बताया गया, जो हम एक्चुअल जो कहते हैं
0: राइट.
3: लेकिन जो विंडचिल के साथ सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, ये जो मैंने आपको बताया -32.8, ये 1859 में था.
0: अरे अरे बहुत पहले.
3: लेकिन 1981 में टेम्परेचर इतना ही था, सबसे ठंडा माना गया ये था -31.3 विंड चिल के साथ. जो हम एक्चुअल टेम्परेचर जो हम महसूस करते हैं वो था -44.7.
0: अरे वाह, That was a staggering
3: अब
0: number.
3: अगर यहाँ तो +44 कभी होगा नहीं जी, बस माइनस लगा लीजिए जो भी टेम्परेचर है आप मौसम से प्यार करने लगेंगे
0: जी बिल्कुल. मुझे ये लगता है कि एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, आप अपने आप को कैसे ढालते हैं. जैसे गल्फ कंट्रीज में आपने देखा अबू धाबी, मस्कत, ओमान, दोहा, कतर, कुवैत, बहरीन, इस तरह के ममालिक में दर्जा हरारत बहुत ऊपर चला जाता है, तापमान जिसे कहते हैं, हाँ जी, बहुत ऊपर चला जाता. लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहां बड़े खुशहाल रह के जिंदगी गुजारते हैं. उसकी वजह यह है कि वो अपने आप को मौसम के मुताबिक ढाल लेते हैं. हम कनेडियंस की आदत बहुत हसास हो गई है, वी हैव बिकम वेरी सेंसिटिव. सर्दी आती है तो हम कहते हैं उफ तौबा बहुत सर्दी है, और गर्मी आती है तो हम उस पर भी तनकीद करने लगते हैं. मुझे लगता है ये काम ना करने के बहाने हैं
3: जी. बिल्कुल सही, काम ना करने के बहाने हैं. एक काम जरूर कीजिए, अपने फोन पे हमारा नंबर जरूर सेव रखिए 416-303-3639, और बड़ा तड़कता भड़कता सा गाना इस मौसम में जरूर डांस कीजिए, लेकिन अपने रिस्क पर कार ध्यान से ड्राइव कीजिए.

0: साहब, बहुत से ऐसे खातिनों हजरात जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, गाड़ियों में सवार हैं, सफर में रवां दवा हैं, मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि एक चीज, एक बात, एक काम, एक मामला हमारे इख्तियार से बाहर है, और वो है हादसे का हो जाना। आप ना भी करें किसी के साथ हादसा, सड़क पर किसी की कोई गारंटी, कोई जमानत नहीं, कहां से कोई गाड़ी गुमनाम सी, नामालूम सी आपके साथ आके टकरा जाए और हादसे का सबब बने, ऐसे में आपके पास एक नंबर लाजमी होना चाहिए। उसी वक्त तुरंत फौरी तौर पर वो नंबर मिलाइए और फौरी मदद पाइए। मदद कैसी कि आप की सुध बुध खो जाती, आपको पता नहीं चलता करना क्या है। तो ये शख्सियत हैं जिनका डायरेक्ट नंबर दे रहे हैं, ये बैरिस्टर हैं। इससे पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, कानून पढ़े जो बिजनेस से मुतालिका, कॉर्पोरेट सेक्टर से मुतालिका, कमर्शियल से मुतालिका थे, उसके बाद फिर बैरिस्ट्री की और स्पेशलाइज्ड हैं पर्सनल इंजरी में। इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, पर्सनल इंजरी में स्पेशलिस्ट बैरिस्टर हैं, सैयद एम रजा बैरिस्टर। वेलकम करते हैं सर आपको।
1: जी तो फैल भाई, आपका और आपके रेडियो प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं आपके लिसनर से अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं।
0: थैंक यू।
1: और आपको और आपकी टीम को ये नया टाइम जो है ये बहुत बहुत मुबारक हो।
0: शुक्रिया।
1: और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी टीम इस नए टाइम को भी जो है वो कम्युनिटी के बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए जो अब तक आप कर रहे हैं यूज करेगी और आपको जो है वो इसमें यहाँ पे और कामयाबी मिले।
0: शुक्रिया बहुत बहुत, नवाजिश इनायत।
1: जी तो आप हमारा बता रहे थे सैयद लॉ ऑफिस जो कि एक पर्सनल इंजरी लॉ फर्म में इसका एरिया ऑफ प्रैक्टिस है, कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, डॉग बाइट है, कॉस्मेटिक इंजरी है और एरोप्लेन इंजरी है। क्योंकि अब आपका टाइम चेंज हुआ है यहाँ पे, यकीनन आपके लिसनर जो है वो वाले नहीं होंगे जो 9 to 11 वाले होते हैं
0: जी।
1: तो इसलिए जो है मैं चाहूंगा कि आज जो है वो अपनी फर्म का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा जरा ज्यादा दे दें।
0: बिल्कुल ठीक।
1: ये सैयद लॉ ऑफिस जो है वो हैव बीन डूइंग दिस इंजरी क्लेम फॉर लास्ट 13 years। वी हैव सक्सेसफुली यू नो व्हाट गॉट पीपल मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन सेटलमेंट एंड वी यू नो व्हाट एवरी डे वी ट्राई टू चेंज लाइव्स ऑफ पीपल बिकॉज द थिंग इज दैट व्हेन दे आर इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट सो देयर लाइफ टर्न्स अपसाइड डाउन। और जब उनका लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है जी, तो उसमें उनके पास जो होप होती है वो होप यही होती है कि उनको इंजरी क्लेम जो है वो उनका सेफ हैंड्स में हैंडल हो, उनको वो तमाम बेनिफिट्स मिले जिसके लिए वो एलिजिबल हैं, उनको वो तमाम जो है वो कंपनसेशन मिले जो कि उनको चाहिए हैगा, जिसमें आप सबसे बड़ी चीज जो है वो इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट्स हैगा जो कि इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती हैगी। इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट के अलावा आपका हाउसकीपिंग का बेनिफिट हैगा, आपका पर्सनल केयर का बेनिफिट हैगा, आपकी ट्रीटमेंट की नीड्स हैंगी आपकी। फिर अगेन जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्लेम हैगा वो आपका क्लेम हैगा अगेंस्ट दी एट फॉल्ट ड्राइवर जो कि बेस्ड ऑन आपकी पोटेंशियल लॉस ऑफ इनकम अप अंटिल द डेट ऑफ योर रिटायरमेंट हो सकता हैगा। उसके अलावा आपका जो है वो फ्यूचर केयर की नीड्स का क्लेम हैगा विच कुड ऑल्सो रन इन टू हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एज वेल। और उसके अलावा आपका जो क्लेम हैगा इसमें आपका मेड एंड रिहैब की नीड्स रहेंगी, ये आपका क्लेम हैगा। तो ये सारे क्लेम्स जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट क्लेम हैंगा और हम ये चाहते हैंगे कि आपके क्लेम को जो है वो इस तरह से प्रोसीड किया जाए कि आपको जो है वो किसी भी जो है वो एक तरह का फ्यूचर में आपको जो है वो कंपेंसेशन की आपके पास फंड्स की कमी ना हो ताकि आप आने वाली जिंदगी जो है अपनी पुरसकून अंदाज में गुजार सकें।
0: बिल्कुल
1: तो
0: ठीक।
1: ये जो है ये सारे बेनिफिट्स हैं जिसके लिए आप सैयद लॉ ऑफिस जो है वो दिन रात आपके लिए काम करता हैगा और ये मेक श्योर करता है कि आपको ये सारे बेनिफिट्स मिले। तो मैं आपके लिस्टर से कहूंगा कोई भी छोटा बड़ा कार एक्सीडेंट हो, स्लिप एंड फॉल हो, ट्रिप एंड फॉल हो, डॉग बाइट हो, कॉस्मेटिक इंजरी हो, आपने एक ही एक नंबर पे कॉल करना हैगा सैयद लॉ। नंबर तो फैल भाई आप बताएंगे आपके लिस्नर्स को, ताकि आपके लिस्टनर्स हमारा नंबर नोट कर लें। थैंक यू।
0: बिल्कुल सही, यहाँ है नंबर, सैयद एम रजा बैरिस्टर का डायरेक्ट नंबर दे रहे हैं। अपनी जुबान में अपनी बात बताइए, एक्सीडेंट होने के फौरन बाद कहीं और फोन करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां इस नंबर पर फोन करेंगे आप 416-937-5046। नंबर दोबारा बता रहे हैं, मेक अ नोट ऑफ दिस नंबर, डायल इट नाउ 416-937-5046। सैयद एम रजा बैरिस्टर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।

0: और साहब, अगर आपको ग्रांट चाहिए, आपको लोन चाहिए, और ग्रांट के बारे में मैं खास तौर पर आपको बता दूं कि अगर आपकी आमदन 70,000 से कम है तो आपको अप टू 60,000 डॉलर्स मिल सकते हैं। $60,000 आपको मिल सकता है अगर आपकी आमदन, आपकी इनकम 70,000 से कम है। ये कैसे मिलेगा, कौन दिलाएगा, ये बात करेंगे नागपाल जी से। वेलकम करते हैं सर आपको।
1: सभी को हमारी तरफ से सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहली बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन लोग ये ग्रांट ले सकते हैं।
1: हाँ जी, सो हमारी कंपनी का नाम है यूनी ग्लोबल एडवाइजरी, ऑफिस हमारा मिसिसागा में है, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड। 7 ईयर्स से बिजनेस में है, एडुकेशन कंसल्टिंग में है, और हम उन्हीं कोर्सेज में डील करते हैं जो गवर्नमेंट फंडेड है। मींस गवर्नमेंट आपकी फीस पे करके डायरेक्टली टू द कॉलेज, नंबर वन। नंबर टू, आपको लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए फंडिंग देती है। आपके अकाउंट में 30,000 से 100,000 की फंडिंग होती है। और इसका आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 50% पोर्शन नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स, ग्रांट्स, ग्रांट्स का जो पैसा वापस ही नहीं करना।
0: वेरी नाइस।
1: आधा लोन है 0% पे। और एजुकेशन फंडिंग है जी, कोई हम और फंडिंग में डील ही नहीं करते जिनमें कैच होता है। सिंपल सा काम है, आप स्किल हासिल करते हैं, तालीम हासिल करें, मुकम्मल फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें। जितने हमारे कितने ही क्लाइंट्स, हजारों क्लाइंट्स हासिल कर चुके हैं जी।
0: बिल्कुल ठीक, यहाँ नंबर है, ये नंबर मिलाइए, आपको $60,000 मिल सकता है। और ये ग्रांट का पैसा है, कुछ इसमें अगर आप लोन लेना चाहें लोन भी ले सकते हैं, और वो इंटरेस्ट फ्री लोन है। ये रहा नंबर 4372643175। नंबर दोबारा दे रहे हैं, $60,000 की ग्रांट घर बैठे मिल सकती है, 4372643175। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी अपनी भी कोई फीस है हजारों लाखों डॉलर में, या कैसे ये काम करता है सारा ये मैकेनिज्म?
1: हाँ जी, इसमें लाइक आप मान के चले, अगर फैमिली ऑफ

0: इतना जरूर होना चाहिए पीआर, सिटीजन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड पर्सन का।
1: अच्छा,
0: हुकूमत अपनी आवाम के लिए सर्विस लेके आई है, ये नहीं कि आप वर्क परमिट पे आए हैं, राइट। अगर आप पीआर, सिटीजन या प्रोटेक्टेड पर्सन है, इनकम आपकी कम है 2024 के नोटिस असेसमेंट पे, तो ही आपको इसका बेनिफिट है, सिर्फ तभी आप हमें कॉल करें।
1: बिल्कुल सही। ये बताइए कि जो मेरे जैसे 65 साल के लोग हैं या 66 साल उनकी उम्र हो गई, 70 तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी ये फंडिंग चलेगी, ये ग्रांट चलेगी, उनको भी कुछ मिलेगा या बस हाथ पे हाथ धरे घर में ही बैठे रहेंगे बेचारे?
0: चलेगी नहीं, दौड़ेगी।
1: ओ वाओ, अच्छा।
0: यानी कि हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी एज 75 इयर्स भी है,
1: अरे वाह वाह,
0: और लाइक अप टू $45,000, लाइक रिटायर्ड कपल है, वाइफ पढ़ रहे हैं।
1: $45,000 मिल गया 70 साल की उम्र में?
0: बिल्कुल जी, 45 मिला, उसमें से 25,000 ग्रांट का पैसा है, उसमें से 11,000 कॉलेज की फीस चली गई, 14,000 तो ग्रांट का मिल गया नेट ग्रांट, साथ में 17,500 का लोन, मतलब 32,000 की जेब में गया पूरा पैसा, 32,000, जिसमें से 14,000 तो ग्रांटी सर, कॉलेज फीस निकाल दी हमने पहले ही। तो मतलब अगर आपकी फैमिली ऑफ फाइव है, अप टू आपके तीन बच्चे हैं, आपके चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, वो भी डिपेंडेंट ही काउंट होते हैं, फैमिली ऑफ फाइव है, तो अप टू 100,000 की फंडिंग भी बन जाती है, जिसका $50,000 हाफ पोर्शन ग्रांट्स है आज की डेट में, और जो $50,000 है वो आपने 1.5 साल बाद देना स्टार्ट करना है, तब तक इसका ब्याज दर क्या है।
1: बिल्कुल सही, यहाँ है नंबर
0: 28% पूरे साल का।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप,
0: ऑफिस आए,
1: बिल्कुल सही। आप ग्रांट लीजिए या आप लोन लीजिए, लोन इंटरेस्ट फ्री है और 1.5-2 साल के बाद कोर्स मुकम्मल होने के बाद लौटाना शुरू करेंगे आप। और दूसरा, आपको जो ग्रांट मिलेगी वो तो लौटानी नहीं है, मुफ्त का ये पैसा है, स्किल भी डेवलप कीजिए, पैसा भी लीजिए और ये गवर्नमेंट का पैसा है। ये नंबर मिलाएंगे आप 437-264-3175। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, कोई आके आपसे मिलना चाहे तो क्या तरीका है?
0: हमें कॉल करें, हम आपका क्विक असेसमेंट फोन पे कर देंगे, देन आप हमारे ऑफिस आए, नहीं तो वर्चुअली भी सारा काम हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो अभी जो गवर्नमेंट 1 अगस्त के बाद जो नया अकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स में कट कर रही है,
1: सही है।
0: तो ये नहीं आप 2 महीने बाद आएंगे, 2 बैच रह गए, 1 जून में स्टार्ट है, मतलब 10 जून को, और 1 है जुलाई में। अगर आपने इस अकेडमिक ईयर में एनरोल करना है आपको, तभी इसका बेनिफिट है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको 100,000 बन रहा है तो 50,000 ग्रांट है। आप अगर 1 अगस्त के बाद आएंगे तो बनेगा 100,000 ही, लेकिन सारा लोन है। आसान से कोर्सेज हैं जी, 40-50 साल के हमारे ज्यादातर क्लाइंट मिडिल एज ग्रुप के हैं, हम उनको उन्हीं कोर्स में डालते हैं जो फुली ऑनलाइन है, असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है, आसान से कोर्सेज है। हम आपको इस उम्र में आपकी फैमिली जिम्मेदारी के साथ साथ आपको कॉलेज में बैग टिफिन बॉक्स लेके नहीं भेज रहे, आसान से कोर्सेज है, फुली ऑनलाइन है, 30 से लेके $100,000 गवर्नमेंट फंडिंग देती है लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, कोलैटरल फ्री, सिक्योरिटी फ्री पैसा होता ही है, और कहीं भी कैसे भी आप इसे खर्च कर सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक।
0: इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट चेक नहीं होता, एज लिमिट कुछ है नहीं।
1: बिल्कुल सही,
0: मिस ना करें इस अपॉर्चुनिटी को, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा।
1: इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें वरना पछतावा होगा, यही जुमला, यही फिक्रा, यही सेंटेंस है। और ये है नंबर 437-264-3175, 437-264-3175। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।

0: रेडियो टोरंटो कनाडा, आपके शो में आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। और आमिर, हम जब अगर हम ब्यूटी टिप की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम खूबसूरत हैं तो सही मायने में हम खूबसूरत तभी हैं जब अंदर से भी हम खूबसूरत हैं।
1: आप अपनी बात कर रही हैं?
0: नहीं, आपकी।
1: अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत।
0: आपकी तरफ देख के मैंने बताया। तो अगर मेरी बात आप कोई ऐसी टिप लीजिएगा फिर मुझे डेडिकेट कीजिएगा।
1: मैं कोशिश करूंगा। आप जैसी टिप्स ढूंढना आसान नहीं है। आई नो हाउ हार्ड यू वर्क ऑन ऑल दिस।
0: जी, तो अपनी अगर आप कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, अगर ब्लेमिशेस हैं, एक्नी है, ओपन पोर्ट्स हैं, या फिर और डार्क सर्कल्स हैं, दूसरे इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। एक बोल में 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लीजिए। एलोवेरा जेल एक कूलिंग एजेंट होता है जो हमारे चेहरे पर मिरेकल करता है। उसमें 4 पिंच ऑफ कॉफ़ी पाउडर मिलाइए।
1: वो कॉफ़ी पाउडर,
0: कॉफ़ी पाउडर वंडर करता है हमारी स्किन पर, एक स्क्रब की तरह काम करता है बिकॉज ऑफ द टेक्स्चर ऑफ द कॉफ़ी, राइट? और 4 पिंच ऑफ कॉफ़ी पाउडर मिलाइए, थोड़ा सा उसमें एलोवेरा जेल लीजिए, थोड़ा सा टर्मरिक लीजिए, और कुछ टी ट्री ऑयल या फिर इस तरीके का कोई भी ऑलिव ऑयल ले लीजिए, कोई भी ऑयल डाल दीजिए, और उसको अपने चेहरे पर लगाइए, ओवरनाइट लगे रहने दीजिए।
1: अच्छा।
0: और बहुत जल्दी आपको स्किन पर असर पता चलेगा, और जब आप अपनी खूबसूरत सी स्किन रोज देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
1: नहीं तो ये जो सारी रात आप अपने चेहरे पर लगा रहने देंगे तो चेहरा आपका वो दिखाई नहीं देगा जो असल में है, तो उसके ऊपर एक लेप दिखाई देगा देखने वाले।
0: हम लेडीज वी आर परफेक्टली फाइन कि हम जैसे हैं वैसे रात में ना दिखाई दे, हम बिल्कुल लगा लेंगे। ऑल द लेडीज, आप मेरे साथ रिलेट कर रही हैं ना, ये मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता।
1: अच्छा,
0: हमें एंड रिजल्ट से पता,
1: एंड रिजल्ट से फर्क पड़ता है। इसीलिए तो मुझे लगता है कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, कोई तकरीब हो, तो खवातीन रात में अगर मेहमान वगैरह आ जाएं तो उनसे मिलने से कतराती क्यों है? आज ये राज मुझ पे खुला कि उन्होंने चेहरे पे कुछ लगाया हुआ होता है। लाख उनको आप बुलाएं कि आ जाएं, शिवानी मेहमान आए हैं, प्लीज अभी आइए, ये आपसे मिलना चाहते हैं। और शिवानी की ना तो आवाज आ रही है ना शिवानी खुद आ रही हैं, इसका मतलब है शिवानी ने कुछ लगा रखा चेहरे।
0: जी बिल्कुल। कितने समझदार है आमिर आप, सच में मतलब
1: समझदार लोगों के साथ रह रहे क्यों?
0: ये आपका एक्सपीरियंस, जितना ब्रॉडकास्टिंग में एक्सपीरियंस है आमिर जी को 27 से 30 सालों का, उतना ही एक्सपीरियंस इस तरीके की बातों में भी है कि कौन रात शाम को जाता है, कौन नहीं जाता है, किसने फेस पे क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया, ये फ्लुएंसी में आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है।
1: कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चेहरे को बिल्कुल तरोताजा होना चाहिए। तो माइंड का अगर इंडेक्स है चेहरा, तो रात को तो फिर माइंड बड़ा अजीब सा हो जाता होगा जब चेहरे पे लेप पड़ा हुआ है 4-4 इंच का।
0: अगर कंफ्यूजन की पराकाष्ठा एक्सट्रीम लेवल पर आप पहुंच गए हो आमिर की बात सुन के, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपको क्लियर स्किन चाहिए, पिगमेंटेशन फ्री, डार्क सर्कल्स फ्री, और ओपन पोर्ट्स और एक्नी फ्री, तो आपको बस एक बोल में 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेना है, थोड़ी सी उसमें कॉफी पाउडर डालिए, टर्मरिक डालिए, और टी ट्री ऑयल डालिए। सबसे ज्यादा क्वांटिटी आपकी एलोवेरा जेल की होनी चाहिए बिकॉज दैट इज द मेन इंग्रेडिएंट। कॉफी पाउडर और टर्मरिक कम डालिए, टर्मरिक आप ज्यादा डालेंगे तो आपका चेहरा येलो हो जाएगा। और अगर रात भर आप हल्दी लगा के अपने चेहरे पर रखेंगे तो नेक्स्ट डे आपको कई राउंड्स ऑफ फेस वॉश यूज करने पड़ेंगे बिकॉज येलो कलर आपकी स्किन में चला जाएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन अप्लाइंग टर्मरिक ऑन योर स्किन। कोशिश कीजिए 1 घंटे बाद आप उसको वॉश ऑफ कर दीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए 4163033639।
2: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ। ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
3: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584
9: लवी रवि सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर, रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555 905-731-2555 रूहानी कॉलेज।

0: The Journey song, इसी song के साथ छोड़े जाते हैं आपको आमिर और शिवानी इस वादे के साथ की कल जुड़ेंगे एक बार फिर से हम आपके साथ साथ किसी भी जानकारी के लिए 416-303-3639 पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं संपर्क कर सकते हैं राबता कर सकते हैं 416-303-3639 और अपना बेहद ख्याल रखिएगा और हैव अ ग्रेट आफ्टरनून नमस्कार
1: जिंदगी इतनी छोटी है कि सारी की सारी किसी की मोहब्बत में गुजर जाए किसी के प्यार में गुजर जाए तो कम लगती है और बदकिस्मती से हम इसे नफरतों में हकारतों में ज़ाया कर देते हैं इसको ज़ाया मत कीजिए मोहब्बत बांटिए मोहब्बत लीजिए मोहब्बत फैलाइए जहाँ तक मुमकिन हो सके अपना ध्यान रखिए हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे अहेड एंड हे

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
2: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
3: Jag pe sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki rail gari. Aayi Sean Express, masti ki rail gari.
4: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
5: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
4: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका मैं शालिनी वेलकम करती हूँ मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं ढेर सारी पॉजिटिविटी, म्यूजिक एंड गुड वाइब्स लेकर. दोस्तों, जिंदगी हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है, कभी एक सीख, कभी एक मुस्कान और कभी एक नया मौका. और आज का पॉजिटिव थॉट ये कहता है कि हर दिन की अपनी एक अहमियत होती है, बस उससे अच्छे नज़रिए से देखने की ज़रूरत होती है. तो आज अपने दिलों को हल्का कीजिए, सोच को पॉजिटिव रखिए और आज के दिन को एक पॉजिटिव रुख भी दे दीजिए. और वक्त आ चुका है दोस्तों जानने का कि आसपास और दुनिया भर में क्या हो रहा है. तो शुरुआत में रुख करते हैं आज की ताज़ा खबरों का Sean Express पर. गुड आफ्टरनून.
1: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.
7: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन. शायर शारिक कैफी के बेहद खूबसूरत अल्फाज, मोहल्ले भर की खामोशी का मतलब मेरी आवाज बाहर जा रही है. इन्हीं अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का. और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ. कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई जबकि 63 लोग घायल हैं, इनमें कई लोगों की हालत गंभीर है. कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना पर शोक जताया है. कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कई लोगों को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद 25 एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के लगभग 4 महीने बाद उन्हें दफनाया जाएगा. खामेनेई ने उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक मशहद शहर में शिया इस्लाम के चर्चित इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर के पास दफनाया जाएगा. इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के मुताबिक खामेनेई को 21 जून के आसपास आखिरी विदाई दी जा सकती है. ब्रिटिश सांसद कपर्ट लोव ने संसद में अपने एक भाषण में ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग कांड पर फिर से बहस छेड़ दी है. उन्होंने इस भाषण में पीड़ितों की गवाही पढ़ी. उन्होंने संसद को बताया कि रेप गिरोह की 2 हफ्तों की जांच की सुनवाई के दौरान जो बातें कही गईं उसे पूरी दुनिया को सुनना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि एक पीड़ित से 13 से 16 साल की उम्र के बीच 600-700 अलग अलग पुरुषों ने रेप किया. लोगों ने कहा ब्रिटेन के कम से कम 85 इलाकों में संगठित बाल यौन शोषण के संकेत मिले हैं. और अब रुक कर लेते हैं भारत से जुड़ी खबरों की तरफ. दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में 11 विदेशी नागरिक हैं, इनमें 9 अफ्रीकी और 2 तुर्कमेनिस्तान के हैं. एजेंसी ने पहले आंकड़ा 17 बताया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक 10 भारतीयों में से 8 आपस में रिश्तेदार थे। इनमें 3 राजस्थान के और 5 हरियाणा के रहने वाले थे। हादसे में कुल 35 लोग घायल हुए, इनमें से 19 लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। इस साल भारत समेत दुनिया भर में सूखे की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग के बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक जलवायु को लेकर चेतावनी जारी की है। यूएन की इस मौसम एजेंसी के मुताबिक प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रहे समुद्री जल के कारण जून से अगस्त के बीच अलनीनो बनने की आशंका 80% है। नवम्बर तक इसके 90% या उससे ज्यादा बने रहने की आशंका है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों और विचारधारा का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद इसकी जानकारी दी। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 प्रवक्ता नियुक्त किए। कॉकरोच इस बैक के ट्वीट के अनुसार पत्रकार सौरव दास मुख्य प्रवक्ता होंगे, वहीं फिल्म मेकर विजेता दहिया और IIT कानपुर और ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से के एलुमनाई आशुतोष रांका भी प्रवक्ता होंगे। उत्तर प्रदेश में एक बहू ने अपनी सास को सिर पर उठाकर 84 कोस की परिक्रमा कराई। वहीं ब्रिटेन में एक शख्स के पास उसकी पगड़ियों से मैच करती हुई रोल्स रॉयस कारें हैं। उधर अमेरिका से स्पेन जा रही फ्लाइट में बॉम्ब नाम का ब्लूटूथ डिवाइस ट्रैक हुआ, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ऐसी भी अजब गजब खबरें होती हैं। पंजाब सरकार ने प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने की तैयारी की है। चंडीगढ़ में CM हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्राइवेट स्कूल अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे, साथ ही पेरेंट्स को किसी विशेष दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकेंगे। जोधपुर से खबर आ रही है, एक सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से परेशान हुई महिला इन्फ्लुएंसर की, अनीता विश्नोई इनका नाम है, इन्होंने घर में जहर पी लिया। हालत बिगड़ने पर इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। कंटेंट क्रिएटर अनीता ने ये कदम उठाने से करीब 5 पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि आज के बाद आपकी बहन इस दुनिया में नहीं दिखेगी। वजह ये थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कपड़ों को लेकर, छोटे कपड़ों को लेकर अपनी राय रखी थी और उसके बाद ही इनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई, और इस ट्रोलिंग से परेशान होकर बताया जाता है कि उन्होंने ये कदम उठाया। और अब खबर बॉलीवुड से, आमिर खान देने वाले हैं खुशखबरी, 1, 2 नहीं 3, यानी आमिर खान और उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं 5 को एक प्राइवेट सेरेमनी में वो शादी करेंगे। इस शादी में कोई भव्य आयोजन या ग्रैंड रिसेप्शन नहीं रखा गया है। 3 मैंने शुरुआत में इसलिए कहा क्योंकि ये तीसरी शादी होगी आमिर खान की। दोनों एक छोटे से साइनिंग सेरेमनी के जरिए अपने रिश्ते को ऑफिशियल करेंगे। आमिर खान ने साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी के साथ अपने रिलेशनशिप की बात मीडिया के सामने कन्फर्म की थी। आमिर खान की ये, याद रहे, तीसरी शादी है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
2: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, विन लाइफ टाइम के सेगमेंट में आपका हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं। दोस्तों, देखते ही देखते दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन हम जो है पॉजिटिव स्टेप लेने से पहले बहुत सोचते हैं। दोस्तों, अब सोचने का वक्त नहीं है, अब एक्शन लेने का वक्त है। ये रिसेशन प्रूफ काम आप कर सकते हैं और अपने मनचाहे वक्त पर ये काम कर सकते हैं, और जो है पैसे की बात रही तो कंसिस्टेंटली मनी आप अर्न कर सकते हैं, अपनी फैमिली को वक्त भी दे सकते हैं। ये सब कैसे कर सकते हैं, आइए जानने के लिए आपको उस सपनों की दुनिया में ले जाएं जो हकीकत है हमारी जिंदगी में, और विन लाइफ टाइम के दफ्तर में लिए चलते हैं, जहां से रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: गुड गुड, वेरी वेल। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से राफी जी। और जैसा मैंने कहा कि लोगों को पहले लगता है कि इतना सारा पैसा कमाना एक सपने की दुनिया होती है, लेकिन हकीकत में भी ये चीज़ पॉसिबल होती है। ये जब वो जानते हैं और जब खुशी आती है उनके चेहरों पर, तो एज अ मेंटोर आपको कैसा लगता है?
2: लेकिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके समटाइम रेडियो एड पे देना कई दफा हो जाता है कि टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन अगर मैं कहूं कि पिरामिड्स हैं और आप कहें पिरामिड्स नहीं हैं, क्योंकि आपने अगर नहीं देखे हुए, इट डजंट मेक इट कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो जस्ट बिकॉज यू हैवन सीन समथिंग और आपको ये यकीन हो कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर हमें तो ऊपर वाले पे यकीन छोड़ देना चाहिए, कोई देखा किसी ने नहीं। तो इस सारे में हम लोग आपके जो सपने ऑफकोर्स हम प्रेजेंट करते हैं, उसमें सिर्फ एक चीज आपसे मांगते हैं, वो डिसिप्लिन है। ना आपसे टेक्निकल नॉलेज मांगते हैं, ना आपसे फाइनेंस का, ना कंप्यूटर का, सिर्फ कहेंगे थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन है। $100 पर डे से स्टार्ट करें एंड यू कैन स्काई इज द बिगिनिंग।
1: ब्यूटिफुल। सो $100 पर डे आप मिनिमम कमा सकते हैं, विच इज ग्रेट। और राफी जी, इसके लिए वक्त कितना देना होगा, और क्या हमारे लिसनर्स अपनी रेगुलर जॉब्स के साथ ये काम कर सकते हैं एज पार्ट टाइम?
2: जी एब्सोल्युटली, हम बिल्कुल हाईली इनकरेज करते हैं कि अपनी करंट सोर्स ऑफ इनकम, करंट जॉब को ना छोड़ें, पार्ट टाइम आए। 90 मिनट्स अ डे है, 9 o'clock एवरी डे ईस्टर्न शुरू हो जाता है। अभी हम वैंकूवर और कैलगरी से भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने ऑफिस उधर खोल दिया है। सो इट्स 23 hours अ डे मार्केट खुली है। आज भी जिस तरह हम मेंटर हैं, शाम को 8 बजे हम लोग एक वन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की एक्सरसाइज भी वंस अ वीक करते हैं। तो आपको अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, आपके साथ कोई ना कोई हमेशा खड़ा है।
1: वेरी नाइस। और अगर हमारे लिसनर्स आकर देखना चाहें ऑफिस में कि किस तरह से ट्रेडिंग होती है, किस तरह से ट्रेनिंग होती है, तो क्या अवेलेबिलिटी रहती है ड्यूरिंग द वीक डेज एंड वीकेंड्स में? तो आपके सेमिनार होते ही हैं, तो जरूर इस हवाले से अपडेट कर दें हमारे लिसनर्स को।
2: जी एब्सोल्युटली, बोथ ऑफिसेज आर ओपन द सैटरडे सेमिनार के लिए। सर, आप ट्रिनिटी ड्राइव वाले ऑफिस में आके मंडे टू फ्राइडे 9 to 2 o'clock एनी टाइम आके एज ए ऑब्जर्वर देख सकते हैं कि किस तरह का टीचिंग स्टाइल है। आपने अगर इसको ऑडिट करना है तो ऑफकोर्स एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट फॉर यू।
1: वेरी नाइस। तो वेल दोस्तों, देर किस बात की है। सबसे पहले तो जो फ्री सेमिनार है सैटरडे का दोपहर 1 बजे का, इन द हार्ट ऑफ मिसेस सागा, अपनी फ्री सीट्स आप बुक करा लें 9052061008 या विजिट करें वेबसाइट winlifetime.com। राफी जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और फिर आपसे मुलाकात होती है। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू जी, टेक केयर।
1: टेक केयर। हरवेल दोस्तों, एक क्या परफेक्ट मौसम है, और वेंसडे June 3rd 28 डिग्री सेंटीग्रेड है बाहर का तापमान, और इसके साथ साथ इस वक्त आपको 28 डिग्रीज ही महसूस हो रहा है, और अब जो है आज का लोएस्ट टेम्परेचर जा सकता है रात के 11 बजे 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ही अमेजिंग से हिट ट्रैक की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंजॉय कीजिए, फुट टैपिंग म्यूजिक है, क्योंकि बाहर जो मौसम है बिल्कुल समर लाइक मौसम हो रहा है। सो आइए, लेट्स नाचो टुगेदर ऑन मस्ती की रेलगाड़ी।

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165. Hum honge aapke saath
1: hamesha. Shawn Express, गानों की ये स्वीट डिश. वेल दोस्तों, गाने की स्वीट डिश आपकी नजर करते हैं शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3. और दोस्तों, ये स्वीट डिश आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स. अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो. खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और जो इनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम है खुद ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है. नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक. तो अगर बात रही स्टाइल की, गुड लुक्स की, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, एवरीथिंग कम्स टुगेदर और आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल विंडोज एंड डोर्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज की लग सकती हैं. और एक और अच्छी खबर है, उनके पास फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो यश विंडोज एंड डोर्स में धर्म जी से बात कर लें इस नंबर पर 416-732-3600. दैट्स 416-732-3600. इसके अलावा मैं दोस्तों आपको बता दें, लेटेस्ट देयल ट्रैवल की तरफ से जो लेटेस्ट फेयर आए हैं उनके बारे में भी आपको बता दें. ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जा सकते हैं अमेजिंग अमेजिंग डील्स के साथ. देयल ट्रैवल टोरंटो से दिल्ली आप जा सकते हैं वन वे 849 में दो लगेज के साथ बिफोर मिड जून. एंड आफ्टर मिड जून आप जा सकते हैं 999 में टोरंटो से दिल्ली. और ये जो है वन वे की प्राइस है विद टू लगेज. टोरंटो से दिल्ली जा सकते हैं जुलाई के महीने में $1,049 में वन वे दो लगेज के साथ. लास्ट मिनट डील्स आर ऑल्सो अवेलेबल. दे विल ट्रैवल टू लोकेशंस टू सर्व यू, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन. नंबर्स आर 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200. आपको लिए चलते हैं दोस्तों इस बहुत ही प्यारी सी टेस्टी सी स्वीट डिश की तरफ. और ये जो स्वीट डिश है हम आप तक पहुंचा रहे हैं फ्रॉम द मूवी रिफ्यूजी. और ये फिल्म इतनी प्यारी थी, इस फिल्म से करीना कपूर और अभिषेक बच्चन ने डेब्यू किया था. और इस फिल्म का एक बहुत प्यारा सा गाना है जिसकी रिक्वेस्ट आई है. लेकिन उस गाने से पहले हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई है एक और गाने की जिसको हम ऑनर करेंगे. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आप लोगों की रिक्वेस्ट हमारे शो में हम प्ले करते हैं. तो फिलहाल आपको लिए चलते हैं 1994 के दौर में और चंद लाइनें मैं आपकी नज़र करूँगी, इससे आपको पता चल जाएगा गाना कौन सा है. कहते हैं तुम सा कोई प्यारा नहीं इस जहाँ में, तुम सा कोई प्यारा नहीं कोई इस जहां में, तेरा ही नाम है मेरी हर दुआ में. तेरी हंसी में जो सुकून मिले वो कहीं नहीं है इस जहां में. तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है. बहुत प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी खुदार आपकी नजर.

एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 9054586808
1: और विजिट pujahut.com।
2: जय
0: श्री राम। घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
3: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
0: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
3: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन।
0: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
5: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232।
6: भाई मैनू कहना भी पैना ते तुहानू सुनना भी पैना। डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे, पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है, ओदा ता जवाब ही नहीं।
7: सोने फेस वाली है, पुच्छी हील वाली है, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारी है।
6: फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस, विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263। कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट।
8: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first-time home buyers ke liye an amazing opportunity. Free whole town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
9: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.
10: और दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज की ताजा लोकल हेडलाइंस की तरफ। सबसे पहले पॉलिटिकल एंड डेवलपिंग अपडेट। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा है कि उनकी सरकार जल्द ही फोर्स्ड लेबर को लेकर नया कानून लाने जा रही है। ये कदम तब सामने आया है जब यूएस ने कनाडा समेत कई देशों पर नई टैरिफ्स लगाने की बात कही है। कार्नी का कहना है कि कनाडा सप्लाई चेन्स में चाइल्ड लेबर और फोर्स्ड लेबर को पूरी तरह खत्म करने के लिए कमिटेड है। उधर ऑन्टारियो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज यूनियन यानी ओपीएसईयू की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकारी सर्विसेज को चलाने वाली प्राइवेट कंपनियों को पिछले साल 1 बिलियन से ज्यादा का भुगतान किया गया है। यूनियन के प्रेसिडेंट जेपी हॉर्निक ने इसे पब्लिक मनी की बर्बादी बताया है और फोर्ड सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। उधर ऑन्टारियो के मेजर एजुकेशन यूनियन जिसमें ETFO, OSSTF, OECTA और CUPE शामिल हैं, ने सरकार को ऑफिशियली बार्गेनिंग नोटिस जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि अगले 15 दिनों में बातचीत शुरू होगी और अगर अग्रीमेंट नहीं बना तो फॉल में लेबर एक्शन देखने को मिल सकता है। उधर जीटी में लगातार तीसरे महीने होम सेल्स बढ़ी हैं। मई के महीने में 6,500 से ज्यादा घर बिके, जो पिछले साल के मुकाबले 6% ज्यादा हैं। हालांकि एवरेज होम प्राइस करीबन 4.6% गिरकर लगभग 1.06 मिलियन पर आ चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोअर प्राइसेस और बोरोइंग कॉस्ट जो है वो बायर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उधर पॉपुलर डिस्काउंट ब्रांड जेलर्स अब ऑन्टारियो में एक्सपैंड होने जा रहा है। टोरंटो के ऑफिस रोड पर 18 जून को नया स्टोर खुलेगा और विंसर में जुलाई में दूसरी लोकेशन खुली जाएगी। कंपनी का टारगेट है कि धीरे धीरे पूरे कनाडा में एक्सपैंड किया जाए। और आखिर में आपको बता दें, आज का परफेक्ट समर लाइक वेदर। आज का हाईएस्ट 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कल भी ऐसा वार्म वेदर बना रहेगा। ओवरनाइट लो वुड बी 17 डिग्री सेंटीग्रेड।

0: अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से शालिनी वेलकम करती है मस्ती की रेलगाड़ी CMR FM 101.3। और अब आपको बताने जा रहे हैं कि आज का दिन क्या कहता है, व्हाट इज गोइंग टू बी सो स्पेशल इन टुडेज डे। लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं आज की डील्स की तरफ, और हमारे साथ देओल ट्रैवल से नवजोत जुड़ने जा रहे हैं लेटेस्ट डील्स एंड ऑफर्स के साथ। नवजोत, आपका वेलकम है।
2: थैंक यू सो मच शालिनी
1: जी, बताइए क्या है स्पेशल आज के।
2: तो आज मैं बहुत सारी डील्स लेके आई हूँ आज के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जी वन वे, जो कि हमारी है टोरंटो से बैंगलोर जून मंथ में, आपको $900 में मिल जाएगा। टोरंटो से दिल्ली आप मिड जून के बाद अगर दिल्ली तक जाते हैं तो आपको $1,000 में, तो वो भी दो बैग्स के साथ आपको प्राइस मिल जाएगा वन वे का। एंड इन केस अगर आप जुलाई में जाना चाहते हैं तो $1,050 का मिल जाएगा दो बैग्स के साथ। तो ये तो हो गई जी वन वे। अभी मैं आपको बता देती हूँ राउंड ट्रिप एज वेल। राउंड ट्रिप के लिए हम लेके आए टोरंटो से बॉम्बे सितंबर से अक्टूबर $1,570 में, एंड टोरंटो से बैंगलोर है सितंबर टू अक्टूबर सिर्फ और सिर्फ $1,420 में। एंड इन केस अगर आप दिल्ली तक जाना चाहते हैं और अगस्त से सितंबर, तो वो है $1,660 में। ये हो गई टोरंटो से दिल्ली वाली राउंड ट्रिप्स की डील। एंड इन केस आप दिल्ली से टोरंटो आना चाहते हो या बॉम्बे आना चाहते हो, तो आपको जून और अगस्त से लेके सिर्फ और सिर्फ लेके आए $1,369 में डील। एंड अगर दिल्ली से टोरंटो आप सितंबर के मंथ में वन वे करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ $880 में आपको मिल जाएगी, वो भी दो बैग्स।
1: वंडरफुल क्या बात है। तो नवजोत, मैं चाहूंगी यहाँ पर अपनी लोकेशंस और अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें, ताकि जल्द से जल्द हमारे लिसनर्स आपसे बात करें और एक अच्छी सी जो डील है वो आपके थ्रू बुक करें।
2: श्योर, हमारी दो लोकेशंस है, आप दोनों में से किसी भी लोकेशन पे कॉल कर सकते हैं। पहली हमारी जो मेन लोकेशन है वो है इटुबेको लोकेशन, अनदर लोकेशन इज इन ब्रैम्पटन। सो कॉन्टैक्ट नंबर 905-588-4200, 905-588-5100। अभी इन डील्स को ग्रैब करने के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट करें, लिमिटेड साइट्स अवेलेबल है।
1: Wonderful. 905-588-4200 and 905-588-5100. Brampton and Etobicoke, two locations to serve you. Deol Travel. Thank you so much, Navjot, humse judne ke liye. Phir aapse judenge. All the best.
2: Thank you so much. Bye-bye.
1: और वेल दोस्तों, चलते हैं आज के दिन की तरफ, और आज का दिन आप तक पहुंचा रहे हैं कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, जो लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कनाडा वाइड। आपके घर या बिजनेस के लिए आप ले सकते हैं पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स, और फ्री बारबेक्यू मिल रहा है आपको विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड। बहुत ही टॉप क्वालिटी मटेरियल्स हैं, डिजाइंस अच्छी हैं, प्राइसिंग सब कुछ परफेक्ट है। सनरूम बनवा सकते हैं, कस्टम कैनोपी लगवा सकते हैं, हर सॉल्यूशन बनता है, मिलता है आपको परफेक्ट इंस्टॉलेशन के साथ। 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन में लोकेटेड है कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी। नंबर नोट करें 416-831-4790, 416-831-4790। और आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ CMR FM 101.3 पर शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी के साथ, और एक बहुत प्यारा सा गीत आपकी नजर करते हैं बहुत जल्द। स्टे ट्यून्ड।
0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: टाइम।
1: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट वेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: Sean Express.
7: Simply good. Retro style, old classics.
8: और बहुत ही प्यारा सा ओल्ड क्लासिक मैं आपकी नजर करेंगे 1974 के दौर में लिए चलते हैं, जब आई थी फिल्म हाथ की सफाई। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज है और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है। कहते हैं कुछ वादे ऐसे होते हैं जो सिर्फ शब्द नहीं होते, कुछ वादे ऐसे होते हैं जो सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि पूरी जिंदगी की उम्मीद बन जाते हैं। और जब प्यार सच्चा हो तो एक छोटा सा वादा भी दिल को उम्र भर का सुकून दे जाता है। वादा किया था साथ निभाने का, वादा किया था साथ निभाने का, हर खुशी और हर गम में मुस्कराने का। मोहब्बत अगर सच्ची हो दिल से, मोहब्बत अगर सच्ची हो दिल से, तो एक वादा ही काफ़ी है उम्र भर याद आने का। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं ना रहूं, मेरे बिन तू ना रहे। बहुत प्यारा सा गाना है, 1974 की फिल्म हाथ की सफाई से लिया गया। आपकी नज़र मस्ती की रेलगाड़ी पर, इंजॉय।

वादा कर ले साजना, कहते हैं दोस्तों कि रिश्तों की डोर भरोसे से बंधी रहती है। रिश्तों की डोर भरोसे से बंधी रहती है, मोहब्बत वादों से नहीं निभाने से सजी रहती है। जो दिल से कह दे मैं साथ हूँ, जो दिल से कह दे मैं साथ हूँ, उसकी याद हर धड़कन में बसी रहती है। ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपकी नज़र हमने किया पसंद करने का, बेहद शुक्रिया। आप हैं शालिनी के साथ शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812, 416-569-7812। यश विंडोज एंड डोर्स के बारे में बता दें आपको फिर से कि वर्ल्ड क्लास के क्वालिटी आपको मिलती है विंडोज एंड डोर्स की रीजनेबल प्राइस में। यश विंडोज एंड डोर्स ऑल ओवर ऑन्टारियो में सर्विसेज देते हैं, खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और इनकी जो एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम है खुद ही इंस्टॉल करती है। नो मिडलमैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक। स्टाइल, लुक,

0: रेट दैट्स 416-732-3600। अगर आप परेशान हैं पेस्ट और वाइल्ड लाइफ से तो वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल इंक है आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पेस्ट कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ रिमूवल, एक्सक्लूजन्स, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है और इनके इको फ्रेंडली एंड सेफ ट्रीटमेंट्स रहते हैं। आयान काशिप जी से राइट अवे कॉल कर लें 6479664355 6479664355। और अगर घर में कोई भी रिपेयर कराना चाहते हैं, कोई भी इंस्टॉलेशन का काम है, इंटीरियर या एक्सटीरियर, बाथरूम्स को रिमॉडल कराना है, आपके बेसमेंट्स में कुछ काम कराना चाहते हैं, साइडिंग्स, डेक्स, अप्लाइंसेस लगवाने हैं, कोई खराबी आ गई है, ड्राई वॉल फ्लोर वर्क का काम है, पेंटिंग फिनिशिंग का काम है, अजीम गेट्स इट डन द राइट फर्स्ट टाइम। राइट अवे कॉल कर लें अजीम को 6472808806 6472808806। और आपका एक बार फिर से शालिनी वेलकम करती है मस्ती की रेलगाड़ी पर। और आज का दिन क्या कहता है, आज के दिन में क्या खास होने जा रहा है? अभी मैंने वाइल्ड लाइफ कंट्रोल की बात करी तो इससे और साथ ही पेस्ट कंट्रोल की बात करी, वैनगार्ड की तरफ से सर्विसेज दी जा रही हैं, तो इससे मिलता जुलता आज का दिन है इंसेक्ट रिपेलेंट अवेयरनेस डे। इंसेक्ट्स को अपने करीब ना आने देने के लिए हम इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज करते हैं और समर में बग्स से बचना बड़ा जरूरी है। हम बाहर भी जाते हैं, कॉटेजेस में जाते हैं, कैंपिंग के लिए जाते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे सेफ एंड स्टे प्रोटेक्टेड। इसके अलावा नेशनल चिकन सैलेड डे है और आप हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन खा सकते हैं। लव कॉन्करस ऑल डे है, सबसे ब्यूटिफुल मैसेज है आज के लिए, यानी प्यार हर मुश्किल को जीत सकता है। सो स्प्रेड लव एंड फील लव, ऐसा कहा जाता है। फूड लवर्स के लिए आज है नेशनल एग डे, ब्रेकफास्ट का किंग कहा जाता है एग और च्यूई इनसाइड प्योर चॉकलेट एंड हैप्पीनेस, क्योंकि आज है नेशनल चॉकलेट मक्रून डे, तो ये भी आप खा सकते हैं। तो एग डे भी है, ब्रेकफास्ट का किंग एग, या आप नेशनल चॉकलेट मक्रून भी खा सकते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स को अपने से दूर भगा दीजिए, प्यार कीजिए और प्यार आपको भी मिलेगा जिंदगी में। तो एक छोटा सा टाइनी सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे दोस्तों, उसके बाद वापस लौटते हैं आज के अगले गाने के साथ। स्टे ट्यून, डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812 Good afternoon. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812
1: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
2: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
1: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइन।
2: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232 890-3232।
3: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओनादी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।
4: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब

भाई कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पुराने दौर में अच्छे लगते हैं, और जब नए दौर में उन्हें रिक्रिएट किया जाता है तो गानों में वो मजा, वो चार्म नहीं रहता। लेकिन कभी कभी जो नए गाने बनते हैं उनमें मजा और भी होता है, दोगुना मजा होता है। तो ये चुनरी चुनरी गाना जो ओरिजिनल ट्रैक था और बीवी नंबर वन का, तो अब उसके बाद ये जो नया आया है इसमें और भी ज्यादा मजा आ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो दैट। आप डायरेक्ट नंबर रीच आउट करें, इस पर आप अपने हमें मैसेजेस भेजा कीजिए, और आपको अपने सभी सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक्स आपको हम भेजेंगे कि कैसे आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जाकर हमारे वीडियोज आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे वीडियोज को। और इसके साथ साथ जितने भी बिजनेस ओनर्स हमारा शो इंजॉय कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपके बिजनेस को रेडियो पर प्रमोट किया जाए, एट द सेम टाइम डिजिटली प्रमोट किया जाए वेरी हैविली ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डू गिव अस अ कॉल, रीच आउट टू अस और सेंड अस योर मैसेजेस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812। और इस पर आप मैसेजेस भेजेंगे तो आपको हम पूरे लिंक भेज देंगे अपने सभी सोशल मीडिया चैनल्स के। और इसके साथ साथ आपको बता दें एक बार फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। पहली बात तो ये है कि जो जो डील आई है दैट इज माइंड ब्लोइंग। देओल ट्रैवल की तरह से टोरंटो से दिल्ली आप वन वे जा सकते हैं दो लगेज के साथ 849 में बिफोर मिड जून। तो इस डील को ग्रैब करने के लिए आप कॉल कीजिएगा 905-588-5100 एंड 905-588-4200। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि आपने अजीम का नंबर मांगा था, हैंडीमैन है घर में, कोई भी काम कराना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े बड़े काम कराने हैं, छोटे काम कराने हैं, रिपेयर वर्क कराना है, फ्लोरिंग, टाइल्स, पेंटिंग, बेसमेंट का कुछ काम है, नंबर नोट करें 6472808806 6472808806। और एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ आपको छोड़े जाते हैं, और वादा रहा कि कल फिर आपसे जुड़ेंगे मस्ती की रेलगाड़ी पर 3 से 4 ऑन CMR FM 101.3। कहते हैं कि रिश्तों की असली खूबसूरती वादों में नहीं होती, रिश्तों की असली खूबसूरती वादों में नहीं होती, वो तो दिल के उस एहसास में होती है जो बगैर कहे हर पल साथ निभाता है और जिंदगी की डोर बनकर उम्र भर मुस्कराता रहता है। कुछ गाने महसूस किए जाते हैं और ऐसा ही सदाबहार नगमा है तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। 1962 की सुपरहिट फिल्म असली नकली से लिया गया ये बहुत खूबसूरत सा गाना है, जिसमें देवानंद और साधना की जोड़ी ने अपने मासूम और सच्चे प्यार से दर्शकों का दिल जीत लिया था। चलिए दोस्तों, इसी गाने की तरफ आपको हम लिए चलते हैं, और आप डोर से बंधे हुए हैं मस्ती की रेलगाड़ी के साथ, और कल फिर से हम चलेंगे एक प्यारी सी राइड पर। नंबर आपको फिर से बता दूं शो के बाद 416-569-7812, 416-569-7812। कल तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
2: जो हो आपके दिल के करीब,
1: जो मनाए आपके त्योहार,
2: रखे चुटकुले तैयार,
1: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
2: जहाँ मचे शायरी की धूम,
1: जो दे खबरें अप टू डेट
2: और दे ढेरों इनाम,
1: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
2: जतिन के संग
1: ऑन CMR 101.3 FM. ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM.
3: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
4: हाँ जी मित्र भाइयों, जी वॉइस और हम यहाँ के दोस्त जतीन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम। बहनों भाइयों, दिल का हाल सुनाना अब बहुत आसान है, दिल का हाल सुनाना अब बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास गूगल और इंस्टाग्राम है। पर जब दिल में हो बेताबी और बात पहुंचाती थी किसी खास घर में, जब दिल में होती थी बेताबी और बात पहुंचानी थी खास घर में, तब उस जमाने में नहीं लगता था डर, क्योंकि हर किसी को भरोसा था उन पर, जिसे हम कहते हैं कबूतर। हाँ जी बिंद्र भाइयों, कबूतर खत लेकर जाते थे और सही जगह डिलीवर करते हैं। आज गलत जगह पर मैसेज गया तो हम डिलीवर करने के बजाय उसे डिलीट कर देते हैं और कहते हैं मोहब्बत टिकती नहीं। साहब, सच्ची मोहब्बत हो तो वो कभी रुकती नहीं। कबूतर जा जा जा। ये वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।
2: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African Lion
3: Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 6478648844 தட்ஸ் 6478648844
1: ஆர் விசிட் teamsabarwal.com
2: யுவர் சர்ச் எண்ட்ஸ் ஹியர்.
3: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी. अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
4: इसके पीने पे तबीयत में रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए.
5: Wow, Mom, Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
6: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
5: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
7: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
8: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545.
9: हाँ जी मिंद्र भाइयों, रेडियो वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन आपके लिए रेडियो वॉइस फिर से शुरू कर रहा है अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट. मिंद्र भाइयों, देना होगा आपको जवाब. आप जीत सकते हैं फैमिली पास या फिर सिंगल पास अफ्रीकन लायन सफारीज के. आइए आपको बताता हूँ आज का सवाल. आज का सवाल बहुत ही सिंपल है. अफ्रीकन लायन सफारी कहाँ पर है, क्या एड्रेस जानते हैं आप? अगर जानते हैं तो हमें कीजिए ईमेल contest@weeklyvoice.com. आप जीत सकते हैं अफ्रीकन लायन सफारीज के पासिस. उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा. ये हिडो वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन.
10: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स. एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है. अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट. CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का. बिंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 905-564-2021. डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट.
11: अनदर डॉन क्लीन विद द डॉन डक्स.
12: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
13: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
12: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
13: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
12: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
13: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
12: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
11: Dawn Platinum, the better grease getter.
14: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
15: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
16: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
17: ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਯੋਟਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਈਡ ਨਾਰਥ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਚਿਪਸ, ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਅਤੇ ਅਤਰੰਗੀ ਪਲੇਲਿਸਟਸ। ਪਰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਰਵਿਸ ਦਾ। ਆਇਲ ਚੇਂਜਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਚੈਕਸ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਸਟਾਪ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨੀ।
18: Medical insurance for new immigrants, the visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam.
19: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hain jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walking clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai. Iske ilawa bachcho ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability insurance ke liye bhi call kare Sanjeev Puri 416-890-3232
20: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
9: हाँ जी मित्र भाइयों, रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए नजर करते हैं अराउंड द इंडिया। कर्नाटक में कुर्सी कुमार का सस्पेंस खत्म। खबर है कि कर्नाटक में आखिरकार लंबा सियासी ड्रामा खत्म हुआ है और डीके शिवकुमार ने राज्य के 34वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। सिद्धारमैया जी ने मुस्कुराते हुए कुर्सी उनके हवाले कर दी। बहेंद्र भाइयों, कुर्सी तो हवाले हो गई, लेकिन लगता है कि राजनीति में कुर्सी का खेल भी म्यूजिकल चेयर जैसा होता है। म्यूजिक रुका नहीं कि कोई न कोई बैठ जाता है। खैर, शिव कुमार जी को बधाई। उम्मीद है अब बेंगलुरु के ट्रैफिक का सस्पेंस भी इसी तरह खत्म होगा। हाँ जी, बेंगलुरु में ट्रैफिक जबरदस्त है। क्या ट्रैफिक का सस्पेंस भी इसी तरह खत्म होगा? थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। भारत अमेरिका में 99% डील पक्की। खबर है कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने बयान दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच मेगा ट्रेड डील 99% पूरी हो चुकी है, बस आखिरी औपचारिकताएं ही बाकी है। अब साहब 99% पक्की, ये तो यही बात हो गई कि जैसे पत्नी पति को कहती या पति पत्नी को कहता है कि बस 2 मिनट में तैयार हो रहा हूं या हो जाऊंगी, लेकिन वो 2 मिनट खत्म नहीं होती। वैसे इस 1% के चक्कर में कहीं बात अटक न जाए, क्योंकि भारत में तो आखिर 1% ही सबसे भारी पड़ते हैं, है ना। लीजिए, पश्चिम बंगाल से बड़ी सियासी खबर आ रही है। अंदरूनी बगावत और रुतब्रत बनर्जी के बागी रुख के बाद टीएमसी ने बंगाल की अपनी सभी सांगठनिक कमेटियों को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया है। बॉस, जब घर में बच्चे आपस में लड़ने लगे तो मम्मी पूरा खिलौना ही छुपा देती है। दीदी ने भी वही किया। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। अब देखना यह है कि नई कमेटी में किसे जगह मिलती है और किसे थैंक यू वेरी मच आपकी सर्विसेज के लिए ऐसा कहकर बाय बाय किया जाता है। और सिनेमा लवर्स के लिए एक बड़ी खबर, आमिर खान की आइकॉनिक फिल्म लगान अपनी 25वीं सालगिरह के मौके पर 12 से 14 जून तक सिनेमा घरों में फिर से रिलीज होने जा रही है। मेकर्स ने नया ट्रेलर भी जारी कर दिया है। हाँ जी, तो तैयार हो जाइए भुवन कचरा और लाखा को बड़े पर्दे पर फिर से देखने के लिए। इस बार भी थिएटर्स में लोग यही दुआ करेंगे कि मैच के आखिरी बॉल पर कोई नो बॉल ना हो जाए। टैक्स तो अब जीएसटी के रूप में दे रही है, चलो 3 गुना लगान का मजा फिर से ले लेते हैं। जीएसटी का मजा तो एवरीडे लेते हैं, है ना। हाँ हाँ, ये थी अराउंड द इंडिया की टॉप खबरें। हाँ जी मित्र भाइयों, ये हेड वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। और खेत के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि दिल्ली में 6 मंजिला होटल में आग लग गई, 21 लोगों की जान चली गई। इनमें 11 विदेशी
10: और 10 भारतीय नागरिक बिना फायर एनओसी चल रहा था होटल, ऐसा कहा जाता है। बिंद्र भाइयों, बेसमेंट में कमरे और किचन, न वेंटिलेशन, न इमरजेंसी एग्जिट। दिल्ली के जिस होटल में आग लगी उसका मालिक पास में चला रहा है ऐसे 2 होटल। तहकीकात जारी है। ये हेड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
20: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545।
10: क्या आप शेरों, हाथियों और चीतों को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं? तो पहुंचिए अफ्रीकन लायन सफारी, बिंद्र भाइयों कनाडा के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ एडवेंचर पर। पहुंचना होगा 1386 कूपर रोड, कैम्ब्रिज। आज ही टिकट बुक करें lionsafari.com पर। ये हिड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
0: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना

0: Meet Rohit Dayasman at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा. मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10. वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं. कॉल करें 9057952299 या विजिट करें गुरुलक्ष्मी.com. गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी पर टोयोटा टकोमा दी बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आई फोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर सकून दे होर नेड़े रेड टैग डेज दा लाभ लाओ लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% ते $4900 डाउन दे नाल विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ
4: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545
5: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure.
6: Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
7: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.
8: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
9: Another Don Clean with the Don Ducks.
10: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
11: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
10: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
11: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
10: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
11: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
10: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
9: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545.
12: हाँ जीविंद्र भाइयों, रेडियो वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन आपके लिए रेडियो वॉइस फिर से शुरू कर रहा है अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट. बिंद्र भाइयों, देना होगा आपको जवाब. आप जीत सकते हैं फैमिली पास या फिर सिंगल पास अफ्रीकन लायन सफारीज के. आइए आपको बताता हूँ आज का सवाल. आज का सवाल बहुत ही सिंपल है. अफ्रीकन लायन सफारी कहाँ पर है, क्या एड्रेस जानते हैं आप? अगर जानते हैं तो हमें कीजिए ईमेल contest@weeklyvoice.com. आप जीत सकते हैं अफ्रीकन लायन सफारीज के पासिस. उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा. ये हिडो वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन.
13: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50-7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड, मिसिसागा. मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10. वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं. कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com. गुरु लक्ष्मी, साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का.
14: रिट्स फर्नीचर दा मैसेज जरा.

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
3: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
4: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
5: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है। और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
5: डॉक्टर नील गजर, 735 ट्वीन एवेन्यू, सुइट 16, मिसिसागा। कॉल 289-401-0009।
6: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545।
7: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस एफएम 101.3 और मैं हूं अमिताभ। वेंसडे का खुशनुमा मौसम, घड़ी में बज रहे हैं करीबन 4:25 और वक्त हो चला है उनसे मिलने का जिन्हें आप सालों से रियल एस्टेट की ट्रस्टेड अथॉरिटी मानते आए हैं। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी और आपकी फेवरेट पर्सनालिटी श्री पी के सबरवाल जी की। सबरवाल जी पिछले कई दशकों से अपनी नॉलेज, इंटेग्रिटी और मार्केट एक्सपर्टीज के दम पर हजारों फैमिलीज का अपना घर खरीदने का सपना बखूबी पूरा करते आ रहे हैं। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, अपना घर खरीद अपग्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देख रहे हो, या फिर प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डो मार्केट को थोड़ा बहुत समझना चाहते हो, हर हफ्ते सबरवाल जी लेकर आते हैं मार्केट की सीधी, सटीक और प्रैक्टिकल एनालिसिस। आज भी वो जीटीए और कनेडियन रियल एस्टेट मार्केट की ताजा हलचल, नए ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज पर रोशनी डालेंगे और सबसे खास बात, आपके सवालों का जवाब देंगे लाइव ऑन एयर। तो अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें कॉल कीजिए स्टूडियो लाइन पर ऑन 416-593-0055, दैट्स 593-0055। सबरवाल जी तकरीबन 4:50 तक हमारे और आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो कॉल करके अपने क्वेश्चंस पूछना ना भूले। सबरवाल जी रेडियो वॉइस पर हार्दिक स्वागत है आपका।
8: थैंक यू वेरी मच सक्सेना साहब एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल अवर लिसनर्स। जी सक्सेना साहब
7: जी। सबरवाल जी एक हफ्ते है, वैसे तो लगता है कि कम समय है लेकिन एक हफ्ते में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, तो प्लीज हमारे श्रोताओं को अपनी एक्सपर्टीज का फायदा उठाने दें और हम सभी को रियल एस्टेट की कुछ खास अपडेट दें प्लीज।
8: जी ये अभी मई का डाटा भी आ चुका है और आपको पता होगा लास्ट वीक हमने अप्रैल का डाटा बताया था, 10 साल के एवरेज में जो फैमिली सिंगल फैमिली सेल्स सरपास कर गई थी और उसका डाटा मैंने लास्ट वीक सरपास आपसे शेयर किया था। तो मई का डाटा जो ट्रब का आया है वो फिर एनकरेजिंग है, बड़ा जबरदस्त। तो यहाँ पर बताया गया है कि ट्रब के हिसाब से अभी मई के महीने में 6.3% सेल जंप हुई है कंपेयर टू मई 2025।
7: यानी कि ट्रब का मतलब है, सॉरी सबरवाल साहब जो हमारे श्रोता नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, ट्रब है टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड,
8: टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड, टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड। अब इसके अंदर एक आर एक्स्ट्रा आ गया, पहले सिर्फ TREB था, अब TRREB हो गया, टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड हो गया इसका नाम। और ये जीटीए की मैं खबर आपको दे रहा था कि मई के महीने में भी जंप आया है 6.3% का, और अगर हम इसको सीजनली एडजस्ट बेसिस पे अगर ट्रांसलेट करें तो ये 10% का जंप आया है फ्रॉम अप्रैल, विच इज ए वेरी गुड साइन। और ये मंथ ओवर मंथ जो बढ़ा है ये जुलाई 2025 के बाद इतना ज्यादा बढ़ा है. दिस इज द स्ट्रांगेस्ट आफ्टर जुलाई 2025. और इससे भी एक बेटर खबर ये आई है कि न्यू लिस्टिंग जो है वो कम आई है मार्केट में. वो कम आई है 17,000 समथिंग आई है. इस डिक्लाइन जिसके अंदर 18.9% का हुआ ईयर ओवर ईयर. इट इज अगेन ए गुड साइन कि मार्केट में इन्वेंटरी कम होती जा रही है. और ये इन्वेंटरी अगर आप मंथ ओवर मंथ देखें तो अप्रैल से 2.1% ड्रॉप हुई है. स्प्रिंग सेल्स जो है वो एक स्ट्रांग मैं कहूँ कि रास्ता अपना रही है, स्ट्रांग सेल की तरफ जा रही है. और ये भी फोरकास्ट किया जा रहा है कि वी हैव नाउ गुड सीजन अहेड. 2026 तक ये सीजन जो है ना, इस साल का आगे का तो प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती. नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर विल बी गुड. ये भी एक बड़ी अच्छी एक जो है ना एक खबर शेयर की गई. और ये टोरंटो का मतलब एक बात और बताना चाहूंगा इसके अंदर मैं, जो इन्वेंटरी लेवल था वो 20,000 से नीचे आ गया. यानी कि जो 24,000 से ऊपर चला गया था वो 20,000 से नीचे आ गया, 19,047 समथिंग आ गया. यानी कि इन्वेंटरी भी कम हो रही है. तो मुझे लग रहा है कि जो हम पहले से प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ 2026 से हालात कुछ अच्छे होते हुए नजर आएंगे, वो नजर आने शुरू हो गए. जी
7: सबरवाल साहब, मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन इस पे ये था कि ये इन्वेंट्री जो कम हो रही है ये ओवरऑल कम हो रही है कि कॉन्डो मार्केट में ज्यादा कम है और डिटैच्ड और सेमी डिटैच्ड में कम है थोड़ा?
8: मैं आपको उसकी एग्जैक्ट फिगर ही दे देता हूँ. 19,044 जो है टोटल इन्वेंट्री रह गई. एंड ये पिछले 22 महीनों में सबसे लोएस्ट आगे रही है. और मैं बता दूं कि इसके अंदर जो कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट है वो 13,331 है और जो सिंगल फैमिली होम्स है वो 5,713 है. यानी कि दोनों की इन्वेंट्री कम आ रही है.
7: ओके, विच इज अ गुड पॉजिटिव न्यूज. गुड, पर यही इसी पॉजिटिव न्यूज के साथ एक और न्यूज भी आई थी सबरवाल साहब पिछले हफ्ते या अर्ली दिस वीक कि वी आर नाउ ऑफिशियली इन अ टेक्निकली इन अ रिसेशन. तो ये दोनों चीजें
8: कहा जा रहा है. यू आर राइट
7: जी,
8: टेक्निकल रिसेशन कहा जा रहा है पर इससे इकोनॉमी सहमत नहीं है, ना ही हमारी बैंक ऑफ कैनेडा इससे सहमत है. पहले तो मैं बता दूं स्टैट्स कैनेडा ने जो कंफर्म किया 29 मई को 2026 में कि फर्स्ट क्वार्टर जो है वो भी हमारा डिक्लाइन हुआ है 0.1%. ओनली 0.1% कम तो हुआ है. और
7: राइट,
8: फोर्थ क्वार्टर जो था 2025 का वो 1% डिक्लाइन हुआ था जीडीपी. राइट
7: जी.
8: तो टेक्निकली इसलिए इसके आगे वर्ड लगा दिया जाता है कि जब दो क्वार्टर लगातार ये नीचे की तरफ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो इसको टेक्निकल रिसेशन कह देते हैं. लेकिन लेकिन इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि इसको हमें टेक्निकल रिसेशन का लेबल नहीं देना चाहिए. क्योंकि ये सिर्फ जीडीपी की बात हो रही है, आगे हमें और भी चीजें देखनी है. इसको थोड़ा लंबे समय के हमें देखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हालात कुछ अलग से भी हैं. जैसे हाउसिंग थोड़ी कम है, गैस प्राइसेस जो है, पेट्रोल देखिए अभी अभी आपको आपने देखा ही होगा जो ईरान ने भी एक और पाबंदी लगा दी मंडे को. आपने देखा होगा मंडे में उन्होंने कहा कि वो बबल मंदीप स्ट्रेट, बबल मंदीप ऐसा करके कुछ नाम है उसका.
7: जी जी जी जी.
8: उसमें भी उन्होंने एक्टिवेट कर दिया कि अनाउंसमेंट कर दिया कि यहाँ पर भी हम कुछ निकलने नहीं देंगे. तो उसके वजह से देखा आपने 10-10 सेंट गैस के प्राइस फिर बढ़ गए. तो ये टेम्परेरी इसको माना जा रहा है, परमानेंट नहीं माना जा रहा. तो ऊपर से जॉब वगैरह की फिगर देखनी ये बहुत जरूरी है. और इसीलिए इसको बल्कि जो बैंक ऑफ कैनेडा की जो डिप्टी चीफ है रोजर्स उन्होंने भी बड़ा क्लियर कह दिया कि ये जो है इसको मैं भी रिसेशन नहीं मानूंगी. आपने इसके आगे टेक्निकल वर्ड लगाना तो बेशक लगा दो. उन्होंने इसको लाइट में देने का आगे आपने टेक्निकल वर्ड लगाना तो बेशक लगा दो. लेकिन जो है ये मेरे हिसाब से अभी जो है वो रिसेशन जो है ना नहीं, इसको नहीं मान लेना चाहिए. कुछ बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने इसके अंदर कही और अगर टाइम मिलेगा तो आगे भी कह दूंगा. जी
7: जी बिल्कुल. यहाँ हमारे सुनने वालों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि पीके सबरवाल जी की जैसी एक्सपीरियंस और तजुर्बा आपको नहीं मिल सकता। यहां आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, बस आपको फोन उठा के स्टूडियो को कॉल करना है। स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055। वंस मोर, स्टूडियो नंबर इज 416-593-0055। लाइन्स आर ओपन, वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल एंड सबरवाल जी विल बी विद अस टिल 4:50 PM टुडे। सबरवाल जी, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि आजकल बहुत से यंग कपल्स 2-3 साल से वेट कर रहे हैं कि आज के मार्केट में खरीदें या ना खरीदें, तो आपके अनुसार आज के मार्केट में फर्स्ट टाइम बायर्स की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है या क्या है?
8: आज ना खरीदना ही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये वो लोग जो कह रहे हैं कि अभी भी नहीं हम खरीदेंगे, अगर तो आप नहीं खरीद सकते वो तो डिफरेंट एक चैप्टर हो गया, खरीद नहीं सकते, लेकिन अगर खरीद सकते हैं और अगर नहीं खरीद रहे तो इस बात को आप 3-2 साल के बाद याद करोगे कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ में आई थी जो हमारे हाथ से निकल गई, और वही आपस में दोस्तों से बातें करेंगे, यार उस वक्त मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, उस वक्त मैं सोच रहा था और गिरेगा, ये बाद में दुखी होने वाली बात हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि 26 जुलाई, जिसकी ऑफिशियल मैं अनाउंसमेंट और एड आपके चैनल के थ्रू करूंगा, 26 जुलाई को, जैसे आपको पता है कि हर साल मैं 2-3 सेमिनार करता हूं, इस 26 जुलाई संडे को मैं सारे दिन का एक सेमिनार करूंगा फॉर द फर्स्ट टाइम बायर्स एंड फॉर द इन्वेस्टर्स, और ये ये ये ये फ्री होता है हमेशा, और इसकी इसको रजिस्टर करना पड़ता है 26 जुलाई संडे, जो सुबह से शुरू होता है, सुबह नाश्ते से शुरू होता है, उसके बाद फिर लंच तक चलता है, उसके बाद भी चलता रहता है। ये बड़ी एक नॉलेज वाली बात होगी, बड़े प्रोफेशनल यहाँ पर आएंगे और फर्स्ट टाइम बायर को बताया जाएगा कि आज क्यों, क्यों आज, आज क्यों, क्यों आज, क्यों नहीं कल, क्यों नहीं परसों, क्यों आज, क्योंकि इसके बहुत बड़े कई रीजन है, और प्लस इन्वेस्टर्स के लिए टाइम क्यों अच्छा है, फर्स्ट टाइम बायर के लिए क्यों टाइम अच्छा है। मैं यहाँ पर एक बात और छोटी सी बता दूं कि
7: सबरवाल साहब, एक मिनट आपको अगर मैं रोक टोक सकूं तो, क्योंकि एक कॉलर हमारा थोड़े वक्त से इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सीधे उनके पास चले।
8: जी जी जी,
7: हेलो, आप रेडियो वॉइस पे लाइव है, पीके सबरवाल जी से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
9: जी गुड आफ्टरनून सबरवाल जी।
8: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम क्या है सर?
9: सर मेरा नाम सरदार खान है। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि जो इन्वेंट्री कम हुई है, 10% सेल बढ़ी है, तो ये क्या जनरल पब्लिक की इन्वेंट्री सेल आउट हुई है या ये वो बिल्डर्स ने HST रिबेट गवर्नमेंट ने ऑफर किया है, बिल्डर्स की इन्वेंट्री कम हुई है?
8: दोनों दोनों दोनों है, दोनों है सर, एक नहीं है, दोनों। देखो एक का असर दूसरे पे, दूसरे का असर पहले पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जब ये HST जब का इन्होंने छोड़ दिया तो नेचुरली HST नए मकानों में, पुरानों में तो है नहीं, और जब जब नए मकानों के ऊपर HST हट गई और अप टू $130,000, तो उसकी डिमांड बढ़ी और वो जब इन्वेंटरी निकलेगी, सबसे बड़ा नासूर जो है हमारे हाउसिंग के अंदर इस वक्त बिल्डरों की इन्वेंटरी का था, क्योंकि बिल्डरों की इन्वेंटरी अगर नहीं निकलेगी तो बिल्डर नए घर कैसे बनाएंगे, और ये शॉर्टेज बड़ी जबरदस्त होने वाली है 3 साल बाद। मैंने आपसे पहले भी बात की थी हम लोगों ने यहाँ पर रेडियो स्टेशन में कि ये शॉर्टेज बहुत बड़ा एक नासूर बनने जा रही है। अब क्योंकि एक्टिविटी मार्केट में शुरू हो गई है तो रीसेल के भी अंदर भी जान आ गई है, रीसेल के अंदर भी सेल बढ़नी शुरू हो गई है। सारा डाटा जो है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया था, 13,300 समथिंग इन्वेंट्री घट के रह गई है कॉन्डो की, अपार्टमेंट की, और 5,700 समथिंग रह गई है सिंगल फैमिली होम्स की। जी सरदार खान जी,
9: थैंक यू सर जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया
7: कॉल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार खान साहब। सबरवाल साहब, एक कॉलर हमारा और वेट कर रहे हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। हेलो, आप रेडियो वॉइस पे लाइव हैं, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए, गो अहेड प्लीज।
10: हाँ जी सर, सबरवाल सर, क्वेश्चन था मेरा कि ये जो HST रिबेट का चल रहा था कि जो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं उनकी भी जो है HST रिबेट की बात चल रही थी कि शायद उनको भी मिल जाए, तो उसका क्या डेवलपमेंट है? यदि है तो
8: अभी कुछ नहीं मिल रहा, और लकीली फॉर्चुनेटली आज ही अभी आई एम सो ग्लैड टू से कि आज ही डनफोर्ड साहब से मुलाकात हो रही है हमारी कुछ लोगों की, आज ही हम मिल रहे हैं, इस शो के बाद इमीडिएटली मैंने निकल जाना है, तो शायद आज ही वो बात हो जाए, कोशिश की जा रही है। अब कब रिजल्ट आएगा पता नहीं, क्योंकि ये प्रेशर डाला जा रहा है इनके ऊपर कि उन लोगों ने क्या पाप किया है जिन्होंने 3 साल पहले बुक किया था, आज उनको तो HST देनी पड़ रही है, और जो लोग पहली अप्रैल के बाद बुक कर रहे हैं वो उनको नहीं देनी पड़ रही। तो ये एक बहुत जबरदस्त एक ये कन्फ्लिक्टिंग सा एक डिसीजन है, जिसके लिए देखो आज शायद बात हो जाए, कोशिश तो है, मुलाकात हमारी हमेशा होती रहती है सर जी।
10: थैंक यू,
8: थैंक यू।
7: कॉलर से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज अपना नाम बता दें तो उससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है सबरवाल साहब को। हमेशा हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप स्टूडियो कॉल कर रहे हैं, सबरवाल जी को टेक्स्ट मैसेज भी भेज रहे हैं, तो प्लीज अपना नाम लिखना ना भूलें। जी सबरवाल साहब
8: जी, तो मैं बता रहा था कैरोलिन जो रॉजर्स जो हमारी बैंक ऑफ कनाडा की जो सीनियर डिप्टी गवर्नर है, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी अच्छी फिगर आई है, दिल खुश होता है बता के कि ये जो है उन्होंने कहा कि वी डोंट हैव ए क्रिस्टल बॉल, ये चीज किसी वक्त भी चेंज हो जाएगी, कल भी चेंज हो सकती है, जब ये जो वर्ल्ड जो टर्मवाइल से हुआ पड़ा है उसका कोई फैसला होना शुरू हो जाएगा तो फ्यूल प्राइजेस कैन ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, उन्होंने कहा गिर भी सकते हैं इमीडिएटली जैसे ये रास्ते खुलेंगे तो इसीलिए अभी इसको टेक्निकल रिसेशन हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम थोड़ा और इसको देखेंगे, क्योंकि ये टेम्परेरी है, ग्रोसरी का प्राइस बढ़ गए, फ्यूल की वजह से हर चीज बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, ग्रोसरी बढ़ गई, तो वो इसको हम अभी मापदंड नहीं मानेंगे, ये उनका कहना था। और प्लस साथ में मैं ये भी और बता दूं इसके साथ साथ, अगर मैं जोड़ लूं कि भाई इंटरेस्टेड को भी अगर मैं जोड़ लूं तो इसके साथ
7: जी।
8: तो लोग तो ये कहेंगे जी इस हिसाब से तो इंटरेस्टेड कम हो जाना चाहिए, पर जैसे मैंने कहा इकोनॉमिस्ट का मानना है, हम कहां बोल रहे थे कि इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते रुक गए, अब बात हो रही है ये फिगर देखिए फिर घट जाना चाहिए जब इतना बड़ा बुरा हाल हो रहा, तो लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि हम इसको मान ही नहीं रहे रिसेशन इस वक्त, तो इसीलिए अभी इकोनॉमिस्ट का भी कहना है, उनका भी कहना है कि लगता है, उनकी बातों से लग रहा था मेरे को कि शायद 2026 तक कोई इंटरेस्ट पे हाथ नहीं लगाया जाएगा। 10 जून को भी जो भी आ रहा है डिक्लेयर कर रहे हैं, मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट वही का वही रहेगा जी।
7: ओके सो ओके एंड सबरवाल साहब एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। हेलो रेडियो वॉइस पर आप लाइव हैं, सबरवाल साहब से अपना क्वेश्चन लाइव पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
11: जी सर, पूछना है इमरान नाम है मेरा, पूछना ये था जैसे अभी
8: आपकी आवाज चल रही है, क्या बताया आपने नाम?
11: इमरान नाम है, 4.25
8: इमरान जी, इमरान जी बताइए सर जी।
11: 4.25 लाख के जो कॉन्डो मिल रहे हैं 1 बेडरूम के, तो अब वो मैं देखे बहुत छोटे छोटे हैं, क्या वो वर्क करते हैं इसमें?
8: नहीं सर, 4 लाख इसीलिए तो है क्योंकि छोटे हैं, देखो सीधी बात है, अब अगर मान लीजिए आपने रहने के लिए लेना है तो देखना पड़ेगा आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो ये उतने छोटे नहीं है जितने छोटे हम पहले दुखी थे 300-300 स्क्वायर फीट के, नहीं ये बड़े हैं इस वक्त, आपको 500 स्क्वायर फीट का भी मिल जाएगा, और इतने जबरदस्त पैकेज आए हैं, 2 बिल्डरों से मैंने पिछले 3 दिन के अंदर डील करी है, 2 बिल्डरों के साथ, और उनके 7-8 प्रोजेक्ट पर डील करी है, बड़ी जबरदस्त डील करी है, आपको क्लोजिंग भी 4 साल के बाद देंगे और आपको रेंट की गारंटी देंगे कि जिसमें आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव आएगी 2 साल। आप बताइए कैसे गलत हो सकते हैं, 4 और 2 6 साल हो गए, 6 साल के बाद ही क्या मार्केट डिग नहीं होगी, मैं तो अभी 2 साल की बात कर रहा हूँ, और अलग अलग इंसेंटिव कैश बैक बहुत कुछ है, प्राइस लिस्ट अपने पास ले आइए और उसके ऊपर मैं कितने कम करा के दिखा सकता हूँ, आप देख लीजिएगा दंग रह जाएंगे आप। इमरान जी मुझे टैक्स

0: मैंने इसलिए इस वक्त क्यों क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टियां खरीद ली इस वक्त, तंग होने के बावजूद मैंने खरीद ली बहुत सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तंगी जो है ना, मैं बताऊं मेरी लाइफ में ये 8वां रिसेशन है और हर रिसेशन के ऊपर मेरा पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है, क्योंकि मैंने बेचने की बजाय उल्टा खरीदना शुरू कर दिया। और मैं सबको कहता हूँ अगर आप खरीद नहीं सकते तो एटलीस्ट बेचो मत, रोक लो और आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा। देखो मैं एक कहावत बड़ी मशहूर है, एवरीथिंग विल चेंज वन डे, सो एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। सच्चाई को समझिए और चलते रहिए, रोते रहना कि अब क्या होगा नो, वक्त के साथ चलते रहो और कदम बढ़ा के चलते रहो। सबके साथ आप देखना, वक्त के साथ हम क्या करते हैं गलती कि वक्त के पीछे पीछे चलते हैं और मार खा जाते हैं। अगर वक्त के आगे नहीं चल सकते तो एटलीस्ट वक्त के साथ साथ तो चलो। जी
1: सर, एक चीज और पूछते हैं कि जैसे हम कॉन्डो लेते हैं तो लगे उसकी जो मेंटेनेंस फीस होती है वो तकरीबन वो भी 1.5-1.5 लाख या 1 लाख डॉलर की जो मॉर्गेज आती है तकरीबन उतनी आ जाती है वो।
0: समझा नहीं बात, मैं बड़ी क्लियर बात करता हूँ, अगर अगर इजाजत दें अमिताभ जी, अगर कोई और कॉल नहीं है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं उनको जरा।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: सर, मेरी बात सुनिए, मैं 500 स्क्वायर फीट के कॉन्डो की चलो बात करता हूँ आपके साथ, उसकी मेंटेनेंस फीस महीने की है लगभग 300 से लेकर $325। अब आपको मैं बताता हूँ, इस कॉमन एलिमेंट सारे मेंटेन है, वॉकवे ये वो, आपका सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ है, आपको सब कुछ मिला हुआ है, स्विमिंग पूल है, हेल्थ क्लब है, सब कुछ है। आप किसी हेल्थ क्लब को ज्वाइन कर लेते हो तो सर $125 एक बंदे की फीस आती है, ये पूरा परिवार आप इसको फ्री यूज कर रहे हो 5-स्टार होटल को, नंबर वन। नंबर टू, इंश्योरेंस कवर्ड है, आप आज इंश्योरेंस कराओ तो आपकी इंश्योरेंस 80 से लेकर $100 लगती है, ये इंश्योरेंस इसी के अंदर कवर्ड है।
1: अच्छा,
0: आपके पास 4 नौकर बैठे हुए हैं, बल्कि पूरी बिल्डिंग में तो आपके पास 40 नौकर बैठे हुए हैं काम करने वाले, और आप 5-स्टार होटल में रह रहे हो, और $300 महीने का मतलब होता है $10 रोज के, ये भी चुभ रहे हैं आपको।
1: हाँ ये तो ज्यादा नहीं है, सही बात है आपकी, ये ज्यादा नहीं है, ठीक है।
0: ठीक है सर।
1: जी
0: देखो, मैं खुद अभी कॉन्डो में मूव कर गया हूँ, मैं खुद मूव कर गया हूँ कॉन्डो में, जितनी सिक्योरिटी स्पेशली इस एज के अंदर कॉन्डो अपार्टमेंट के अंदर है वो डिटैच घरों में बड़े घरों में नहीं है। मैं बहुत सिक्योर हूँ, यहाँ पर वर्दी पहन के बैठे हुए सारे, सुबह शाम दिखने वाले बैठे हैं, एक मिनट में कॉल करो, कोई गार्बेज का चक्कर नहीं है, कोई घास काटने का चक्कर नहीं है, कोई स्नो उठाने का चक्कर नहीं है, सारा कुछ तो कवर हो गया इसके अंदर। आप कल को स्नो उठाने के लिए और घास काटने के लिए रख दो, वही आपसे आपकी एवरेज महीने की $100 पड़ जाती है, साल की ये $1200 पड़ जाती है एवरेज, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सस्ता पड़ेगा आपको।
1: सही सही आपका थैंक यू।
2: बहुत बढ़िया सबरवाल साहब, कैसे माइक्रो लेवल पे जाके आपने अच्छे से समझा दिया हाउ इट मेक्स सेंस टू गो फॉर द
0: 90% से ज्यादा प्रॉपर्टीज मेरे पास कॉन्डो अपार्टमेंट्स हैं, और इन कॉन्डो अपार्टमेंट्स ने ही मुझे कमा कर दिया है सबसे ज्यादा। मैं कैसे गलत बोल दूं मुझे बताइए आप। हम वहां वो इंसान जो मार खा लेता है वो फिर ब्लेम कर देता है, वो मार क्यों खा लेता है क्योंकि वो गलत टाइम पे बेच देता है, जब नहीं बेचना चाहिए यही है वो बेच देता है। खरीदने में भी गलती 5-7 साल में एक बार हो जाती है, जैसे आज से लोगों ने 4-5 साल पहले लिया, किसी को नहीं पता था कि ये मार पड़ेगी, लेकिन ये वक्त है उनका रोकने का, बजाय रोकने के अब वो बेच रहे हैं पैनिक होकर, और इन्वेस्टर कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे इन्वेस्टर मैंने सुबह के शो में कहा जिसने बोला पीके यहाँ पर 5 मिलियन पड़े हैं, जो डिस्ट्रेस सेल वाले उठा लो जितने काउंट उठाने उठा लो। अब बताइए आप, लोग कमा रहे हैं ना, हम लोग पैनिक होकर बेच देते हैं, यहाँ पर मार खा जाते हैं, हम लोग सही वक्त पर सही कदम नहीं उठा पाते और ब्लेम फिर हम दे देते हैं सबको, लोगों को।
2: मतलब भेड़ चाल वाला थोड़ा सा मामला है।
0: बिल्कुल।
2: जी ठीक है, आगे बढ़ते हुए सबरवाल साहब, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि हमारी कम्युनिटी में ज्वाइंट फैमिली लिविंग का ट्रेंड थोड़ा बढ़ रहा है, तो क्या आपको मल्टी जनरेशनल होम्स की डिमांड में ग्रोथ नजर आ रही है?
0: बिल्कुल आ रही है, और ये कहते हैं ना कभी समय बड़ा बलवान, ये समय ने फैमिलियों को फिर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मेरे अपने जानने वाले कई परिवारों के अंदर उनके बच्चे जो डाउनटाउन में रहते थे वो वापिस आ गए अपने पेरेंट्स के पास। देखो कई बार क्या होता है, कोई चीज अच्छे के लिए हो जाती है, जब अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो पेरेंट्स के पास आ गए, वहां पर पेरेंट्स बड़े खुश, बच्चे हमारे पास आ गए, और हालांकि कई जगह पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बच्चों को, जैसे मैं भी उनमें

0: एक हूँ, तो मैं कह रहा था जी नहीं, मेरे को बच्चों के साथ अभी नहीं रहना। मैंने उनको पाल पोस के बड़ा कर दिया, दे आर सेटल्ड, उनके अपने बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, मैंने तो अपनी बीवी के साथ अकेले मौज करनी है, मेरी ये सोच है। लेकिन अभी जब मैंने अपना घर बेचा, वैसे ही मेरे को कुछ महीनों के लिए, 4-5 महीने के लिए अपने बेटे के यहाँ रहने का मौका मिला।
1: जी
0: क्या
1: जी
0: मजा आया हमारा के, जब सवेरे मेरे ग्रैंड किड दादा दादी करके आके गोदी में बैठ जाते हैं, और वो अगर मालूम मेरा गिलास भी पानी का फेंक देते हैं या मेरा ऐनक भी मेरी तोड़ देते हैं, तो मुझे दुखी नहीं होता, मुझे लगता है बड़ा मजा आ रहा है। तो वो रहना सहना ही अलग है, परिवार इकट्ठे हो गए, और क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए पेरेंट्स के साथ मिलने का एक रिवाज सा शुरू हो गया। और ये ट्रेंड आई थिंक ये हमारे पुराने संस्कारों को वापिस लेके आ रहा है इनडायरेक्टली।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड सबरवाल साहब, कुछ इन्वेस्टर्स अब अल्बर्टा और कैलगरी मार्केट्स की तरफ देख रहे हैं। क्या जीटीए रियल एस्टेट अब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे स्ट्रांग ऑप्शन है, या वी नीड टू लुक एट अदर प्लेसेस इन कैनेडा एज वेल? आपका क्या मानना है?
0: आपने जो खबर दी ना सर, कर देख रहे हैं, तो जिसने आपको क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन 1 साल पुराना है। आज अल्बर्टा कैलगरी से लोग वापस इधर की तरफ देख रहे हैं। अब तक वहां जा रहे थे
1: जी
0: और अब क्योंकि वहां पर भी आग लग गई प्राइसेस की, और यहां पर प्राइस ज्यादा नीचे गिरा है, तो कहते हैं कि वहां जाके क्यों है। और अब जो है अल्बर्टा स्ट्रांग इकोनॉमी इसलिए होती जा रही है क्योंकि गैस का चक्कर है, और वहां पर जो है आपको पता है पेट्रोलियम का भंडार है, तो ये टेम्परेरी है। आज आपको अल्बर्टा कैलगरी के प्राइस के ऊपर जीटीए से 100 किलोमीटर बाहर चले जाओ, आपको मिल जाते हैं प्रॉपर्टियां, मिल जाती हैं 50-60-70 किलोमीटर आगे चले जाओ, तो लोग तो इस वक्त थोड़ा सा वापिस की तरफ आ रहे हैं, मैंने अभी जो रिसेंटली नोट किया है।
1: जी, और एक कारण ये भी हो सकता है कि अल्बर्टा में जो रेफरेंडम की बात चल रही है, दोनों पॉलिटिकल गेम्स जो चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स तो ऐसी खबरों से तो फिर होशियार ही रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को।
0: बिल्कुल दूर रहते हैं। और चलते चलते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी अगर और भी किसी को समझना है, तो मेरी अभी ब्रॉडकास्ट हुई थी, हमारे लिंटारा के चेयरमैन जो है मार्क मडलबम, उनके साथ मेरी अभी ब्रॉडकास्ट हुई थी, और मेरे बेटे के सौरभ सबरवाल ने भी की थी, 10-15 मिनट की दोनों की, 10 मिनट मेरी उनकी। वो मेरे इंस्टाग्राम में छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा है सब कुछ, मेरे इंस्टाग्राम पीके सबरवाल ऑफिशियल, पीके सबरवाल ऑफिशियल, वहां जाइए और देखिए इंटरव्यू में क्या उन्होंने बोला और क्या मैंने बोला। कई लोगों को फैक्ट समझ आया है, ये सच्चाई कई लोगों को पता चलेगी आज क्या हो रहा और पहले क्या हुआ था। पीके सबरवाल ऑफिशियल, वहां जाइए और देखिए चेयरमैन के साथ मेरी क्या बात हुई है, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया, या उन्होंने क्या क्वेश्चन किया और मैंने क्या जवाब दिया, उन्होंने क्या क्वेश्चन किया और मेरे बेटे सौरभ सबरवाल ने क्या जवाब दिया। यू विल सी लॉट मेनी थिंग्स। ये छोटे छोटे वीडियो बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम में आ रहे हैं, आप जरा उसको वॉच करिए, पीके सबरवाल ऑफिशियल। जी थैंक यू वेरी मच अपना अमिताभ जी।
1: जी सबरवाल साहब, मैं बस आपसे, अगर आपके पास 2 मिनट है तो आपसे एक और मुद्दे पे बात करना चाहता था, रियल एस्टेट से जुड़ा नहीं है ये। आई डोंट नो अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं कि नहीं, तो अगर आप नहीं भी करते लेकिन आपने फिर भी एक 15 साल के बच्चे के बारे में सुना होगा जो आजकल क्रिकेट की दुनिया में जिसने आग लगा रखी है,
0: सूर्यवंशी। सूर्यवंशी
1: आप, हाँ जी हाँ जी,
0: कि मैं क्रिकेट लवर तो हूं ही हूं और मैं खेलता भी था, लेकिन
1: अच्छा,
0: मैंने उस दिन अपनी वाइफ को बोला है कि मेरा अब जो मैं इंडिया जाऊंगा, सबसे पहला मेरा टारगेट होगा सूर्यवंशी को मैं प्यार करके आऊंगा।
1: अरे वाह, अरे वाह,
0: ये मैं मिलके आऊंगा उसको, बच्चे को देखो। अच्छा। वो अब हेल्थ में भी, इंडियन हेल्थ के ऊपर वो ब्रांड एम्बेसडर उसको बना दिया शायद, ठीक है
1: जी।
0: तो क्या बात है, देखो 15 साल के बच्चे ने तहलका मचा के रख दिया, और ही डिजर्व्स एप्रिसिएशन। और मैंने टारगेट बनाया हुआ कि मैं इसको जाके अभी मिलके आना है जरूर जब मैं जाऊंगा।
1: और मैं एक बात बताऊं सबरवाल साहब, उसका गेम तो है ही तबाही वाला, मतलब कितने जितने भी अवार्ड्स आईपीएल में हो सकते थे उस 15 साल के बच्चे ने जीत लिए, लेकिन जो मेरे को उसकी सबसे बढ़िया जो चीज लगी, एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल अग्री विद मी, कि उसकी जो हम्बलनेस और उसकी जो अपब्रिंगिंग है। आप मैच, मैं काफी क्लोजली फॉलो कर रहा था आईपीएल के मैचेस, तो मैच से पहले जितने भी अच्छे बड़े हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हुए हैं, जैसे सुनील गावस्कर जी, इरफान खान, वो आके अपनी प्रैक्टिस छोड़ के पहले आके उनके पैर छू के आशीर्वाद लेता है।
0: वही दिल उस चीज ने इतना इमोशनल किया कि वो आके सबसे पहले पैर छू रहा है और पैर छू के उनसे आशीर्वाद ले रहा है, और जो बड़ा सीनियर प्लेयर और सीनियर बंदा आता है उसके पहले पैर छूता है, हम्बलनेस ये होती है। मेरा खुद का, मेरा अपना ग्रैंडसन यहाँ का पैदा हुआ, यहाँ का बड़ा है, जब किसी फंक्शन वगैरह में मेरे साथ जाता है तो बुजुर्गों के पैर छूता है सबसे पहले, हमने इसको नहीं सिखाया, पैर छूता है उसको, जो मेरे फ्रेंड्स जितना प्यार करते हैं कि देखो ये चीज कितनी चीज बच्चे के अंदर आई है, यहाँ का पढ़ा लिखा बच्चा, यहाँ का पैदा हुआ बच्चा, और यहाँ पर अब जब हमारे साथ मिलता है तो बुजुर्गों को गले मिलता है और पैर छूता है, ये चीज जो है संस्कार होने बहुत जरूरी है। और इस बच्चे ने, सूर्यवंशी ने, इस बच्चे ने हमें जीत लिया, उसने
1: पूरी तरह से, और
0: दुनिया को क्या जीता, उसने तो हमें भी जीत लिया
1: पूरी तरह से। और इस और ऐसी सब जब चीजें होती हैं, संस्कार हम देखते हैं, तो हमें ये भी कॉन्फिडेंस होता है कि ये बच्चा कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, ये बिगड़ेगा नहीं, ये ग्राउंडेड ही रहेगा, बिकॉज इसके संस्कार ही ऐसे हैं कि ये कभी सक्सेस इसके सर पे नहीं चढ़ेगा।
0: उसकी शक्ल बता रही है, उसकी शक्ल बता रही है हम्बलनेस जो है, उसकी शक्ल बता रही है कि वो बच्चा कितना हम्बल, और ये बिगड़ने वाले बच्चों में से नहीं है, वो उसके संस्कार इतने पक्के उसके माँ बाप ने और हालात ने उसको दे दिए कि वो अब उसमें अडिग रहेगा, मुझे लगता नहीं कि वहां से वो इधर उधर ही लेगा।
1: हम सबकी तो कड़ी नजर रहेगी, और मतलब हमें खुशियां देते रहे। हम लोग बहुत लकी हैं कि इस युग में पैदा हुए हैं कि हमने सुनील गावस्कर भी देख लिए, सचिन तेंदुलकर भी देख लिए, विराट कोहली भी देख लिए, जसप्रीत बुमराह देख लिए, और अब हम वेट कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी
0: मिलने का मौका मिला। मैं तीनों जनरेशन का हूँ आदमी, जब मैं यंग था तो मैं गावस्कर को भी मिल चुका था, बड़ा अच्छा लगा था, मैं गावस्कर को बड़ा बहुत ज्यादा उसको चाहता था, और कई साल पहले जब तेंदुलकर छोटा सा बच्चा आया था 17-18 साल का, तब उसको भी मिलने का मौका मिला था, मुझे बहुत इंप्रेस किया था, और अब जो है ये सूर्यवंशी, इसको मैंने जाके जरूर मिलना है।
1: चलिए, वी विश हिम ऑल द बेस्ट सबरवाल साहब, और सबरवाल साहब से हमारे लिसनर्स अगले वेंसडे फिर से जुड़ सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो आप उनसे पूछ सकते हैं। सबरवाल जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगले वेंसडे इसी टाइम पे आपसे फिर से मुलाकात होगी, बहुत बहुत
0: शुक्रिया।
1: चलिए चलते हैं सीधे एक ब्रेक की ओर।
2: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545।
3: हाँ जी महेंद्र भाइयों, ये वॉइस और हम में आपके दोस्त जतीन, रॉजर्स की बेहतरीन डील्स आपने ली, वकार जी से कांटेक्ट कीजिएगा। वकार जी है रॉजर्स एम्प्लॉई और आपके सिस्टम में भी एक्सेस है, इसलिए आपको देते हैं सुपर डुपर ही डील्स। जरूर डायल कीजिएगा 647-864-8000, 647-864-8000। सीधे चलते हैं वकार जी के पास। वकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज रॉजर्स की बेहतरीन डील्स के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, और आखिर में आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी जरूर दीजिएगा। ओवर टू वकार खान जी।
4: थैंक यू सो मच जतिन भाई, आपको, तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जतिन भाई, रॉजर्स की बहुत अच्छी ऑफर आई हुई है, बहुत सारी प्रमोशंस हैं, बंडल ऑफर्स हैं, बहुत ही स्पेशल प्राइस के साथ हैं, इसमें पैकेज है, टीवी मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, इंटरनेट है 2000 की स्पीड का सुपर फास्ट, फोन में अमेरिका कनाडा सारा फ्री है, 9:30 मिनट्स हर महीने इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड के, आप डायरेक्ट बैक होम कॉल करें, बहुत ही स्पेशल ऑफर है। अगर आपको सिर्फ इंटरनेट लेना है तो 500 की स्पीड का इंटरनेट है, 1500 और 2000 की स्पीड के एक्सफिनिटी इंटरनेट, लेटेस्ट मॉडम, अनलिमिटेड डाउनलोड के साथ बहुत चीप रेट में मिल जाएंगे। रॉजर्स के सेल फोन्स के भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, अनलिमिटेड कैनेडा वाइड कॉलिंग है, अनलिमिटेड यूएस कॉलिंग है, डेटा भी अनलिमिटेड है, और अगर आपको डिवाइस लेनी है तो आईफोन है, सैमसंग है, बहुत अमेजिंग रेट पे ये डिवाइस और प्लान इस वक्त अवेलेबल है, प्लीज कॉल कीजिए, इस वक्त बहुत अच्छी ऑफर्स है, बहुत सारे प्रमोशंस और डिस्काउंट्स है, स्पेशली इंटरनेट की बहुत ही चीप प्राइस पे ऑफर है, जरूर एक बार कॉल करें, नंबर है मेरा 647-864-8000, 647-864-8000। मैं रॉजर्स कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ, 18 साल से रॉजर्स के साथ हूँ, मुझे रॉजर्स के सिस्टम में एक्सेस है, आपके एड्रेस और अकाउंट चेक करके बेस्ट ऑफर दूंगा, नंबर अगेन 647-864-8000, 647-864-8000।
3: वंडरफुल वकार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिंदर भाइयों, जरूर कॉल करके बात कीजिएगा वकार जी से, 647-864-8000, 864-8000, यही डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

Until we meet again on the day जहाँ दिन तो वैसे एक ही है, but looks like उसकी intent जो है ना, वो भी same सी है. A healthier life for each one of us. पर तरीके, वजह, बहाने, वो तीन तीन अलग अलग हैं. जैसे कि एक ग्लोबल रनिंग डे है, दूसरा वर्ल्ड बाइसिकल डे है और तीसरा क्लीन एयर डे है. तीनों है टुडे और तीनों एक ही लक्ष्य को टारगेट करते हुए होते हैं, है ना, जहां आवर हेल्थ एंड क्लीन एयर गोज हैंड इन हैंड. सो ऑन दिस साइकिल चलाओ या दौड़ लगाओ, पर हेल्दियर लाइफस्टाइल जरूर अपनाओ. एंड यस, क्लीनर एयर वो पाओ वाली नोट. दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर सिंग. वही जो ओपरा विनफ्री ने कहा था. पूछे क्या उन्होंने कहा था? रनिंग इज द ग्रेटेस्ट मेटाफर फॉर लाइफ. पूछे क्यों? बिकॉज यू गेट आउट ऑफ इट व्हाट यू पुट इनटू इट. बाकी जब भागने की बात आती है ना, तो मुझे लगता है कि कई बार सड़क पर दौड़ने के अलावा हम जिंदगी में भी ना बस भाग ही रहे होते हैं, आनन फानन यहाँ वहाँ, वर्क पर काम की रेस, स्कूल में मार्क्स की रेस, रिलेटिव्स के बीच अच्छा दिखने की रेस, नहीं तो कभी पढ़ाई से, कभी जिम्मेदारियों से, कभी झगड़े मनमुटाव से, कभी पास्ट से, कभी अपनों से, और कभी इवन अपने खुद से भाग ही तो रहे होते हैं, नहीं? सो सड़क पर भागे या जिंदगी में, मेक श्योर जिंदगी से ना भागे. And yes, don't forget to look for those signs and signals.

अच्छा ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाएं, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माई रियल्टो के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल्टो। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 4168437600।
0: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: गेट ऑन योर फीट विद पेपी नुक्कड़ बीट्स।

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Fresh Breeze New Release on CMR at 5 p.m. राइट फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर आप हैं स्वाति और पायस्विनी के साथ एंड टाइम है फ्रेश ब्रीज न्यू रिलीज का। तो गाना जो हमने आज चुना है इट्स फ्रॉम द अपकमिंग सीक्वल ऑफ द एक्शन कॉमेडी फिल्म वेलकम। उसका जो सीक्वल आ रहा है वेलकम टू द जंगल, उसका है। तो इस बार ये आपका स्वागत कर रहे हैं जंगल में। काफी आर्टिस्ट इसमें सेम है तो काफी सारे नए, एक्चुअली काफी सारे एडिशनल आर्टिस्ट हैं, नए तो नहीं कहूंगी एडिशनल आर्टिस्ट हैं। कुछ जोड़ियां ऐसी हैं जो आपने हमेशा देखी हैं, चेरिश करी हैं, वो इस वेलकम वाले सीक्वल में आपको दिखेंगी। कहानी है बेसिकली दो पुलिस ऑफिसर्स की जो एक क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, और इसमें केओटिक कॉमेडिक टर्न तब आता है जब एक पुलिस ऑफिसर को पता चलता है, जो कि अक्षय कुमार बने हैं, कि उस क्रिमिनल से तो भाई उनका कनेक्शन पुराना है, वो भी पर्सनल। फिल्म में 30 वेल नोन एक्टर्स हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं सारी लिस्ट यहाँ नहीं पढ़ने वाली हूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं। हालांकि ये जो गाना मैं प्ले कर रही हूँ ना, इसको अगर वीडियो में आप देखेंगे तो आपको अधिकतर एक्टर्स सारे दिख ही जाएंगे कौन कौन से हैं। उदय मजनू की जो ओरिजिनल फिल्म की जोड़ी थी नाना और अनिल कपूर वाली, इट इज रिप्लेस्ड बाय मुन्ना एंड सर्किट की जोड़ी एज उदय एंड मजनू इन दिस सीक्वल। गाना जो मैं फिल्म से सुनवाने वाली हूँ टाइटल ट्रैक है विद ऑल द स्टार्स इन इट, हाई एनर्जी ट्रैक है, बहुत सारी धुनें आपको इसमें मिक्स मिलेंगी विद ओरिजिनल वेलकम टाइटल सॉन्ग की धुन भी रिक्रिएट किया गया है, तो कुछ नया डाला है, लिरिक्स सहित कुछ पुराना उठाया है। और वो हाइलाइटेड पंच लाइन जो थी ना ओरिजिनल फिल्म में, आलू ले लो कांदा ले लो, जो कि नाना पाटेकर फिल्म में एक्टिंग करते हुए शूट करते हुए बेचते हैं और बोलते हैं, रिमेम्बर, वो इस गाने में उन्होंने कहीं फिट करी है और मजेदार लग रही है। ओवरऑल इट्स ए कलरफुल नॉस्टैल्जिक मसाला एंटरटेनर टाइप ऑफ सॉन्ग। शान, प्रिया और विक्रम की आवाज है, म्यूजिक विक्रम का ही है इसमें रिक्रिएटेड, और जो नए वाले लिरिक्स हैं वो मेघा बाली के हैं। आप सुनकर हमें बताएं आपको कैसा लगा ये वाला वर्जन। स्टूडियो का नंबर 4165930055।

अच्छा, अब तक आपके हाथ में वो लूनी लगी क्या जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 को सेलिब्रेट करते हुए रिसेंटली लॉन्च करी गई थी? आई गेस इट्स गोइंग टू बी अ कलेक्टेबल फॉर फीफा और सॉकर फैंस मेरे ख्याल से, एंड ऑफ कोर्स फॉर अ प्राउड कैनेडियन एज वेल. ओनली 3 मिलियन ये लिमिटेड एडिशन के अंतर्गत बनी है जो चेंज के बदले आपके हाथों में जल्दी ही आ सकती हैं. और इसके 2 वर्जन्स बने हैं, एक रेड ऑरेंज व्हाइट कलर का और एक रंगहीन बोले तो नो कलर्स वाला. बाकी दोनों में सेम टू सेम मेपल लीफ है, मूविंग सॉकर बॉल है. टोरंटो वैंकूवर एज दो होस्ट सिटीज आपको मिलेंगे इन डिजाइन विद 2026 ईयर मार्क्ड एज वेल. अब मैं ये सोच रही थी कि क्या करेंगे आप जेब में आते ही कि क्या चलेगा इसका पर जादू और लस्सी चाट खाने के लिए दिल हो जाएगा बेकाबू कि चलो खर्च कर डालो या रखोगे इसे संभाल कर तुम एज पर लकी टोकन और एज ए प्राउड कैनेडियन, या खर्च करके बोल ही दोगे कि क्या करें भाई इकोनॉमी ही नहीं माय वॉलेट इज आल्सो ब्रोकन. शेयर शेयर.

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 PM, your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. अब फायदा उठाएं जून के हॉट आउट रेट्स का विद अमित खुराना. 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%. साथ ही मिले $5,100 तक का हॉट आउट कैश बैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500. है ना आइसिंग ऑन द टॉप. कॉल अमित खुराना एट 647-341-2785, 647-341-2785, और विजिट amitkhurana.com.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.

0: What a kick! It's snooker, hit after hit.
1: Hey dear Miss May, today I'm going to review the taza tareen released trailer of June 19th ko release hone wali rom-com sequel Cocktail 2. Ab ise sequel kyun kaha ja raha hai, rather spiritual sequel, kyunki मैं सोच रही थी ना तो इस स्टोरी से कोई कनेक्शन है पुरानी, ना कैरेक्टर्स डिफरेंट है, मतलब उनसे कोई कनेक्शन है. अब वजह ये है क्योंकि डीएनए या वाइब कह लें सेम है, सेम क्रिएटिव माइंड्स हैं. डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिनेश और होमी, प्रीतम एज म्यूजिक डायरेक्टर. और वाइब की बात करें तो अर्बन ग्लॉसी इमोशनल लव ट्रायंगल, दो लड़कियां एक लड़का, वो सब वैसे ही है. दोस्ती प्यार सिचुएशनशिप का कैओस, वो वैसे ही है. और इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूटिंग खूबसूरत सी, इस बार इटली सिसिली में बहुत सारी हैं, तो अच्छी अच्छी जगह आपको देखने को मिलेंगी, वो सेम है. जेजी और उनकी कंफ्यूज्ड इमोशनल रिलेशनशिप स्टेटस पर ही फोकस रहेगी विद एन अनकन्वेंशनल ट्विस्ट. अब वो क्या है, वो ना तो ट्रेलर रिवील कर रहा है ट्विस्ट के बारे में, क्लाइमेक्स के बारे में, ना कोई और. हालांकि अफवाह ये जरूर है कि दो लड़कियों वाला रोमांस इसमें आपको देखने को मिल सकता है क्लाइमेक्स में. हालांकि जो इसके प्रोड्यूसर हैं दिनेश विजन, वो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को. सो लेट्स सी कि क्या होता है. ट्रेलर ओवरऑल इज ट्राइंग टू बी हैप्पी एंड गो लकी वाला वाइब देता हुआ विथ फ्यू इंटरेस्टिंग पंचेस इन डायलॉग्स. जैसे कि प्यार उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं. एंड आई कुड एक्चुअली रिलेट टू दिस, लाइक यू नो प्यार जब दोस्ती बन जाए और दोस्ती प्यार, तो उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि नाउ इट्स अ सिचुएशन. तो भाई इन्हें कोई बताए, चारक बाबा बहुत पहले बता गए हैं, कुछ कुछ बताए मैं कि प्यार ही दोस्ती है. एंड देन दिस डायलॉग जो ट्रेलर में था कि सब अपनी अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, और एक्सपायरी के बाद तो भाई दवा भी जहर बन जाती है. तो कुछ डायलॉग्स एक्चुअली अच्छे हैं. ओवरऑल फील ऑफ द ट्रेलर इज वेरी विटी, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को हाईलाइट करती हुई, जहां कमिटमेंट में एक फोबिया होता है ना, और प्यार और दोस्ती के नाम पर कंफ्यूजन, वो है. शाहिद, रश्मिका और कृति अच्छे लग रहे हैं, ग्लैमरस एक्टर्स तो अच्छे हैं ही, पर समथिंग इज मिसिंग जब मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ, मुझे लगा. म्यूजिक ओवरऑल ठीक है, कॉकटेल वन का बहुत अच्छा था. तुम ही हो बंदे सखा तुम्हें, जिसका बहुत फेमस ट्रैक था वन का, वो इसमें भी डाल दिया गया है रिक्रिएट करके, ये ट्रेलर में टीज करके उन्होंने बता दिया है. ओरिजिनल स्क्रिप्ट इम्तियाज की थी, इस बार प्यार के पंचनामा वाले लव रंजन की है, लिखते वो भी अच्छा है, तो होपफुली कुछ अच्छा किया होगा उन्होंने. ओवरऑल ट्रेलर से मुझे लग रहा है कि तुम देखी जा सकती है फॉर श्योर, बट यस इट मे नॉट बी एज गुड एज कॉकटेल वन. वो नशा शायद वो ना हो.

0: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन, 6477602779, 6477602779।
1: वेल, हेल्दी लाइफ का सफर हम जब चाहें तब शुरू कर सकते हैं और उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस शुरू करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जिस तरह की लाइफ स्टाइल में हम जी रहे होते हैं ना, नाउ एंड देन हम एक कदम आगे रखते हैं उस तरफ तो दो कदम पीछे भी आ जाते हैं। कई बार बिजी स्केड्यूल होता है, कई बार कुछ और रीज़न होता है, पर निरंतर उस हेल्दी लाइफ की तरफ हम चलें ये अक्सर नहीं हो पाता। और ऐसे में कोई हमारा साथ दे विद ट्रीटमेंट्स, विद राइट गाइडेंस, वो हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो बस आप काव्या होम्यो केयर पे कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे जो मीता जी हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, बहुत ही उम्दा होम्योपैथ हैं। इतनी सारी लोग कम्युनिटी में उनके पास जब ट्रीटमेंट के लिए जाते रहते हैं तो आप देखेंगे इतने रेफरेंसेस उनकी कम्युनिटी में अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि जब अच्छा काम होता है तो लोग अपने आप ही आपकी तारीफें करते हैं। तो आप भी जाके देखें, लोग ऐसे ही तारीफें नहीं करते हैं उनकी। होम्योपैथी का ट्रीटमेंट वैसे भी कहते हैं बहुत बहुत सेफ होता है, और ऐसे में एक्सपीरियंस होम्योपैथ जब होता है तो बात कमाल की हो जाती है ना। अब बीमारियां हम सबके घरों में लगी रहती हैं, छोटी बड़ी, बच्चों को, बुजुर्गों को, तो उसके लिए एक अगर जो होम्योपैथ हमारा पक्का बन जाए ना कि हमें तो वहाँ जाना है, तो उन्हें हमारे घर की सारी चीज़ें पता होती हैं। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि काव्या होम्योकेयर आपको बहुत सुकून देगा व्हेन यू गेट कनेक्टेड विद द होम्योपैथ देयर। और वहाँ पे जो सर्विसेज आपको मिलती हैं, आजकल तो सर्विसेज भी बढ़ गई हैं, वहाँ पर मसाज की भी हैं एंड सर्विसेज इस सेंस में भी बढ़ी हुई हैं कि वो आपकी मदद करते हैं कि दवाइयाँ आपके घर के दरवाजे तक पहुँचाएं अगर आप नहीं आ सकते। वो ऐसे भी मदद करते हैं आपकी कि आप अगर क्लिनिक तक नहीं आ पा रहे तो आप फोन पर भी कंसल्टेशन लें, पर अपनी हेल्दी लाइफ को इग्नोर ना करें उसके लिए जो भी स्टेप्स आपको लेने हैं। तो वह मीता जी का नंबर रहता है 6477602779, 6477602779। यू कैन ऑल्सो विजिट kavyahomeocare.com। नंबर मुझसे भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगा, पर एक बार बात करें, जाएं ज़रूर। आप देखेंगे स्पेशली फॉर बुजुर्ग या बच्चे या फॉर प्रेग्नेंट वीमेन ये बहुत सेफ हो जाता है, और अच्छा सा ट्रीटमेंट हो तो बात बन ही जाती है। फिलहाल आपकी क्विक सी बात करा देती हूँ मैं मीता जी से यहीं पर। मीता जी, वेलकम।
2: थैंक यू सो मच स्वाति जी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल माय लिसनर्स।
1: गुड इवनिंग। इस हेल्थ सेगमेंट में आपका काफी इंतजार रहता है, क्योंकि मेरे पास मैंने बात सिर्फ आप ही से लोगों की कराती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, कई बार बहुत सारी बीमारियां होती है मीता जी, हमें यही नहीं पता होता कि ये छोटी है बड़ी है, हम जीते चले जाते हैं, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, किसी से कंसल्ट भी नहीं करते, और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को बताने में भी हिचकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं और कई बार वो बड़ी बन जाती हैं। तो जब आपसे बात होती है, आप बहुत सारी ऐसी डिजीजेज या छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज को लेके जब विस्तार से बताते हैं

0: मुझे लगता है बहुत सारे लोग एक तो ये समझ पाते हैं कि ओके हम भी इस चीज से गुजर रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट है और हो सकता है, और ये नहीं लिया तो बड़ा बन सकता है. तो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस फॉर दिस एजुकेशन एज वेल. तो मीता जी, एक चीज़ होती है जिसमें हम कहते हैं कि वो कई बार हमें आईबीडी से रिलेटेड भी लगती है, क्योंकि बाउल्स से रिलेटेड होती है. व्हेन वी गो फॉर वॉशरूम तो हमें वहाँ पे ब्लड भी आता है और पेनफुल भी रहता है. तो इसका क्या, ये किस तरीके की हो सकती है और इसका क्या होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है?
1: जी बिल्कुल स्वाति जी. सो जैसे एवरी टाइम हम हेल्थ टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, अब ऐसे में आईबीडी या इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज जिसको कहते हैं, जिसमें कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज वाली कंडीशन हो सकती है, वहाँ पे कई बार एनल एरिया में कट्स बन जाते हैं. सो इट कुड बी एनल फिशर, हेमरॉइड्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस करके ब्लड आने लगता है. लेकिन आज हम देखेंगे आईबीडी या अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, जो बहुत आप देखो कि ये काफी स्पीडी रेट से बढ़ रहा है ये कंडीशन काफी लोगों में. और इनिशियली क्या होता है ना कि आप डायरिया समझ के कि सिर्फ डायरिया है या दो तीन बार जाना पड़ रहा है, टॉयलेट में म्यूकस जा रहा है, तो ये कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं कि हाँ डायरिया है या कुछ खा पी लिया होगा करके, या इंटॉलरेंस है समझ के इग्नोर कर देते हैं. और फिर जब कोलोनोस्कोपी होती है, आपको पता चलता है, तब तक कंडीशन आगे बढ़ चुकी होती है. तो कोलाइटिस क्या है? कोलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन एंड आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर छाले बन जाते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं. सो जब लार्ज इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होके छाले बने हैं, तो इस कंडीशन को पर्टिकुलरली अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है, जिसमें इंटेस्टाइन के लोअर पोर्शन एंड रेक्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है. अब ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, फैमिली हिस्ट्री में है तो उसके साथ भी आपको ये हो सकता है, लेकिन मेंटल फिजिकल स्ट्रेस के साथ इसके सिम्टम्स काफी बार ट्रिगर हो जाते हैं. और फिर घर से बाहर रहना है, खास करके यूनिवर्सिटी जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स, सो यूनिवर्सिटी में वहां पे रहना है, बाहर का खाना खाना है, साथ में जॉब करना है, स्ट्रेस लेवल भी हाई है, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है. और ऐसे में अगर आपको कोई मिल्क प्रोडक्ट से इंटॉलरेंस हो गई, उसके साथ ट्रबल आ गई, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जानी है. ग्लूटेन से प्रॉब्लम है तो उसके साथ ट्रिगर होगा, कोई स्टमक का इन्फेक्शन हुआ तो उसके साथ भी ये ट्रिगर हो जाता है. और जब भी कोलाइटिस की प्रॉब्लम आपको आती है तो उसके साथ टमी पेन, टमी एक की कंप्लेन, एब्डोमिनल पेन के, जब ये लार्ज इंटेस्टाइन मतलब लोअर एब्डोमिनल पेन होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में, लोअर एब्डोमिन में क्रैम्प्स आते रहते हैं, कुछ भी खाया पिया तो उसके साथ ही मरोड़ सी उठ रही है और आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, वॉटरी स्टूल्स हो रहे हैं, कई बार तो 10 12 14 बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, होल्ड नहीं कर पाएंगे वाली फीलिंग के जैसे ही अर्ज आती है या कुछ भी खाना खाया आपने तो राइट वे आपको जाना पड़ेगा, जिस करके काफी बार घर से बाहर जाना भी लोगों का मुश्किल बन जाता है कि वहां पे कहाँ पे टॉयलेट ढूंढेंगे, या बाहर जाना है तो वही स्ट्रेस रहती है कि वहां पे टॉयलेट मिलेगा या नहीं. और इसके साथ साथ स्टूल में ब्लड जाना, क्लॉट्स जाते हैं, फ्लेक्स जाते हैं या फ्रेश ब्लड, साथ में म्यूकस जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, और ऐसे में मरीज वेट भी लूज कर देते हैं. और जो भी खाया पिया वो लगेगा नहीं, क्योंकि दिन में इतनी बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, डायरिया हो रहा है, सो अल्टीमेटली फिर डेफिशिएंसीज होती जाएगी, सो एनीमिक होते जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाना, नॉशियस फीलिंग है, ये सारी चीजें अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ पाई जाती हैं. अब कुछ एक मंथ्स ऐसे जाते हैं ईयर में कि आपके सही है, लेकिन फिर वापस इसके फ्लेयर अप्स हो जाएंगे और वही सिम्टम्स आपके वापस आ जाते हैं, और लोग सालों से इससे सफर कर रहे होते हैं. तो ऐसे में होम्योपैथी में वी डू हैव वेरी गुड ट्रीटमेंट, एंड ये ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करते हो उसके साथ ही देखोगे कि इन्फ्लेमेशन कम होने से जो ब्लीडिंग हो रही थी उसमें आराम आएगा, जो म्यूकस जा रहा था स्टूल में या डायरिया स्टूल की फ्रीक्वेंसी थी वो सारा कुछ कंट्रोल आता जाएगा. एंड कुछ एक टाइम आपने ये लगातार लेना होता है जिस करके ऑटो इम्यून कंडीशन है उस पर कंट्रोल पाया जा सके. सो फील फ्री टू कॉल अस किसी भी तरह की अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आप ट्रीटमेंट कुछ ले रहे हैं स्पेशलिस्ट का, उसके साथ आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये जो मेडिकेशन होती है इसका इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, आप खुद देखोगे कि कपल ऑफ मंथ्स में आपके सिम्टम्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सो कोलाइटिस से लेके क्रॉन्स डिजीज है यानी कि IBD है, IBS इरिटेबल बावल सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं, गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या हेमरॉइड्स, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, फिशर बना है, एनल फिशर, फिस्टुला वगैरह के लिए। सो कोई भी एक्यूट क्रोनिक डिजीज के लिए काव्या होम्योकेयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर करें। और इसके साथ है मसाज थेरेपी, सो आपको मसाज लेना है तो उसके लिए भी आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं।
0: इंटरेस्टिंग, तो पहले तो यही बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है कि देयर इज अ ट्रीटमेंट अवेलेबल। और जैसे आप बताते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट अगर आप ऑलरेडी ले रहे हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप साथ में ले सकते हैं जिससे कि जड़ से चीजें खत्म होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं फिर यहाँ पे ये बताऊंगी, आप एक बार कॉल जरूर करें, अपनी छोटी बड़ी बीमारियों के लिए आप काव्या होम्योकेयर पे एक बार संपर्क करें, मीता जी से बात करें अपॉइंटमेंट लेके, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और किसी भी प्रॉब्लम से कहते ना हमेशा के लिए छुटकारा मिलना बहुत बड़ी बात होती है, वो आपको मिल सकता है, बट एक बार बात करनी पड़ेगी आपको, वो पहला कदम खुद उठाना पड़ेगा। 6477602779 इज द नंबर और kaviyahomeocare.com इज द वेबसाइट। थैंक यू मीता जी, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपसे। गुड लक
1: जी। श्योर, थैंक यू सो मच स्वाति जी।
0: थैंक यू।

0: पर।
1: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: घर कहीं भी लेना।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453-5353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
4: Another Don clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: Let's turn it up.
8: Let's kick it up.
9: Let's shake it up.

Well, ये फिल्म एंटरटेनमेंट तो अच्छी खासी फ्लॉप हो गई थी, पर इसी गाने से टाइटल उठाकर फिल्म बनी वी दे दी वेडिंग 2018 में, जो कि फ्रेंडशिप की स्पिरिट को सेलिब्रेट करती थी मेनली. एक्चुअली आप देखें तो रोमांस पर तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं, और ये फिल्म यहीं पर स्टैंड आउट करती है क्योंकि इट टॉक्स अबाउट कि बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर लड़कियों में भी होती हैं. फिल्म हैज कंप्लीटेड रिलीज एंड दिस सॉन्ग स्टिल गेट्स लॉट ऑफ तारीफें.

क्विक रिमाइंडर, हर थर्सडे एट 6 PM हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड संजीव मनोचा जी इन द सेगमेंट हर घर कुछ कहता है और सुनाएंगे एक नई कहानी. दिस सेगमेंट इज गोइंग टू बी स्पॉन्सर्ड बाय माई रियल को द रियल स्टेट कंपनी. माई प्रॉपर्टी माई चॉइस माई रियल को. सुनिएगा जरूर.

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. अब फायदा उठाएं जून के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना. 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%. साथ ही मिले $5,100 तक का हॉट हॉट कैशबैक भी. और इतना ही नहीं, एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500. है ना आइसिंग ऑन द टॉप. कॉल अमित खुराना एट 647-341-2785, 647-341-2785 और विजिट amitkhurana.com.
1: लेट डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 pounds की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: नजर बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888.
3: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस.
5: Follow us on Instagram. It's RJ Swati _Toronto.

ये बस एक बारी की होती है, एक बारिया फिर एक्साइटमेंट उनका खत्म हो जाता है, और कुछ बार बार की होती है, कितनी बार भी हो जाए इन लाइफ, बस मजा जो होता है उनका वो वहीं का वहीं रहता है जैसे कि पहली बार का. बीट द टेस्ट ऑफ दोज हमारे फेवरेट फूड्स, बीट गोइंग टू दैट वन फेवरेट स्पॉट ऑन द बीच और द माउंटेन जहां बैठ के सनसेट देखना अकेले या दुकेले बस अच्छा लग जाता है. बीट दैट गाना जो प्लेलिस्ट में लूप पे हमारी चलता है, और बीट दैट माँ की गोद पापा का कंधा, और बीट दैट दोस्त जिसे रोज मिलना, रोज की रोज बातें करना बहुत अच्छा लगता है. एंड बीट दैट फीलिंग ऑफ लव जब प्यार में पड़ना, गिरना, उठना बार बार किसी भी उम्र में बस बहुत अच्छा लगता है ना. लाइफ में कितनी ही चीजों की, बातों की एक रिपीट वैल्यू, एक्चुअली लिस्ट बहुत लंबी है अगर आप बनाने चलें इस रिपीट वैल्यू वाली चीजों की, पर अ डे लाइक टुडे अलाउज ऑल ऑफ अस मोर फ्रीली विदाउट यू नो गिविंग एनी जस्टिफिकेशन कि जो आप करना चाहते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो आप रिपीट मोड में आप हैप्पीली कर सकते हैं. इट्स हैप्पी रिपीट डे गाइस. टोनी कक्कड़ के लिए ये दिन अब हर गाने के साथ आ जाता है उनके, क्योंकि रिपीट ऑफ वर्ड जो होते हैं उनके लिरिक्स का एक सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है. आपने अब तक नोटिस नहीं किया तो वेल आप कर लो. आई एम प्लेइंग नेक्स्ट वन फॉर यू.

0: चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर everything automotive. चाहे हो डेली commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: मेरे रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
3: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
2: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com.
4: Another Don Clean with the Don Dux.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
2: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

That was from Kabir Singh. एक अलग ही टाइप का देवदास टाइप कैरेक्टर, जिसे प्यार भी नहीं हो पा रहा था फिल्म देखते हुए, पर उसको इग्नोर कर पाना भी क्वाइट मुश्किल हो रहा था. इट वॉज अ रीमेक ऑफ साउथ की फिल्म अर्जुन रेडी. फॉर्मूला फिट था तो फिल्म भी सुपरहिट रही, चाहे वो साउथ भाषा में बनी और चाहे वो हिंदी में. वन सच तेलुगु फिल्म इज रेडी, जो कि सुपर हिट रही जब बनी और हिंदी में भी नाम सहित अडेप्ट कर ली गई विद सलमान खान इन द लीड रोल और साथ में सुपर ड्यूपर गुड म्यूजिक. आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन 2011. माई फेवरेट डायलॉग फ्रॉम द फिल्म इज कोई तो रोक लो, और फिल्म इज सुपर फन टू वॉच. कोई भी जब भी बोले रेडी देखने के लिए, आई एम ऑलवेज रेडी.

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: घर कहीं भी लेना

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 6478648844 தட்ஸ் 6478648844
1: ஆர் விசிட் teamsabarwal.com
2: யுவர் சர்ச் எண்ட்ஸ் ஹியர்
3: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माई मैकेनिक ऑटो एंड टायर सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन एट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज मिशलिन टायर्स के ऑथराइज्ड डीलर है ये एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारब्रो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर For details, visit mymechanicauto.ca. रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही आज ही अपॉइंटमेंट ले कॉल रमेश एट 416-990-2462 एक्टिव ग्रीन एंड रॉस वेयर योर कार गेट्स अ केयर
4: नटवर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती
5: मगर क्यों पिताजी नहीं माने क्या
4: वो बात नहीं है हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो ना वो गाने बजाते हैं ना तुम अच्छा गाते हो
5: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा
3: सिर्फ CMR एट 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा रेडियो CMR एट 5 PM योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव

छुपने वालों को अब सामने आना ही होगा। एज ऑन्टेरियो सरकार लॉन्च कर सकती है एक पब्लिक प्रोविंशियल वेबसाइट अबाउट हाई रिस्क ऑफेंडर्स, उनके बारे में सारी डिटेल्स वहां होंगी डिस्क्लोज्ड, कम्युनिटी नोटिफिकेशंस होंगे जो फिर शेयर की जाएंगी थ्रू इंडिविजुअल पुलिस वेबसाइट्स ऑन सोशल मीडिया। लेजिस्लेशन पास हो गया ना ये, तो नई वेबसाइट अप्रैल 2027 अगले साल तक ये ऑनलाइन भी कर दी जाएगी। इंटेंट वही है, सड़कें रहें सेफ और कम्युनिटी सुरक्षित।

नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर यू आर विद स्वाति एंड पायस्विनी एंड अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं आफ्टर दिस शो एज वेल तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। हमारा हैंडल रहता है rjswati_toronto, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या टिकटॉक या ट्विटर बोले तो एक्स या लिंक्डइन या कोई और, आप हर सोशल मीडिया पे हमसे rjswati_toronto के अंडर में जुड़ सकते हैं। दैट्स माय हैंडल एट ऑल द सोशल मीडिया प्लेसेस। कई बार आप कोई विन जीतते हैं उसके बारे में बात करने, किसी स्पॉन्सर की कोई डिटेल चाहिए होती, कोई फीडबैक देना है, और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे कई बार मैं कुछ अलग अलग चीजें पोस्ट करती रहती हूँ, कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्विजेस चलते रहते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंट स्टफ जो सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं, तो इट्स इन्फॉर्मेटिव, इट्स एंटरटेनिंग एंड इट्स गुड टू कनेक्ट देयर एज वेल, है ना। फैमिली है तो वहीं पे कनेक्ट होना भी अच्छा लगता है। सिर्फ 5 से 7 का इंतजार हमें रोज नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए, तो इट्स वेरी ईजी टू स्टे कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया। तो याद रखें rjswati_toronto, एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉन्सर ऑन द शो, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम करें प्रमोट, इसका फिल्मी नुक्कड़ फैमिली का स्पॉन्सरशिप्स का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर। माई नंबर इज 6478305042, दैट 6478305042।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353.
6: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
0: You are tuned into CMR at 5 PM with RJ Swati on Filmi Nukkad. It's the free time.

पर गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम, साउंड्स एग्जैक्टली सेम कि अंडा पहले आया था या मुर्गी, बोलो तो। बाकी अंडे का फंडा वही जानते हैं जो इसका सेवन करते हैं मोस्टली, बाकी लोगों के लिए तो इट्स लाइक यू नो जैसे शेर के आगे आप घास डालती हो, है ना। वेल इट्स नेशनल एग डे टुडे एज वेल, जहां दिन कैसा भी हो आज इट्स गोइंग टू बी एक्सलेंट डे फॉर मेनी। सो ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, लीविंग यू विद अंडे का फंडा। मिलते हैं फिर।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्ब मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मितावन देते हैं मस्जिद नूरुल हरम। मस्जिद नूरुल हरम की तामीर के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। स्टील स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है। दिल खोलकर आप इसके लिए तैयार दीजिए। राबते के नंबर है 905-257-1342।

0: न्यूज के लिए मैं दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
1: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। कुवैत में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में एक भारतीय शहरी हलाक जबकि 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। कुवैत ने ईरानी सिफारत मिशन के दो अरकान को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर मुल्क बदर कर दिया। उधर बहरीन के फौज ने भी ईरानी हमलों की कोशिशों को नाकाम बनाने का दावा किया है। सऊदी अरब और अमारात समेत खलीजी ममालिक ने कुवैत पर हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि ईरान की जारहियत के खिलाफ हम दोस्त ममालिक के साथ खड़े हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराकची ने कहा है कि किसी भी मुआनेदाना इकदाम का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अब्बास अराकची का कहना था कि अमरीका के साथ राबते मुनक़ता नहीं हुए लेकिन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई अमरीका के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ हैं और शायद किसी मौके पर उनसे मुलाकात भी हो जाए। उधर एक ईरानी खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि अगर इत्तेफाक हो गया तो अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU 4 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दूसरी जानिब KP असेंबली के नाराज अराकीन ने कहा है कि इमरान खान से मुशावरत न हुई तो बजट पास नहीं होने देंगे। उधर बजट तजावीज पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात बरकरार हैं जबकि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी कराई है कि बजट इजलास से कबल कोई अहम कानून साजी नहीं होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
2: खास खास खबरें जुबैर दिन साहब के लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज में रबता के नंबर 416-593-0003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 199.10 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान में MCB की 1100 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट कर लीजिए, वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश या बैंक अकाउंट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए, gondalbrothers.com पे आप लॉगिन हो जाइए। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप यहाँ से डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। आज का रेट है 199.10 रुपये। कॉल कर लीजिए 905-306-0000 905-306-0000। वेंसडे है आज, राज तलवार साहब मॉर्गेज के हवाले से मालूम आप तक पहुंचाएंगे। आयशा मनवर साहबा डेट कॉन्सल्टेशन के हवाले से गुफ्तगू किया करती हैं। इंश्योरेंस की मालूम विशाल त्रिवेदी साहब हमारे साथ हुआ करते हैं। ICC इमिग्रेशन से MD भाई से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कनेडियन इंग्लिश एयरलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल साहब के लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और भी कुछ मौजूद हमारी बिना आपकी बातें, लेकिन ये सबको सुनने के लिए हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ। मेरे अच्छे भाई सामीन, सोचने का मकाम है। रेल गाड़ियों को देखें, खचाखच भरी हैं, परदेसी आ रहे हैं जा रहे हैं, हज़ारहा बसें हर तवक जो हैं हम सफ़र हैं, वहाँ भी परदेसी आ रहे हैं जा रहे हैं। हवाई बात में आप लेने तो बुकिंग नहीं मिलती है, टिकट नहीं मिलती है। या अल्लाह, तमाम मुसाफरों का कौन सा देश है, कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं। आप हाईवे पे हों, एक तरफ आपको वाइट या थोड़ा सा आप कह लीजिए कि एक तरफ रेड लाइट्स जा रही होती हैं, एक तरफ से जो हैं वाइट लाइट्स आ रही होती हैं, येलो लाइट्स आ रही होती हैं। पता नहीं कहाँ ये कौन से देश के मुसाफिर हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। आज की अगर बैनुल्कवामियत को देखें तो देश का तस्वर तो रद्द होकर रह गया है। हम किसी भी देश के शहरी नहीं हैं, शायद हम दुनिया के रहने वाले हैं। सभी परदेसी हैं, वतन में भी और वतन से बाहर भी। हमारे सियासतदान भी सब परदेसी हैं। किसी की किताब किसी मुल्क में छपती है, किसी की इंग्लिस्तान में, अपने अपने देश में नहीं, अपने अपने देश में सिर्फ सियासत परवरिश पाती है। बैरूनी ममालिक में भी और वापसी पे भी, बाहरें साथ लाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जब मौका मिलता है कहीं भी तो ऐसी मौका पर हस्ती होती है कि लोटा क्रेसी नज़र आती है। परदेशियों के भी क्या ठिकाने हैं, जाने कब क्या हो जाए। लंदन में बैठ के देसी लोगों की प्लानिंग करते हैं, देश के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने परदेश में। अजब हाल है, परदेश ही परदेश है। लेकिन सबसे ज़्यादा हसरतनाक हालत उन परदेशियों की है जो कस्बे माश के लिए बाहर गए हुए हैं, बैरून मुल्क गए, इन अजीज़ान के इंतज़ार में यहाँ परदेसी हैं, वहाँ वो परदेसी हैं। दौलत के हफ्ज़ ने जुदाइयाँ पैदा कर दी हैं, पैसा आ रहा है और उम्र बीती जा रही है। हालात बेहतर करने की तमन्ना ने हालत ही ख़राब कर दी है। ख्वाहिशात का फैलाव, नुमाइश की ख्वाहिश, आराइश की तमन्ना ने मजबूर कर दिया है कि अपने महबूब बेटे, महबूब खामिंद को वतन से बाहर भेजा जाए। अब घर में इंतज़ार है, کبھی پیسوں کا کبھی فون کا، جس کی خاطر گھر سجایا وہی گھر میں نظر نہیں آ رہا۔ حیرت بھی اور افسوس بھی کہ ہم کیوں سادہ زندگی بسر نہیں کرتے، کیا غریب الوطنی کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ اور بعض اوقات تو ایسا نقصان ہوتا ہے کہ ساری عمر جو ہے اس کے لیے پشیمان رہنا پڑتا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات والدین بھی۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ ہے دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: फेसबुक पे हमारा पेज रेडियो पाकिस्तान टोरंटो से लाइक कीजिए, ट्यून इन पे हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है। फोन के जरिए सुनना चाहें 6475060003 पे कॉल करके हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारा टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 टीवी, तमाम आई पी टीवी बॉक्सेज, जातू बोल जोन बॉक्स के साथ साथ एपल टीवी, अमेजन फायर टीवी, रोकू टीवी के साथ साथ ऊबर ऐप के थ्रू, रॉजर्स पे भी आप हमारा निशान देख सकते हैं। हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप्स पे जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 टीवी। एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए हमारे पास फ्री डाउनलोड कर सकते हैं दो चैनल, टोरंटो 360 टीवी और टोरंटो 360 इंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन निशान भी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं। आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के निशान अब आप हमारे टेलीविजन टोरंटो 360 टीवी पे लाइव भी देख सकते हैं, यानी 7 से 9 बजे रेडियो पे भी सुनिए और हमारे टीवी चैनल टोरंटो 360 टीवी पे भी लाइव देखिए। रियल स्टेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल थला भट्टी 6472957861। घर खरीदना, बेचना, लीज करना, साइन करना, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो, कॉल कर लीजिए। अपना ईमेल एड्रेस भी टेस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में सेट कर लेंगे, जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक उसकी डिटेल आपको मिलती रहा करेगी। डायरेक्ट कॉल कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस टेस्ट कर दीजिए, तला भट्टी 6472957861, 6472957861। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM में आपको होस्ट और दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो।

कब उदासी पयाम होती है, जब मोहब्बत तमाम होती है। किसके चेहरे पे सुख जागे, जिसकी आंखों में शाम होती है। इश्क बनता है किस घड़ी से याद, जब वफा से रिदा होती है। टीस बनती है आग ही कैसी, खुद से जब हम कला होती है। क्या कमी है तलब की राहों में, गुफ्तगू ना तमाम होती है। दिल को भाती है कब सबा बोलो, जब किसी का पयाम होती है। ये मोहब्बत है क्या बताओगे, खास शह है जो आम होती है। कब उदासी पयाम होती है, जब मोहब्बत तमाम होती है।

0: फाइनेंशियल इंक के मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 4372378888। इट्स 4372378888। लाइसेंस नंबर 12458।
3: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
4: बटकराही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकराही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेस। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल, जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकराही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002। बटकराही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता।
5: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
6: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
7: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
8: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 4167465550 7465550।
9: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं, तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रेफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो, या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। 2 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रब्ता कीजिए 4168559464। शहबाज अकबर साहब के रब्ते के नंबर 4168559464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन।
10: द बेस्ट गोरमे पिज्जा विद बेस्ट प्राइसेस, पिज्जा पॉप 3075 रिचवे ड्राइव मिसिसागा, और विजिट pizzapop.ca। फैमिली के साथ डाइन इन करें या टेक आउट, बच्चों और बड़ों सभी की पहली चॉइस पिज्जा पॉप। लजीज और मजेदार तंदूरी चिकन पिज्जा, चीज स्टेक पिज्जा, चिकन शवरमा पिज्जा। एक्सक्लूसिव फैमिली ऑफर, लार्ज तंदूरी चिकन पिज्जा, लार्ज चीज पिज्जा, 2 डिपिंग सॉस, 3 कैंस ऑफ पॉप फॉर 24.99 ओनली। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड टेक आउट ऑर्डर कॉल 905-828-0985। It's 905-828-0985। Pizza Pop 3075 Ridgeway Drive, Mississauga।
11: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 सी रोड मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500। और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4168143600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
12: अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4165700157 1157.
8: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
13: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: विशाल त्रिवेदी, वही जाना पहचाना नाम, लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट। अब विशाल से ही लीजिए गारंटीड कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, विजिटर्स टू कनाडा इंश्योरेंस। कंपेयर विद विशाल एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स ऑन विजिटर्स एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस। कॉल विशाल त्रिवेदी एट 6477679852, दैट 6477679852।
3: जी हाँ, विशाल त्रिवेदी साहब वेरी वेरी प्रोफेशनल, वेरी एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। इंश्योरेंसेस हों, फाइनेंशियल प्लानिंग्स हों, स्टेट प्लानिंग्स हों, हर तरह का फाइनेंशियल मशवरा आपको चाहिए आप इनसे ले सकते हैं। इवन आपके जो ऑटो इंश्योरेंस हैं उसमें भी आपके लिए हेल्प करते हैं। 6477679852 इनके रबते का नंबर है। खुश आमदीद कहेंगे। विशाल भाई, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
4: Thank you, Bhattaji, and regards to all our listeners. It's always a pleasure to be with you.
3: Thank you very much. Same here. और अक्सर हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस के वाले से, तो जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है ये है क्या और किन लोगों को, why should people consider it?
4: See, Bhattaji, life insurance तरह तरह की होती है। एक होती है टर्म, एक होती है परमानेंट। So, today I will discuss more about term policy. कि term policy जो होती है वो एक पर्टिकुलर टर्म के लिए होती है, तो 10 साल की होगी, 20 साल, 30 साल, 40 साल,
3: ठीक है।
4: और दिस पॉलिसी कवर्स यू फॉर ऑल दोज डेट्स, यू कॉल इट मॉर्गेज और एनी अदर डेट्स यू हैव, चिल्ड्रंस एजुकेशन, एंड ऑफ द डे दोज टेम्पररी नीड्स कैन बी कवर्ड विद अ टर्म पॉलिसी।
3: ऑलराइट, 6477679852 इनके रबते के नंबर है। अच्छा, हु इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस सूट, किसको करती है? मतलब मेरा कहने का, कौन से लोग हैं जिनको तो ये फौरी तौर पे ले लेनी चाहिए?
4: भतीजी, दिस इज आइडियल फॉर यंग फैमिलीज, जो लोग बिल्कुल अभी यहाँ पर आए हैं, इमिग्रेट किया है उन्होंने और बजट इज अ इश्यू। टर्म पॉलिसी की सबसे अच्छी बात ये कि लो कॉस्ट होती है, बट इट्स सूटेड फॉर एनीबॉडी हु आर होम ओनर्स, बिजनेस ओनर्स, एनीवन विद फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे कैन हैव अ टर्म पॉलिसी। एब्सोल्युटली।
3: अच्छा, अभी आपने जिक्र तो किया कि बेनिफिट्स, अगर वैसे हम की बेनिफिट्स देखें टर्म लाइफ इंश्योरेंस के, वो क्या क्या हो सकते हैं?
4: पर जी, टर्म पॉलिसी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि ये आपको एक कम कीमत पे बहुत ज्यादा अमाउंट को कवरेज दे रही है, तो ये अफोर्डेबल प्रीमियम होता है इसका, और कंपेयर टू परमानेंट पॉलिसी। और इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है जो आपकी मॉर्गेज, आपके बच्चों की एजुकेशन नीड, आपकी इनकम रिप्लेसमेंट, अगर आप नहीं है तो आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, वो सारी चीजों को कवर करती है। एंड इट गिव्स यू एंड ऑफ द डे पीस ऑफ माइंड।
3: वेरी राइट, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। पीस ऑफ माइंड हो गया तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, सेहत अच्छी है, सुकून है, तो तरक्की भी है। 6477679852 6477679852 रब्ते के नंबर। अच्छा, अक्सर लोग, हम कहते हैं ना कि अपने आप खुद एहतसाबी जो हैं, अपने आप से सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो क्या एक ऐसा क्वेश्चन है जो लिसनर्स को अपने आप से करना चाहिए?
4: मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, 23 years in this industry and educating everybody, I tell everybody, ask yourself, if I wasn't here tomorrow, अगर मैं नहीं रहा तो मेरी family का क्या होगा? How they will pay the bills, how will they will pay for the mortgage, how will they will pay for education and all those needs. Once you don't have any answer, you call me right away, because I'll make sure that you will have the right answer, you will be protected properly.
3: मदर सामीन, ये बड़ा अजीब सा लगता है बाज़ औक़ात इंसान अपने बारे में सोचता है, लेकिन हकीकत तो है, आप देखते होंगे अक्सर औक़ात इस किस्म के हादसा हो जाते हैं कि इंसान को यकीन नहीं आता। तो आप रब्ता कर लीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कीजिए। नंबर कॉल इज 6477679852 6477679852। कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप इन द एंड, विशाल भाई?
4: भतीजी, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी विद यू। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट रियली अबाउट यू, इट्स मोर अबाउट द पीपल यू लव, एंड पर्पस ऑफ दिस टॉक शो इज टू एजुकेट यू, नॉट टू सेल एनीथिंग। तो आपको सिर्फ एजुकेशन मिलेगा, एंड व्हेन यू टॉक टू मी, यू विल नेवर फील दैट यू आर टॉकिंग टू अ सेल्स पर्सन, यू विल फील दैट यू आर टॉकिंग टू समवन फ्रॉम योर ओन फैमिली।
3: बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जो वेरी लॉन्ग टाइम से आप इसी प्रोफेशन में हैं, और आप यकीनन बहुत से लोगों को आपने गाइड किया है, बहुत से लोगों को आपने सही सम दिखाई है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू ब्रदर,
4: ऑलवेज प्लेजर भट्टी जी,
3: थैंक यू। नंबर नोट कीजिए विशाल भाई का, 6477679852 9852647767985 2 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM. जनाब थोड़ा सा वक्त है तो कुछ मैं आप तक मालूमात या इन्फॉर्मेशन अपने स्पॉन्सर्स की पहुंचा दूं और उसके बाद आपको न्यूज़ क्लिप ले चलेंगे. चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज एथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है जो कि 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है. और चाइनीज पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज खाने तशरीफ ले जाइए. और 14 साल का तजर्बा है, PC की शेफ हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. इसके अलावा अगर आपके विंडोज़ और डोर्स लीक हो रहे हैं, पुराने हो गए हैं, ये मौका है. राइट विंडो फोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस लेकर आए हैं. आप थोड़ा सा डाउन पेमेंट दीजिए और उसके बाद एक साल बाद पेमेंट कर दीजिए, इंस्टॉलमेंट जो है बनवा लीजिए. और लाइफ टाइम गारंटी इनके विंडोज़ की है. आप कॉल कर लीजिए 416-206-3200 वाटर फ्रंट एक्सक्लूसिव इवनिंग लेकर आ रहे हैं. और ये प्रोग्राम होने जा रहा है संडे जून 7th को हिल्टन गार्डन इन में. और फ्री इवेंट है, नेटवर्किंग होगी, इंफॉर्मेशन होगी. पाकिस्तान से टीम HMR की आ रही है लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है. आप HMRWaterfrontCanada.com पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या नजमा मलिक साहब को कॉल करें 647-824-1485 647-824-1485 या फरहान अबसार 6479190645 6479190645. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM. 24 घंटे हमारे नशात रेडियो पाकिस्तान .fm पे सुनते हैं. हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV. रियल स्टेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए. कॉल तला भट्टी 6472957861. आपको घर खरीदना है, बेचना है, लीज करना है, इज अ वेरी गुड टाइम. बहुत अच्छा है, आपको HST रिबेट भी मिल रहा है. फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए कोई भी नया कंस्ट्रक्शन है, अगर आप वो परचेज करते हैं तो आपको बहुत फायदा हो सकता है. आप कॉल कर लें तलहा को 6472957861 6472957861. लिए चलेंगे आपको न्यूज की तरफ. जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब.
5: You're listening to CMR FM 101.3.
6: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने.
7: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं. और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं. और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है. आज ही मुझे कॉल करें. आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है. 416-570-0157
6: न्यूज के लिए तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी डेयरी के इंटरसेक्शन 3 खूबसूरत हाल 1200 तक अफराद की गुंजाइश एम्पल पार्किंग. अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ. मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500 इट्स 4374252500 आइकॉन इवेंट स्पेस. न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861.
8: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है. अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए. कुवैत में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया जबकि 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए. कुवैत की वजारत दिफा का कहना है कि ईरानी ड्रोन हमलों में बैन अल-अक़वामी